मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर, एफएम पर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 जून 2026 ईस्वी। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 5:56 होने वाले हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 6 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी

0: वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज में आपने ये भक्ति रचना सुनी। आइए अब सुने अनूप जलोटा की आवाज में ये भक्ति रचना।

भक्ति संगीत का वंदना कार्यक्रम आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आइए सुने अशोक सन्होत्रा की आवाज में ये भक्ति रचना।

0: भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए चिंतन, सृजनशीलता, वाचक स्वर स्वामी अशोक भारती का है।
1: देखिए, परमात्मा के इस सारे कायनात को हम देखें तो हमें एक चीज नजर आती है कि परमात्मा सतत सृजनशील है, नॉन स्टॉप 24 घंटे सृजन चल रहा है। उसका काम अरबों खरबों पता नहीं कितने वर्षों से है, लेकिन सृजन रुकता नहीं है। तो सृजन ही प्रेम और धर्म है। एक बहुत बड़ा सम्राट हुआ, अपने घोड़े पर बैठकर हर दिन सुबह शहर में घूमता था। रोज का उसका नियम था। उसको बड़ा सुंदर अनुभव होता था यह देखने में कि कैसे मेरा शहर विकसित हो रहा है, कैसे उसकी राजधानी अधिक से अधिक सुंदर हो रही है। उस राजा का यह स्वप्न था कि उसे पृथ्वी की सबसे सुंदर जगह बनाया जाए उसकी राजधानी को। वो हमेशा अपने घोड़े को रोकता और एक बूढ़े व्यक्ति को देखता। उसका रोज का नियम था। उस बूढ़े की उम्र करीब करीब 120 वर्ष की थी, इतना वृद्ध था वो आदमी। तो राजा जब घूमने निकलता तो उस बूढ़े व्यक्ति के पास, जो बगीचे में काम करता रहता, बीज बोता, वृक्षों को पानी देता, ऐसे वृक्ष जिनको बड़े होने में सैकड़ों साल लगेंगे, फिर भी उसकी रखवाली करता वो बूढ़ा व्यक्ति। उसे बड़ी हैरानी होती कि यह आदमी आधा कब्र में जा चुका है, 120 साल का हो गया है, किसके लिए यह बीज बो रहा है, ये तो जाने वाला है। वो कभी भी इस वृक्ष पर आए हुए फल और फूलों को कभी देख नहीं पाएगा, क्योंकि वृक्षों को बनने में, ऊंचा होने में टाइम लगता है। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वह अपनी मेहनत का फल देख पाएगा। एक दिन वो बादशाह अपने को रोक नहीं पाया, रोज देखता उसको, वृद्ध व्यक्ति को बगीचे में सतत काम करते हुए, और काम करते हुए प्रसन्नता यह भी देखता। वो रोक नहीं पाया, अपने घोड़े से उतरा और उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर वो पूछने लगा, बाबा मैं हर दिन यहां से गुजरता हूं और एक प्रश्न मेरे दिमाग में रोज आता है, अब यह असंभव हो गया मेरे लिए कि मैं आपके कार्य को क्षण भर बाधा पहुंचाऊंगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप किसके लिए ये बीज बो रहे हैं। ये वृक्ष जब तैयार होंगे, युवा होंगे, तब आप यहां नहीं होंगे। बूढ़े व्यक्ति ने सम्राट की तरफ देखा, हंसा और फिर बोला, यही तर्क अगर मेरे बाप दादाओं का होता तो मैं फल और फूलों से भरे इस सुंदर बगीचे से महरूम हो गया होता। मेरे बाप दादा भी यही सोचते कि हमें क्या करना है। तो आज ये जो वृक्ष बगीचा मेरे सामने लहलाता है, इससे मैं महरूम हो गया होता। हमारा पूरा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी माली है। मेरे पिता बाप दादाओं ने जो बीज बोए उसके फल मैं खा रहा हूं, और मेरे बच्चों के बाद बच्चों का क्या हो गया, इसकी रखवाली, इसकी सुविधा मैं जुटा रहा हूं। लोग मेरे बगीचे को दूर दूर से देखने आते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे वृक्ष है जो हजारों साल पुराने हैं, और मैं बस वही कर रहा हूं जो मैं कृतज्ञता से कर सकता हूं, धन्यवाद से कर सकता हूं। माली कहता सम्राट से, जहां तक बात बीज बोने की है, जब बसंत आता है और जब बसंत आने के बाद पत्ते उगते देखकर मुझे इतना आनंद आता है कि मैं भूल ही जाता हूं कि मैं कितना बूढ़ा हो गया हूं।

0: उस सृजनशीलता में मुझे इतना आनंद आता है एक पत्ते को खिलते देखकर।
1: किसान भाइयों,
2: सृजनशीलता, अभी आप चिंतन सुन रहे थे, वाचक स्वर अशोक भारती का था। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। किसान भाइयों के लिए प्रातः है 7:10 पर। खेतीहर वास्ते कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा लवणीय पानी का कृषि में उपयोग। कार्यक्रम खेत खलिहान सुनिएगा 12:50 पर। इसमें आज विषय रहेगा दीपक से फसल को कैसे बचाएं, दीमक से फसल को कैसे बचाएं। कार्यक्रम चौपाल होगा शाम 7 बजे। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे तापघात से स्वयं को बचाएं, नीम का जैविक खेती में महत्व, गर्मी में मुर्गियों की देखभाल और इसके अलावा उपलब्ध होने पर मौसम और बाजार भाव की भी जानकारी दी जाएगी। लोक संगीत के कार्यक्रम मरु मंगल में सुबह 9:10 पर कलाकार होंगे शहनाज। मानस गान सुनेगा सुबह 7:20 पर। इसमें आज आप सुनेंगे भाग संख्या 264। मुख्य स्वर होगा वाणी जयराम का। कार्यक्रम सुप्रभात का समय रहेगा सुबह 7:30। इसमें आज विषय रहेंगे पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, संगीत का हमारे जीवन में महत्व और लोभ के दुष्परिणाम। कार्यक्रम सुगम संगीत में कुछ भजन सुनेंगे सुबह 8:45 पर और चंद गजलें पेश की जाएंगी दोपहर 12:30 पर और रात्रि 9:15 पर। फिल्म संगीत में युगल गीत आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत हम आपको सुनवाएंगे सुबह 10 बजे। फिल्म संगीत का समय रहेगा सुबह 11 बजे, दोपहर 2:30 पर और शाम 7:45 पर। कुछ बातें कुछ गीत ये कार्यक्रम सुनेगा दोपहर 12:05 पर। महिलाएं अपना कार्यक्रम महिला जगत सुने दिन में 1:05 पर। इसमें चर्चा का विषय रहेंगे खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं, महिलाओं के लिए गर्मी में योग व फिटनेस, इंटरनेट से सेहत की जानकारी, लाभ और हानि, किचन की छोटी छोटी बचत बड़े फायदेमंद। युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम होगा शाम 5 बजे। इसमें आज की बात में विषय रहेंगे साहित्य समाज का दर्पण, जीवों पर दया, बुजुर्गों का सम्मान, नशा जीवन का नाश, सकारात्मकता और आज का इतिहास। कार्यक्रम सहरे की आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 6:55 होने को है। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: इयम आकाशवाणी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। उनका आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए गए नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना में सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध संपत्तियों, अनाधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों तथा भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ पूरे शहर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar.

0: सुथा कार्यक्रम खेतीहरा वास्ते। आज इसमें जानकारी का विषय है लवणीय पानी का श्रोताओ। आज इसमें जानकारी का विषय है कृषि में जीवाणुओं का महत्व।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों बात करांगा जैव उर्वरकांगो और जैव उर्वरक आज के टाइम में कृषि में एक महत्वपूर्ण आदान मानी जाए और किसान भाइयों अन्न ज़्यादा से ज़्यादा आप खेती में इस्तेमाल करा ताकि अपनी पैदावार बढ़िया मिल सके, आपने शुद्ध मिल सके। जैव उर्वरक की अगर बात करा तो एक ईशा उर्वरक है जगह में जीवन है, क्योंकि ऐ सूक्ष्म जीवांग द्वारा गतिशील क्रिया को एक नतीजो है जको कि माटी का माँ ही हो है और पौधांगी उर्वरकांगी आवश्यकता की सीमा तक पूर्ति भी करे। तो किसान भाइयों जैव उर्वरक यहाँ मानस कहाँ कि ऐ दो प्रकार का हुए, बीजांग सागे मिलाण नाला या फिर सीधा माटी में मिलाण नाला। बीजाला जैव उर्वरक है जका

किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, बात करांगा जैव उर्वरकांगो। और जैव उर्वरक आज के टाइम में कृषि में एक महत्वपूर्ण आदान मानी जाए। और किसान भाइयों, अन ज़्यादा से ज़्यादा आपा खेती में इस्तेमाल करा ताकि अपनी पैदावार बढ़िया मिल सके, आपने शुद्ध मिल सके। जैव उर्वरक की अगर बात करा तो एक ईशा उर्वरक है जगह में जीवन है, क्योंकि ए सूक्ष्म जीवांग द्वारा गतिशील क्रिया को एक नतीजो है जको कि माटी का माँ ही हुए और पौधांगी उर्वरकांगी आवश्यकता की सीमा तक पूर्ति भी करे। तो किसान भाइयों, जैव उर्वरक या मानसका के ए दो प्रकार का हुए, बीजांग सागे मिलाण नाला या फिर सीधा माटी में मिलाण नाला। बीजाला जैव उर्वरक है जका बाने पहला बीजांग सागे मिलाई जाए, ए पाउडर के रूप में हुए। और माटी का मिलाण नाला जैव उर्वरक दाणा की शक्ल में हुए जका के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया कौन जा सके नहीं और बने इस्तेमाल आप यहाँ कर सका। जैव उर्वरक का अब लाभ की बात आवे तो किसान भाइयों, जैव उर्वरक अन्य रासायनिक उर्वरक से सस्ता हुए जगह से फसल उत्पादन की लागत घटे। जैव उर्वरक के प्रयोग से नाइट्रोजन और घुलनशील फास्फोरस की फसल के वास्ते उपलब्धता भी करावे और ईशु रासायनिक खाद को प्रयोग कम हो जाए। किसान भाइयों, ईशु बांगी बढ़वार पर अच्छो प्रभाव पड़े। जैविक खाद शिव फसल के माँ मृदा जन्य रोग कौन हुए नहीं। जैविक खाद शिव खेत में लाभकारी सूक्ष्म जीवांगी संख्या में बढ़ोतरी हो जाए और सागे सागे जैविक खाद शिव पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। तो ऐ जैविक उर्वरकों का बहुत सा लाभ है। इन वास्ता लाभ ने देखता थका आपने जैव उर्वरकों को प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। कृषि में आज के टाइम में वैज्ञानिक इन बात पर जोर भी देने लग रही है। अब जैविक उर्वरक अंतर्गत ही बात करें आप जीवाणु खाद की, तो किसान भाइयों, वायुमंडल की नत्रजन और भूमि की फास्फोरस ने पौधांगे ने उपलब्ध कराने के वास्ते जीवाणुओं ने जीवित अवस्था में लिग्नाइट और कोयले के चूरे में मिला के जीवाणु खाद बनाई जाए और रखी जाए। जीवाणु खाद में आ लाभदायक जीवाणुओं की संख्या 1 ग्राम में 10 करोड़ से भी ज़्यादा रखी जाए। ऐ जीवाणु तीन तरियांगा हुए, वह तीन तरियांगा क्षा हुए। किसान भाइयों, अगर बात करें आप तो अजेटोबैक्टर जीवाणु, ऐ जीवाणु खाद और गैर दलहनी फसलांग में उपयोग करी जाए। एजेक्टोबैक्टर जमीन का माँ स्वतंत्र रूप से रहेगी, हवा की नत्रजन ने ग्रहण करके जमीन में छोड़े और ए नत्रजन पौधा ने भी उपलब्ध होती रहे मिलती रहे। किसान भाइयों, राइजोबियम जीवाणु की बात करा तो वो दूसरो जीवाणु खाद है और ए जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ा पर गुलाबी रंग की गांठा बना के बंग माँ रेंता रहे और हवा माँ इस नत्रजन ले गए और पौधा ने उपलब्ध करावे। न्यारी न्यारी दलहनी फसल के वास्ते राइजोबियम की न्यारी न्यारी प्रजाति हुए, तो इन वास्ते आपने जको राइजोबियम लेवा जको अपनी फसल है बिंग अनुसार ही आपन मिला गे और इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, अगर चणांग है तो चना में ही मिलावा, अगर मूंगो है तो मूंग में मिलावा, अगर अन्य दलहन फसल है तो बिंगो ही ले गए आपने और फिर आपन मिलाना चाहिए। एक है फास्फेट विलेय जीवाणु, वो भी एक तरह से जीवाणु खाद के अंतर्गत आवे और फसलों ने फास्फोरस मुख्यत रूप से DAP सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में दियो जाए। किसान भाइयों, इंगो एक बड़ो भाग जमीन में ए घुलनशील फास्फोरस ने घुलनशील अवस्था में बना गिर पौधा ने उपलब्ध करावे। इंगो उपयोग सगली फसलों में करो जा सके। इन वास्ते फास्फेट विलेय जीवाणु जो है PSB बोला आप इन्हें, तो इन्हें भी आपने हर एक फसल के वास्ते इस्तेमाल करना चाहिए। तो ईशू आपने इंगो लाभ मिल सके खेती का माँ पूरा इस्तेमाल करके और प्रत्येक फसल से फायदा उठाए जा सके, क्योंकि ऐज की जीवाणु खाद है नहीं आंगो मिलाने को अपनी फसल के माँ या आशु उपचारित करनो या फसल में देने से उत्पादन तो बढ़े ही है। सागे सागे एक बात आ भी है कि उत्पादन बढ़ोतरी के साग साग अपन खाद उर्वरक भी कम देना पड़े, तो इन वास्ते आने जरूर मिलाना चाहिए। इनके अलावा वाम वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइक्रो राइजल फंजाई एक लाभदायक जीवाणु फफूंद है, जीवित फफूंद माना आप इन्हें, जबकि पौधांगे जड़ भाग में धागे नुमा संरचनाओं में पनप गए जड़ा पर एक सघन जाल को निर्माण करे। किसान भाइयों, अरिंग उपयोग से पौधा ज़्यादा भूमि क्षेत्र में पोषक तत्वों को अवशोषण कर पावे। इनको प्रयोग बीज उपचार यानी कि किसान भाइयों, 500 ग्राम प्रति एकड़ बीज और भूमि उपचार यानी 4 किलोग्राम प्रति एकड़ 100 किलोग्राम गोबर की खाद में मिला के अरिंग उपयोग करी जाए तो आप इन्हें ई त्रियाँ शू इस्तेमाल करके और आप अपने फसल ने अपनी खेती ने उपचारित करके लाभ दे सका। भूमि उपचार के रूप में भी ले सका, बीज उपचार के रूप में भी ले सका, तो बीज अपन को पूरा लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, जैविक खाद को प्रयोग

0: यहाँ करा ई बात को सवाल उठे तो आ बात बहुत ज्यादा जरूरी है जाननी कि जैविक खाद को इस्तेमाल करता टाइम आपने के ध्यान रखना चाहिए, के तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। सही तरीके से अगर इस्तेमाल करांगा तो अपनी खेती में और ज्यादा लाभ मिलेगा और कोई नुकसान होने की गुंजाइश कौन रहनी। जैव उर्वरकों को प्रयोग बीज उपचार या जड़ उपचार या फिर मृदा उपचार के द्वारा करीजे ऐ दो तीन तरीके की बातें जरूरी है आने ध्यान में रखना चाहिए। किसान भाइयों इंगे सागे सागे ध्यान रखने की बात एक अब यह है कि जीवाणु खाद के पैक्ट पर अंकित अंतिम तिथि से पहले इन्हें प्रयोग कर लेवा। अगर तारीख निकलेगी तो फिर वो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बाद में कोई काम को कौन रहनी। जीवाणु खाद ने गर्मी और धूप से बचा के रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिंगो भंडारण आप ठंडी जगह पर ही करा तो यह बात कुछ एक है आंगो आप पूरी तरह ध्यान रखा और ध्यान रखता थका जैव उर्वरक को इस्तेमाल कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके किसान भाइयों लाभ ले सका। और आज के परिप्रेक्ष्य में चीज़ें लेनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, खेती में इस्तेमाल करनी बहुत जरूरी है। पर अब हूँ चालू राम राम सा राम राम।
1: कृषि में जीवाणु खाद का प्रयोग, अभी किसान भाई इस विषय पर खेती और वास्ते कार्यक्रम में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुजनीय लोक भजन, कलाकार हैं बैरागनाथ।

अभी आप लोक भजन सुन रहे थे। कलाकार थे बैरागनाथ। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए मानस गान। आज इसमें सुनते हैं भाग संख्या 264। मुख्य स्वर वाणी जयराम का है।

एक समय श्रीराम द्वारा रचित माया के वशीभूत होकर नारद मुनि ने विवाह करना चाहा था, किंतु प्रभु ने उन्हें विवाह करने से रोक दिया। तब से ही मुनि के मन में इसका कारण जानने की उत्कंठा बनी हुई थी। जब नारद जी ने प्रभु के समक्ष अपनी शंका प्रकट की, तो प्रभु ने युवती स्त्री के गुण अवगुणों की चर्चा करके उनकी शंका का समाधान किया। स्वामी के वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो उठा, उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। इसी संदर्भ में प्रभु ने संतों के उन लक्षणों पर प्रकाश डाला जिनके कारण वह भक्तों के वश में रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। संत जन इन छह मानसिक तथा शारीरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। वे संसार के दुखों और संदेहों से सर्वथा मुक्त होते हैं। दूसरों को मान देना, अभिमान न करना, धैर्यवान होना, धर्म के ज्ञान और आचरण में निपुण होना उनके गुण हैं। वैराग्य, विवेक तथा परमात्मा के तत्व का ज्ञान संतों के लक्षण हैं।

मानस गान की भाग संख्या 264 अभी आपने सुनी मुख्य स्वर वाणी जयराम का था। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात। कार्यक्रम सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं का आज नमस्कार देवेंद्र शर्मा की ओर से। श्रोताओं, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ,

सदियों पहले संत तुकाराम जी ने कहा था कि पेड़ पौधे और वन्य जीव हमारे सगे संबंधी हैं। श्रोतो, मानव सभ्यता का इतिहास गवाह है कि हमारा अस्तित्व पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहा है, लेकिन आधुनिकता, शहरीकरण और औद्योगिक क्रांति की अंधी दौड़ में इंसान ने उसी डाल को काटना शुरू कर दिया जिस पर वह बैठा है। आज ग्लोबल वार्मिंग, ऋतु चक्र में बदलाव, असमय बाढ़ और सूखे जैसी आपदाएं इस बात का संकेत है कि हम प्रकृति का संतुलन बिगाड़ चुके हैं। श्रोताओं, इस संकट से उबरने का सबसे सरल, प्रभावी और प्राकृतिक उपाय है पेड़ लगाना। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ केवल एक नारा नहीं, बल्कि यह वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत है और हमारे अस्तित्व की रक्षा की एकमात्र मार्ग है। श्रोताओ, यदि हम आज नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ियों को इसके भयानक दुष्परिणाम भुगतने होंगे। पहाड़ों पर पेड़ों की कटाई से भूस्खलन और मैदानी इलाकों में अचानक आने वाली बाढ़ की घटनाएं बढ़ी है। प्रदूषित हवा के कारण अस्थमा और कैंसर जैसी बीमारियां घर घर में फैल रही है। श्रोतो, पेड़ केवल हवा को ही साफ नहीं करते, बल्कि धूल, मिट्टी, जहरीली गैसों, यहां तक कि ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं। सड़कों के किनारे लगे पेड़ वाहनों के शोर और धुएं को सोखने का काम करते हैं। श्रोतो, हम अक्सर शिकायत करते हैं कि गर्मी बढ़ रही है या प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन इसका समाधान हमारे ही हाथों में है। अपने जीवन के हर विशेष अवसर पर कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं, और सिर्फ लगाएं नहीं बल्कि उसके बड़े होने तक उसकी देखभाल भी करें। जब सुरक्षित होगा पेड़ों का संसार, तभी सुरक्षित होगा हमारा हर विचार। आइए मिलकर धरती को फिर से हरा भरा बनाएं।

पूरी दुनिया बिना किसी अनुवाद के समझ सकती है। संगीत हमारे जीवन का एक ऐसा अटूट हिस्सा है जो केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व, भावनाओं और मानसिक स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। सुबह की शुरुआत में भजनों की शांति हो या जिम में वर्कआउट के दौरान जोश भरने वाला बीट, संगीत हर मोड़ पर हमारा साथ निभाता है। हमारे जीवन में संगीत के महत्व को हम जानते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन चुका है। ऐसे में संगीत एक बेहतरीन थेरेपी की तरह काम करता है। धीमा और मधुर संगीत सुनने से हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन रिलीज होते हैं, जो तनाव, चिंता और डिप्रेशन को तुरंत कम करने में मदद करते हैं। श्रोतो, कई शोधों से पता चला है कि हल्का या वाद्य संगीत सुनते हुए काम करने या पढ़ाई करने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। यह मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को सक्रिय करता है, जिससे रचनात्मकता और याददाश्त में सुधार होता है। जब हमारे पास अपनी खुशी, गम, प्यार या देशभक्ति को बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, तब संगीत उन भावनाओं को आवाज देता है। श्रोतो, संगीत के जरिए इंसान बिना कुछ कहे भी अपने दिल की बात दूसरों तक पहुंचा सकता है। संगीत का सीधा असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। सुरीला संगीत सुनने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, दिल की धड़कनें संतुलित होती है, अनिद्रा की समस्या दूर होती है और गहरी नींद आती है। श्रोतो, संगीत की कोई सीमा धर्म या भाषा नहीं होती। एक ही गाना दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे उन लोगों को आपस में जोड़ सकता है जो एक दूसरे की भाषा तक नहीं जानते। यह सांस्कृतिक धरोहर को जिंदा रखने और उत्सवों में रंग भरने का काम करता है। मां की लोरी से शुरू हुआ संगीत का यह सफर जिंदगी के हर पड़ाव से गुजरते हुए हमारे साथ रहता है। संगीत आत्मा का भोजन है जो हमें अंदर से जीवंत बनाए रखता है। जब भी जिंदगी थोड़ी भारी लगने लगे, बस अपनी पसंद का एक गीत चलाइए और देखिए कैसे माहौल बदल जाता है।

श्रोताओं, लोभ पाप का मूल है। ये सदियों पुरानी कहावत आज के समय में उतनी ही सच है। लोभ यानी लालच इंसान की एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां उसकी जरूरतें

खत्म हो जाती है और अंतहीन इच्छाएं शुरू हो जाती है। महात्मा गांधी ने कहा था, धरती के पास हर इंसान की जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक इंसान के लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं। जब लालच इंसान के दिमाग पर हावी होता है तो उसके जीवन में कई दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। लोभी व्यक्ति के पास चाहे जितना भी धन, पद या प्रतिष्ठा आ जाए, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। उसके मन में हमेशा और पाने की होड़ मची रहती है। वह निरंतर दौड़ उसे मानसिक रूप से थका देती है, जिससे वह तनाव, चिंता और अनिद्रा का शिकार हो जाता है। लालच इंसान को अंधा बना देता है। जब व्यक्ति हर रिश्ते को फायदे और नुकसान के तराजू में तोलने लगता है तो परिवार और समाज में उसका सम्मान खत्म हो जाता है। धन या जमीन जायदाद के लोभ में भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, जिससे हंसते खेलते परिवार बिखर जाते हैं और अंत में ऐसा व्यक्ति बिल्कुल अकेला रह जाता है। लोभ के वशीभूत होकर इंसान सही और गलत का अंतर भूल जाता है। अधिक पैसा कमाने के चक्कर में लोग भ्रष्टाचार, चोरी, मिलावटखोरी और धोखाधड़ी जैसे अपराधों के रास्ते पर चल पड़ते हैं। यह विवेकहीनता उन्हें कानून की नजर में अपराधी और समाज की नजर में गिरा हुआ बना देती है। श्रोतो, लालच सिर्फ पैसों का नहीं होता, स्वाद और आलस्य का भी होता है। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखें तो धन के लोभ में इंसान दिन रात मशीन की तरह काम करता है। वह न सही समय पर खाता है और न ही आराम करता है। नतीजा यह होता है कि जो धन उसने लोभ में कमाया था, वही बाद में बीमारियों के इलाज में खर्च हो जाता है। श्रोतो, इतिहास और पुराणों में ऐसे कई उदाहरण हैं जो बताते हैं कि लोभ का अंत हमेशा बुरा होता है। रामायण में सोने के हिरण के लोभ ने सीता हरण और अंततः पूरी लंका के विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। महाभारत में दुर्योधन के राज्य के लोभ ने भीषण युद्ध को जन्म दिया। श्रोतो, संतोष ही परम सुख है। जीवन को खुशहाल बनाने का एकमात्र तरीका है संतोष। अपनी मेहनत से जो मिले उसमें खुश रहना और दूसरे के हक को न मारना ही इंसान को सच्चा सुख देता है। लालच की खाई को कभी भरा नहीं जा सकता, क्योंकि यह जितनी गहरी होती है जाती है, इंसान उतना ही उसमें धंसता चला जाता है।

0: श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम सुप्रभात समाप्त करने की अपने साथी देवेंद्र शर्मा को दें आज्ञा। नमस्कार।
1: हे गुरुदेव, ये मैं क्या देख रही हूँ?
2: जिनके दर्शनों को दुनिया तरसती है, स्वयं दर्शन देने आ रहे हैं।
1: पहुँचा हुआ है साधु, क्या क्या चमत्कार दिखलाए।
0: अभी आप कार्यक्रम सुप्रभात सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 8 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार।
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो, भूल ही गई थी। अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
0: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
2: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ

0: डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 223,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिससे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
2: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करके ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष करके रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
1: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
3: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
1: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
4: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जाँच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।

0: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
1: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर

0: जेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिन्दुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है, तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिगेज इन न्यू दिल्ली टुडे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू चेयर 73rd प्लीनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन शिलोंग। U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahe today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event virtually in the evening. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the acting president of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New

0: वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर डेल्सी रॉड्रिगेज के साथ बातचीत करेंगे। मोहतरमा रॉड्रिगेज भारत के 5 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची हैं। उनके हमरा मुख्तलिफ महकमों के वजीरों पर मुश्तमिल एक वफ्द भी भारत आया है। इसमें उमूर खारजा, मईशत, खजाने, साइंस और टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन शामिल हैं। मोहतरमा रॉड्रिगेज इससे पहले साल 2015 में वजीर खारजा की हैसियत से और इसके बाद 2019, 2023, 2024 और 2025 में नायब सदर की हैसियत से भारत के दौरे पर आ चुकी हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस बातचीत में भारत वेनेजुएला ताल्लुकात के तमाम तर पहलू जेर गौर आएंगे और मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने के तौर तरीके तलाश किए जाएंगे, जिनमें तवानाई की यकीनी फराहमी, तिजारत, सरमायाकारी, दवासाजी, हिफ्जान सेहत, नकलो हमल और काबिल तजदीद तवानाई के शोबे शामिल हैं। वेनेजुएला का वफद भारत की तकनीकी और सनअती सलाहियत से वाकफियत हासिल करने और इश्तराक के मौके तलाश करने की खातिर तवानाई, दवासाजी और मोटर गाड़ियों के शोबे से वाबस्ता कई मकामात का दौरा भी करेगा। तवानाई और सरमायाकारी के शोबे में भारत वेनेजुएला का एक अहम साझेदार रहा है। भारत के सरकारी मिल्कियत इदारों ने तवानाई के शोबे में वेनेजुएला में काफी सरमायाकारी की है और वो अपनी मौजूदगी बढ़ाने की खातिर मुख्तलिफ मौके तलाश करने के ख्वाहिशमंद है। उम्मीद है कि वेनेजुएला की लीडर के इस दौरे से बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और मुख्तलिफ शोबों में राबतों को तकवियत भी मिलेगी। दिल्ली से प्रिया मोंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मेघालय के शहर शिलोंग में शुमाल मशरकी काउंसिल के 73वें मुकम्मल इजलास की सदारत करेंगे। शुमाल मशरकी खित्ते के फरोग से मुतालिक वजारत ने कहा है कि इस इजलास में इलाकाई तरक्की के अहम शोबों के लिए तश्कील दी गई आला सतह की सीएम टास्क फोर्सेज की पेशरफ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास के दौरान सियाहत, ज़िरात, बागबानी, सरमायाकारी के फरोग, दूध, अंडों, मछली और गोश्त में खुद किफालत, खेलों के फरोग, इक्तसादी कॉरिडोर डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी और हथकरघा और दस्तकारी के बारे में प्रेजेंटेशंस पेश की जाएंगी। उम्मीद है कि इस तबादला ख्याल से मुश्तरक मकासद के हुसूल के लिए रियासतों और मुतल्लिका फरीकों के माबैन तालमेल के साथ इकदाम करने में सहूलत होगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। अपने इस दौरे में जनाब अमित शाह पुष्पा बांता पैलेस होटल का संग बुनियाद रखे जाने की तकरीब में शिरकत करेंगे। लंकामूरा के मकाम पर सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ की सरहदी चौकी पर वो जाएंगे और रियासती नीज मरकजी सिक्योरिटी अहदेदारों के साथ आला सतह की मीटिंग करेंगे। रियासती सरकार ने जनाब अमित शाह के दौरे के सिलसिले में आला सतह की इंतजामी और सिक्योरिटी मीटिंग का भी एहतमाम किया है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कानून साजों से कहा है कि अमरीका और भारत अपने उस तजारती समझौते को हतमी शक्ल देने से महज कुछ हफ्ते दूर हैं जिसका तवील अरसे से इंतजार था। खारजी उमूर से मुतालिक हाउस कमेटी के सवालों के जवाब देते हुए कल रात जनाब रूबियो ने बताया कि वाशिंगटन और नई दिल्ली समझौते को मुकम्मल करने के करीब हैं। जनाब रूबियो ने इस बात को कई बार उजागर किया कि भारत बहरुल काहल खित्ते में भारत अहम स्ट्रेटजिक शराकत दार है। उनका यह बयान दुनिया की 2 सबसे बड़ी और सबसे कदीम जमहूरियत के दरमियान माशी ताल्लुकात की बढ़ती रफ्तार की जानिब इशारा करता है। जनाब रूबियो ने मजीद कहा कि उनके भारत दौरे के दौरान क्वाड के उनके हम मनसबों से भी तबादला ख्याल हुआ। क्वाड ग्रुप में भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने लाओ पीडीआर के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा थोंग सावान फोम्बी फाने के साथ कल नई दिल्ली में 10वीं भारत लाओ पीडीआर मुश्तरक कमीशन मीटिंग की मुश्तरक सदारत की। मीटिंग के दौरान फरीकैन ने तिजारत और सरमायाकारी, सेहत, तवानाई, डिजिटल कनेक्टिविटी, तरक्याती शराकतदारी, सलाहियत साजी और सकाफत समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसके अलावा दोनों फरीकों ने खित्ते में भारत आसियान ताउन और पेशरफ्त को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत की। अपनी इफ्तिताही तकरीर में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और लाओ पीडीआर के दरमियान करीबी सकाफती ताल्लुकात हैं जो बुद्धिज़्म और रामायण के मुश्तरक विरसे में नज़र आते हैं। जनाब जयशंकर ने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात सदियों पुराने हैं जो गहरे सकाफती और अवाम से अवाम राबतों पर मबनी हैं। दूसरी जानिब लाओ पीडीआर के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा ने कहा कि यह मसरूफियत दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे ताल्लुक की अक्कासी करती है और मौजूदा इलाकाई और आलमी माशी गैर यकीनी और चैलेंजों के बावजूद दोनों मुल्कों के मुश्तरक अजायम की यकीन दहानी कराती है। बरतानिया के वजीर खारजा और दौलत मुश्तरक मामलों की वजीर यूविट कूपर भारत के अपने 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल रात

0: नई दिल्ली पहुंची। मोहतरमा कूपर का आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात का प्रोग्राम है। वो आज शाम वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगी। वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि मोहतरमा कूपर का दौरा भारत बरतानिया जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने का मौका फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पार्लियामानी हलका और दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक वाराणसी एक बार फिर तारीखी बैन-उल-अक़वामी तकरीब का गवाह बनने जा रहा है। G20 मीटिंगों की कामयाब मेज़बानी के बाद वाराणसी अब आज और कल ब्रिक्स सकाफती ग्रुप की दूसरी मीटिंग की मेज़बानी करेगा। इस मीटिंग में चीन, ब्राज़ील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया समेत 11 मुल्कों के नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। ये मीटिंग सीनियर सिफारतकारों, पॉलिसी साजों और सकाफती माहिरीन को यकजा करेगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: G20 मीटिंग के दौरान काशी के आलमी शोहरत याफ्ता GI टैग वाली मसनूआत की खसूसी नुमाइश मुनक़िद की जाएगी। नुमाइश के दौरान 6 कारीगर 6 मुनफरिद मसनूआत पेश करेंगे जो वाराणसी की गुनागुन दस्तकारी रिवायात की अक्कासी करती हैं। ये मसनूआत काशी के सदियों पुराने फ़न, कारीगरी और सकाफती विरासत का जीता जागता सबूत हैं। नुमाइश के ज़रिए गैर मुल्की मंदूबीन न सिर्फ इन मसनूआत की इनफरादियत से वाकिफ़ होंगे बल्कि मुकामी फ़नकारों और कारीगरों को अपनी मसनूआत आलमी बाज़ार तक पहुँचाने का मौका भी मिलेगा। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कलीम अहमद।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में भारत गुज़िश्ता 12 साल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास नज़रिए के तहत काबिले ज़िक्र अक्सर तब्दीली के दौर से गुजरा है। इस अरसे के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई फ्लैगशिप इकदाम किए। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 सालों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों पर खसूसी फ़ीचर पेश कर रहा है। इसके तहत आज कारोबार को आसान बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम पर रोशनी डाली जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने पिछले 12 साल के दौरान कारोबार के नज़्म व ज़ब्त से मुतालिक माहौल और कारोबार में आसानी में बेहतरी के लिए कई पायदार इस्लाहात की हैं। साल 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल इख्तरा को परवान चढ़ा रही है जिससे इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल रहा है और सरमायाकारी पर मबनी तरक्की मुमकिन हो पाई है। हुकूमत की कोशिशों से इस साल मार्च के महीने में स्टार्टअप्स की तादाद 2,23,000 हो गई है जो साल 2016 में महज 500 के करीब थी। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए महाराष्ट्र के थाने के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बेसर ने कहा कि रास्त और बराह रास्त टैक्सों में हुकूमत की जानिब से की गई इस्लाहात से इक्तसादी इस्तेहकाम आया है।
2: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
1: साल 2016 में शुरू हुआ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम ख्वातीन कारोबारियों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, अपनी मदद आप ग्रुपों और दिव्यांग जनों को खरीदारी के असल धारे से जोड़ रहा है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जैम पर एक फरोख्त कुनिंदा और कंपनी की CMD कामिनी गुप्ता ने बताया कि जैम का तरीक़ेकार आसान और शफाफ है।
3: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जिम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। MSME स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
1: नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कलीम अहमद।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज शाम गुजरात के शहर अहमदाबाद में शुरू हो रही है जो खेलों के आलमी मंजरनामे पर एक तारीखी संग मील की हैसियत रखती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल तरीके से इस बड़े प्रोग्राम में शामिल होंगे। इस चैंपियनशिप के लिए दुनिया भर से योग के मद्दा और एथलीट्स अहमदाबाद में जमा हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
4: इस 5 रोजा चैंपियनशिप में अमेरिका समेत 60 मुल्कों के 400 से ज्यादा

0: शुरू का हिस्सा लेंगे। इसका एहतमाम वर्ल्ड योगासन के तहत किया गया है और योगासन भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है। संगे मेल की हैसियत रखने वाले इस प्रोग्राम का मकसद आलमी सतह पर योग और तंदुरुस्ती के बारे में बेदारी फैलाने के साथ साथ आलमी सतह पर खेल मुकाबलों में योग को शामिल करने की राह हमवार करना है। इस मुकाबले में शामिल होने वाले एथलीट्स योगासन के 7 ज़ुमरों में हिस्सा लेंगे। आलमी सतह पर मेयार परख के पैमाने के तहत कुव्वत, लचक, तवाजुन, पायदारी और दुरुस्तगी की बुनियाद पर योगासन करने वालों को परखा जाएगा। अहमदाबाद से अपर्णा खुंट की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में वाकई गेस्ट हाउस में गुज़िश्ता रोज़ लगी ज़बरदस्त आग में 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि महलुकीन में 12 गैर मुल्की और 9 भारतीय शहरी शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात जारी हैं। पुलिस के मुताबिक आग लगने वाली इमारत के मालिक लोकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। इस दौरान दिल्ली के वजीर आला के दफ्तर ने कहा कि उन खामियों की पूरी संजीदगी से जांच की जाएगी जो इस अफसोसनाक आतिश जदगी वाकई की वजह बनी और जवाबदेही तय की जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कल रात ब्रह्मपुर थाने के तहत आने वाले इलाके में एक प्राइवेट अस्पताल में ज़बरदस्त आग लगने से 3 अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हो गए। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज केरलम और माहे में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मगरबी बंगाल के हिमालयी जैली खित्ते, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश होने का इम्कान है। फुटबॉल में मेज़बान भारत गोवा के मारगाव में सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर खवातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुँच गया है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम।
2: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नेपाल की बरसरे इकतदार पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चेयरमैन रवि लामी छाने की मुलाकात को नुमाया किया है जिसमें पीएम ने कहा कि भारत नेपाल के साथ मिलकर काम करने का ख्वाह है। अखबार की एक और अहम खबर है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कबायली अफराद की हमाजहत तरक्की से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि आदिवासियों की हमाजहत तरक्की के लिए उनके पास जाकर उनके मसाइल को समझना होगा। मरकजी हुकूमत फिजाई आलूदगी को कम करने के मकसद से दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलेगी।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेस के साथ आज नई दिल्ली में बातचीत करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज शिलोंग में शुमाल मशरकी काउंसिल के 73वें मुकम्मल इजलास की सदारत करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका और भारत के दरमियान तजारती समझौता चंद हफ्ते के अंदर अंदर तय पा जाएगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने केरलम और माहे में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज अहमदाबाद में शुरू हो रही है। वजीराजम नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल तरीके से इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और फुटबॉल में गोवा में भूटान को 1 से हराकर भारत खवातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
3: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में सुनते हैं आज भजन।

संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जिसके ऊपर मेरे ठाकुर की कृपा नहीं, सब कुछ उन्हीं की कृपा से हो रहा है और सबको वही दे रहे हैं। जो इस बात से मुनकर है, इस बात को नहीं मानते हैं,

0: कार्यक्रम सुगम संगीत में आप सुन रहे थे भजन। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ है, 9 बजने को है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कर आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने किसानों से परंपरागत खेती की ओर लौटने का आह्वान किया। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हुए। और प्रदेश के ज्यादातर हिस्से तेज अंधड़ और बारिश से प्रभावित, आज 16 जिलों के लिए आंधी बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू हो रही है।

0: 5 दिन के इस आयोजन में 70 से अधिक देशों के लगभग 500 एथलीट भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। उन्होंने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि प्रतियोगिता में पारंपरिक कलात्मक योगासन और लयबद्ध युगल सहित कई विधाएं शामिल होंगी। चैंपियनशिप में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्गों में पुरुष और महिला एथलीटों के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं होंगी। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्थानीय निकायों के लिए 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है। उन्होंने इसे जमीनी स्तर पर विकास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने आधुनिक शासन में तकनीक की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि पंचायत प्रशासन में AI, डिजिटल उपकरणों और नवाचारों को अधिक अपनाने की आवश्यकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सोच है कि ग्रामोदय से ही भारत का उदय हो सकता है। जब तक गांव सशक्त नहीं होगा तब तक इस देश को हम विकसित भारत नहीं बना सकते। हम पंचायत के प्रतिनिधियों से आग्रह करें कि आप अपने पंचायत के आय के स्रोत में भी वृद्धि करिए, आप उसके लिए भी योजना बनाइए और उसको कार्यान्वित करने का काम कीजिए, तभी आप विकसित पंचायत के रूप में आपकी गिनती हो सके।
0: इस अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी में 34 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया। साथ ही नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी में 8 पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कल अलवर जिले के बगड़ राजपूत गांव में खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कृषि गोष्ठी में उन्होंने किसानों को रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करते हुए परंपरागत खेती पद्धति की ओर लौटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेत का स्वास्थ्य सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। रासायनिक उर्वरकों के बहुत अधिक उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही है। इस दौरान मंत्री ने कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल अपने आवास पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही महिलाओं से संवाद किया। इसमें संबल सखी तथा माई भारत के माध्यम से समाज सेवा, कौशल विकास और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रही महिलाएं शामिल हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार के क्षेत्र में उन्होंने प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस अवसर पर महिलाओं ने अपने विचार, अनुभव और समाज हित में किए जा रहे प्रयासों को मुख्यमंत्री से साझा किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। अभ्यर्थी 3 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन इस वर्ष 29 नवम्बर को किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और अन्य जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। गौरतलब है कि इसमें राज्य सेवा के 192 और अधीनस्थ सेवा के 415 पदों पर भर्ती की जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत देश में उल्लेखनीय बदलाव आया है। केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12,00,000 रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीज़ों की लागत कम करके मध्यम वर्ग

0: को राहत पहुंचाई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी ने उप निरीक्षक दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि अदालत ने दिनेश कुमार को 8 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। मामले में उसकी बहन निर्मा कुमारी की तलाश भी अभी जारी है। दोनों ने परीक्षा से पहले हल किया हुआ प्रश्न पत्र हासिल किया और उसी के आधार पर 15 सितंबर 2021 को आयोजित एसआई भर्ती परीक्षा दी। और अब मौसम। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज अंधड़ और बारिश की गतिविधियां जारी हैं। आज भी कई स्थानों पर बारिश होने के समाचार हैं। सवाई माधोपुर में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है और बरसात हो रही है। बारह में शाम से शुरू हुआ बूंदाबांदी का दौर रुक रुक कर आज भी चल रहा है। हमारे भीलवाड़ा संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में तेज रफ्तार हवा के साथ कुछ देर झमाझम बरसात हुई।
1: बुधवार रात्रि को मौसम में पुनः परिवर्तन हुआ और गुरुवार सुबह भीलवाड़ा जिले के आसीन सम्भूगढ़ और गुलापरा क्षेत्र में कुछ समय के लिए तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके कारण आम जन को गर्मी से राहत मिली है। आज हुई बारिश के बाद अब किसान आगामी दिनों खरीफ की फसल की बुआई के लिए अपने खलिहानों की हकाई जुताई में जुट जाएंगे। लगातार 3 दिन पूर्व हुई बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। सोमदत्त त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, भीलवाड़ा।
0: मौसम में आए इस बदलाव से तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर कल भी दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ज्यादातर हिस्सों में तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। 43.7 डिग्री सेल्सियस के साथ जैसलमेर सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज भी 16 जिलों के लिए आंधी बारिश का येलो और 16 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं तेज रफ्तार हवाओं के साथ मध्यम से तेज बरसात हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावना है। पाली में आज से 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता शुरू हो रही है। पुलिस लाइन हॉकी मैदान पर शाम को इसका उद्घाटन किया जाएगा। इससे पहले जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने टीम के टी शर्ट्स का विमोचन किया और मैदान का निरीक्षण किया। इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों की 25 टीमें भाग लेंगी। 3 दिन चलने वाली ये स्पर्धा नॉकआउट पद्धति से होगी। वहीं पाली की नीलंजना चौधरी ने जकार्ता में आयोजित इंटरनेशनल रोलर स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। जीत के बाद उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना उनके निरंतर अभ्यास का परिणाम है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने किसानों से परंपरागत खेती की ओर लौटने का आह्वान किया। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हुए। और प्रदेश के ज्यादातर हिस्से तेज अंधड़ और बारिश से प्रभावित, आज 16 जिलों के लिए आंधी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मरुमंगल। कलाकार हैं शहनाज़।

अभी आप मरुमंगल कार्यक्रम सुन रहे थे। कलाकार थे शहनाज। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सुनते हैं युगल गीत। कार्यक्रम का यह पहला नगमा लता मंगेशकर और अनूप जालोटा की आवाज, आनंद बख्शी की रचना को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।

0: तो तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुनते हैं फिल्म प्रेम कहानी में। आनंद बख्शी की रचना को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र।

श्रोताओं आइए अब सुने फिल्म सरगम का ये नगमा, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। आनंद बख्शी की रचना को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

युगल गीते से समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आइए सुने किशोर कुमार और आशा भोसले को फिल्म राम बलराम में। आनंद बख्शी की रचना को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

युगल गीते से समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आइए अब सुने मोहम्मद अजीज और सुदेश भोसले की आवाज में फिल्म सौदागर का ये नगमा। आनंद बख्शी की रचना को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: قتل کیا تھا؟
1: अभी आप फिल्म संगीत में युगल गीत कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत। अनुरोध गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज नमस्कार देवेंद्र शर्मा की ओर से। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला नगमा हमने लिया है फिल्म प्रेम रोग से। आवाजें लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर की, संतोष आनंद की रचना को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और पसंद करने वाले हैं आप सभी। सिद्धार्थ नगर दरियापुर भावली से गजानंद येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अशोक येले। इसी गीत को पसंद करना चाहे है मोहल्ला हलवाई यान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कोसर। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। झुंझुनू हमीरी कला से पसंद करने वाले हैं भंवर सिंह मीणा, तन्मय मीणा और इसी गीत को पसंद करने वाले हैं खोखरा वाली श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा और शगुन बारासा। हनुमानगढ़ फाजिलका से पसंद करने वाले हैं रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा। नागपुर महाराष्ट्र से पसंद करने वाले हैं कमल साहनी, पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मालिक, संदीप मक्कड़। रामगढ़ कैंट झारखंड से पसंद करने वाले हैं निप्पी साहनी और सुनीता साहनी। दतरंगी से पसंद करने वाले हैं भाटापारा

हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। बड़िंग खेड़ा से पंजाब से पसंद करने वाले हैं मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और इनके बहुत सारे साथी। लीजिए आप सभी की पसंद पर ये नगमा।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: श्रोताओं आइए सुने मोहम्मद रफी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह को फिल्म सुहाग में आनंद बख्शी की रचना को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गीत को पसंद करने वाले हैं रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नहावनकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, सोपान तायडे, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मोहकर, गांव नथाणा पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं पिपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवंश, गांव बणवाला हनुमंता फाजिल का पंजाब से विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, माँ विदा देवी और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढुकिया, प्रमिला ढुकिया, ज्योति, सरिता, तमन्ना, सचिन, विष्णु, शिवम ढुकिया। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम रबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आशिफ, गांव कलाना तहसील भादरा से पसंद करने वाले हैं विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा, किरसन मायल, हनुमान सहरण, किडू राम जोया, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। पलारी छत्तीसगढ़ से पसंद करने वाले हैं नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा।

देवांगन और ईशांत देवांगन, चंडीगढ़ से पसंद करने वाला सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, और इसी गीत को पसंद करने वाले भावसार से वीर मगाम, गुजरात से पसंद करने वाले अजीत भावसार, परमिला भावसार, भावेश कुमार और सनी भावसार। लीजिए आप सभी के पसंद पर ये नगमा।

कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म संगम से आवाज़ लता मंगेशकर की। हसरत जयपुरी की रचना को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और पसंद करना चाहा है सिडनी ऑस्ट्रेलिया से इंद्र कोचर, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल सिंह जोसन, वैंकूवर कनाडा से रोबिन सिंह जोसन। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं 15 PS से सरवजीत सिंह, सरवजीत कौर और गुरमन। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवन रेणवा, हंसराज भाटिया, मणिराम रणजीत, राम किरोड़ीवाल और इनके बहुत सारे साथी। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं अनूपगढ़ से भगवती देवी, ज्ञानचंद, पूनम, रवि, मेहुल, चंदन, कोमल, नेहा, माधव, लक्ष्य और इनके बहुत सारे साथी। बागपत उत्तर प्रदेश से पसंद करने वाले हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से पसंद करने वाले हैं विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश और इसी गीत को पसंद करने वाले हैं सादुल शहर से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और इसी गीत को पसंद करने वाले हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम शाबिर राहिर और मेहराज जहां। भोपालगढ़ राजस्थान से पसंद करने वाले हैं धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार। आरायन श्रीगंगानगर से डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, बिमला सोनू, ममता दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल और इनके बहुत सारे साथी। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या आरब, मेघा साक्षी, आशीष अनुज, विशु छोटू और SK पप्पी खुराना। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं ढानीलाल खां, जावेद खां, अरमान खां, इमरान खां, सीमा बानो, विनोद खां और इसी गीत को पसंद करने वाले हैं नोला रामपुरा से सुरेंद्र डीढ़न, शकीला डीढ़न, संदीप अनवर, अक्कू बावरा और सदर बाजार कोरावली से। इस गीत को पसंद करने वाले हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। बठिंडा रोड मंडी डब्बावाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। लीजिए आप सभी की पसंद पर ये नगमा।

एक बार फिर से सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म शागिर्द में। मधुर सुल्तानपुरी की रचना को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और पसंद करना चाहा है लोग ठाकुरांवाला से शरण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। खारिया जिला सिरसा से पसंद करने वाले हैं प्रताप जी नागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु और बलदेव कटारिया। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पंवार, डेनी पंवार, मनीष पंवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, और गांव जाखोद राजस्थान से पसंद करने वाले हैं शंभू दयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका पाठक, गाव्या पाठक, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव। अलिका तहसील डब्बा वाले से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सर्वजीत लखोत्रा और रानी सोनू रजनी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, और इसी गीत को पसंद करने वाले हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से ही महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। लीजिए आप सभी की पसंद पर ये नगमा।

कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म मर्यादा से, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी की रचना को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी, और पसंद करने वाले हैं आप सभी। सिरसिला जिला चूरू से पसंद करने वाले हैं संदीप सिंह सोनग्रा, प्राची सोनग्रा, सोमल सोनग्रा, कार्तिक सोनग्रा, उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। रावर करनाल से पसंद करने वाले हैं विनोद लखनपाल, और इसी गीत को पसंद करने वाले हैं मोहल्ला चेंकुटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अब्बान अब्बासी और इनके परिवार के सदस्य। पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पसंद करने वाले हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, मुरली शिवम वर्मा। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं जीटीबी मार्केट अहमदगढ़ से अनवर अंसारी, रवीना अफीना, सना हीना, शकीला, जस्मीन, राजिया सुल्ताना, अख्तर अंसारी।

0: अंसारी, सूरज मोहम्मद जावेद अंसारी और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गोहर, वंदना गोहर, मयंक गोहर, तन्वी गोहर और जयपाल यादव। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से पसंद करने वाले हैं रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये और तन्मय गजबिये। बुजुर्ग पलेरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से पसंद करने वाले हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। लीजिए आप सभी के पसंद पर ये नगमा।
1: चुपके से दिल दे दे
2: नहीं ते
1: नहीं ते।

शतक कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म कारवां से, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, और गीत लिखा है मधुर सुल्तानपुरी ने, धुन तैयार की है आर डी बर्मन ने। इस गीत को पसंद करने वाले हैं आप सभी। नाई वाला जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा।

गेट बेवानी से पसंद करने वाले हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़ गुज्जर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन दहरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गोरी और हसन सिक्का। बीड शहर महाराष्ट्र से पसंद करने वाले हैं नंद किशोर गटे, संगीता गटे, साक्षी गटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, राम निवास अग्रवाल, धनंजय टूल और बीबी कुल थे। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं नागपुर रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फर डावर, अब्दुल हक डावर, जिया उल हक, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से पसंद करने वाले हैं सोहन जोशी और पायल जोशी। लीजिए आप सभी की पसंद पर ये नगमा।

आसाम से इस गीत को पसंद करने वाला है हितेंद्र दास, मोती नगर नई दिल्ली से पसंद करने वाले हैं मानसी गौरव अनिल केता अरोड़ा, महाराष्ट्र जालना से पसंद करने वाले हैं विजय पाटिल, धुंधाड़ा तहसील लूनी जिला जोधपुर से अलादीन धुंधाड़वी और इनके बहुत सारे साथी, अलीकर डब्बावाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार सुनीता कुलदीप गांधी, और इसी गीत को पसंद करने वाले हैं शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीणा मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, और इसी गीत को पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से पसंद करने वाले हैं जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी गर्ग, रवि गर्ग, शिल्पा गर्ग, और इसी गीत को पसंद करने वाला है खिंदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर से कानाराम सुखराम, श्याम सुंदर तपस्या और धर्मेंद्र चौहान, पटना से नेपानगर मध्य प्रदेश से पसंद करने वाले हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशाल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र शाह, गंज डुंडवारा से पसंद करने वाले हैं शमशुल कमर राही, शाहिन फतिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी, गांव टोरोवाल जिला नवांशहर पंजाब से गंगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम और बेबी वामिका और वाणी थांदी। लीजिए आप सभी की पसंद पर ये नगमा।

शतक कार्यक्रम का अगला नगमा हमने लिया फिल्म बॉबी से, आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की, और इस गीत को पसंद करने वाले हैं आप सभी। हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जिस्सान खान। झोरड़ ढाणी गांव बहलोल नगर से पसंद करने वाले हैं नरेंद्र झोरड़, भीमसेन, लोकेश, गौरव, पुनीता और आरबी झोरड़। बहलोल नगर से ही पसंद करने वाले हैं हरीश हैरी, जगतार जहरी, सुशील डेलू और राकेश चाहर। मेरठ से पसंद करने वाले हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं शेरवानी गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। दुर्गा कॉलोनी हांसी से पसंद करने वाले हैं राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। आदर्श नगर बठिंडा से पसंद करने वाले हैं अशोक ग्रोवर, परवीन नीति, परनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर। गांव नलोई सिवानी मंडी जिला हिसार से पसंद करने वाले हैं सज्जर

रंजन कुमार जांगड़ा, कार्तिक और वेदांश। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से पसंद करने वाले हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, दुबिंदा, नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय। और इसी गीत को पसंद करने वाला है नाटाराम से दशरथ सेन। पिंगा वाला चौक गोराया जालंधर से पसंद करने वाले हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल साहनी। मुक्सर पंजाब से पसंद करने वाले हैं बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान और रवनीत और निशु और इनके बहुत सारे साथी। लीजिए आप सभी की पसंद पर ये नगमा।

0: श्रोतो, कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं अन मिलो सजना फिल्म का ये नगमा। और इस गीत को पसंद करने वाले हैं नौहर जिला हनुमानगढ़ से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, पवन सुथार, शंकर बिहारी, शिव कुमार, सोनू मिस्त्री, महेंद्र सुथार और कालू मिस्त्री। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं फेफाना नॉर्थ से जय सिंह दामू और धर्मेंद्र सुथार, सूरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन और प्रभजोत मिशन। लीजिए आप सभी की पसंद पर ये नगमा।
1: अच्छा, तो हम चलते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मनोरोध गीत कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। लीजिए आप सुनते हैं फिल्म संगीत।

राजकुमार फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं। सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, गीत हसरत जयपुरी का और संगीत शंकर जयकिशन का।

मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों को आपने सुना. फिल्म थी जौहर महमूद इन गोवा. गीत कमर जलालाबादी का था और संगीत कल्याण जी आनंद जी का. लीजिए विश्वास फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं मनहर और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में. गीतकार गुलशन बावरा और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी.

लीजिए कार्यक्रम में आगे सुनते हैं जहां प्यार मिले, इस फिल्म से ये गाना है। सुमन कल्याणपुर की आवाज़ है, गीत हसरत का और संगीत शंकर जयकिशन का।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म साथी से मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें हैं, गीतकार मजरू और संगीत नौशाद का।

ये गाना आपने सुमन कल्याणपुर की मधुर आवाज़ में सुना। लीजिए, कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं सीमा फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़, गीत शैलेंद्र का और संगीत शंकर जयकिशन का।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर को आपने सुना फिल्म थी सूरज। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं दिल ही तो है। इस फिल्म से गीत मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, गीत साहिर लुधियानवी का और संगीत रोशन का।

ये थी सुमन कल्याणपुर मुकीस के साथ। लीजिए कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं, बदलते रिश्ते। इस फिल्म से किशोर कुमार के साथ हैं सुमन कल्याणपुर। गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से।

लीजिए अब आपको सुनवाते हैं मोहब्बत इसको कहते हैं इस फिल्म से ये गाना, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने, गीत मजरू का है और संगीत खय्याम का।

कार्यक्रम में अब सुनते हैं अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है मुकेश ने। हसरत जयपुरी ने इस गीत के बोल लिखे और धुन तैयार की शंकर जैक्शन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दिल ने फिर याद किया, मुकेश मोहम्मद रफ़ी सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें, गीतकार जी एल रावल और संगीतकार सोनी कौमी।

मोहम्मद रफ़ी का इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 12 बजे हैं। आप प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 12:05 पर कार्यक्रम होगा कुछ बातें कुछ गीत। सुगम संगीत का आप आनंद ले सकेंगे 12:30 पर। खेत खलिहान दीमक से फसल को कैसे बचाएं, ये जानकारी आप सुनेंगे। प्रादेशिक समाचारों का रिले होगा जयपुर अजमेर केंद्र से दिन में 1 बजे।

था घरेलू बचत। दिन में 2 बजे आप सुना करते हैं मिड डे न्यूज़। 2:15 पर हिंदी में समाचार होंगे। 2:30 पर फिल्म संगीत। 3 बजे दिल्ली केंद्र से उर्दू सर्विस के प्रसारण आप सुनेंगे। 4 बजे संदेश टू सोल्जर, ये अनुप्रसारित रहेगा दिल्ली केंद्र से। शाम 5 बजे युववाणी कार्यक्रम पूजा वर्मा के साथ आप सुनेंगे। साहित्य, समाज, बुजुर्गों के सम्मान, नशा मुक्ति, सकारात्मकता तथा आज के इतिहास जैसे विषयों पर चर्चा प्रस्तुत करेंगी। 6:05 पर सराय की, 6:30 पर प्रादेशिक समाचार, 7 बजे राजस्थानी कार्यक्रम चौपाल, सुनील शर्मा के साथ आप सुनेंगे। ताप, खाद से बचाव, नीम का जैविक खेती में महत्व, गर्मी में मुर्गियों की देखभाल तथा मौसम और बचाव भाव की जानकारी उपलब्धता के अनुसार आपको बताई जाएगी। 7:45 पर फिल्म संगीत। 9:15 पर सुगम संगीत आप सुनेंगी। 9:30 पर दिल्ली से अनुप्रसारित कार्यक्रम आप सुनेंगे। रात 10 बजे प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। 10:30 पर प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। 11 बजे हिंदी में समाचार होंगे। 11:05 पर न्यूज़ इन इंग्लिश। 11:10 पर सभा समाप्ति उद्घोषणा। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 12:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

श्रोताओ, ठीक दोपहर के 12:05 हुए हैं और सूरतगढ़ से मैं हूं आपकी होस्ट शोभा, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। श्रोताओ, दोपहर की मीठी धूप में आज हमारा ये सफ़र बेहद लाजवाब होने वाला है। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की उस सदाबहार और गरिमामयी अभिनेत्री की जिसकी खामोशी भी पर्दे पर बात करती थी। जी हाँ, आपका कार्यक्रम आज का कार्यक्रम दिग्गज अदाकारा नूतन की यादों और उनके सुरीले गीतों से। तो आइए यादों के सफ़र को की शुरुआत करते हैं नूतन और सदाबहार देवानंद साहब की फिल्म पेइंग गेस्ट से, इस बेहद चुलबुले गीत से। लीजिए सुनिए।

क्या बात है, इस गीत को सुनकर आज भी पैर थिरकने लगते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत और मैं हूँ शोभा। श्रोताओं, नूतन जी का जन्म 4 जून 1936 को एक फिल्मी परिवार में हुआ था। उनकी माता शोभना समर्थ अपने ज़माने की बहुत बड़ी अभिनेत्री थी। नूतन जी ने महज 14 साल की उम्र में साल 1950 में फिल्म हमारी बेटी से कदम रखा था। नूतन जी की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी सादगी। बिना भारी भरकम मेकअप के सिर्फ अपनी आंखों की गहराई से वो पूरा सीन जिंदा कर देती थी। आइए नूतन जी और राज कपूर साहब की एक ऐसी ही लाजवाब फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। लीजिए सुनिए अनाड़ी फिल्म से ये गीत।

वाह, मुकेश जी और लता जी की आवाज और पर्दे पर नूतन का वो सलोना अंदाज, वाकई लाजवाब। श्रोताओ, नूतन जी बॉलीवुड को ये सिखाया कि एक अभिनेत्री सिर्फ अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने दमदार अभिनय से पूरी फिल्म को अपने दम पर सुपरहिट करा सकती है। तभी तो उन्होंने सीमा, सुजाता, बंदनी और मिलन जैसी फिल्मों में ऐसे यादगार किरदार निभाए जो आज भी मील का पत्थर हैं। क्या आप जानते हैं कि नूतन को रिकॉर्ड 5 बार फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था? सिनेमा में उनके इस ऐतिहासिक योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा था। चलिए यादों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं साल 1963 की फिल्म तेरे घर के सामने से ये दो गाना।

श्रोताओं, नूतन जी ने अपने 4 दशक लंबी करियर में लगभग 80 फिल्मों में काम किया और उम्र के हर पड़ाव पर सिनेमा को एक नई गरिमा दी। साल 1991 में भले ही वो शारीरिक रूप से हमसे दूर चली गई, लेकिन अपनी अदाकारी और सुरीले गीतों के जरिए वो हमेशा हमारे दिलों में धड़कती रहेंगी। आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं एक बेहद भावुक और सुरीला गाना, जिसे लिया है सरस्वती चंद्र फिल्म से।

0: लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं मिलन, जो कि 1967 का ये गाना नूतन के करियर की सबसे यादगार और खूबसूरत गानों में से एक है। लीजिए सुनिए ये गीत।
1: पवन करे शोर,
2: पवन करे शोर,
1: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

इस गाने में नूतन ने एक बेहद साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि की लड़की का किरदार निभाया है, बिना किसी भारी मेकअप या तड़क भड़क वाले कपड़ों के, केवल एक साधारण साड़ी और सादगी के दम पर।

इसी गीत के साथ कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। ये गजल आपको सुनवाते हैं नक्श लियालपुरी की कलम से, भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में।

0: som rahe the Bhupendra Singh ki gayi ghazlein.
1: आप सुन रहे थे भूपेंद्र कार्यक्रम सुगम संगीत के तहत। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ है। 12:50 हुए हैं। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम खेत खलिहान। आज की जानकारी का विषय है दीमक से फसल कैसे बचाएं। जानकारी दे रहे हैं सुनील शर्मा।
2: खेत खलिहान सुनिए सगले किसान भाइयों ने सुनील भाई की ओर शु मोकली मोकली राम राम। किसान भाइयों खेत खलिहान में आज बात करा पा दीमक के बारे में। दीमक जो अपना शत्रु कीट है और अपनी फसल की है बहुत ही नुकसान पा। दीमक से फसल में 20-50% तक नुकसान हुए, खासकर बाँध क्षेत्र में जठे पानी की कमी हुए या फिर बेकड़ रेत हुए सुखी जगह में जिकी दीमक है ज़्यादा पनपे आ पौधा की जड़ा ने खा गई पाने खत्म कर दिए जिसों की पौधों सूख जे और मर जे तो अपनी फसल ने बहुत ही नुकसान हुए। तो आप कई प्रभावी उपाय है जिया वे अपना आगे इन्हें कम कर सका। पहला बात करें भी आके करे तो आके करे जी जड़ है बिना काट के खत्म कर दिए तो पौधे ने पोषक कौन मिले और पौधे सूखने लग जाए और अपनी जो कि फसल है भी मैं 20-50% तक नुकसान कर दिए तो अपनी पैदावार में कमी आ जाए। प्रभावित तरीकों की बात करा तो जहाँ कृषि पद्धतियां हैं जैविक तरीका है और रासायनिक तरीका है वो प्रयोग करके आप दीमक ने खत्म कर सका। कृषि और घरेलू उपाय की बात करा तो पहली बात तो अपन की किसान भाइयों अपन जो कि गोबर की खाद इस्तेमाल करानी इन कच्ची गोबर की खाद ने अपने खेत में नहीं डालना चाहिए। दीमक ने किया सूखी लकड़ी कच्चो गोबर बहुत ही पसंद है एर खेत में हमेशा अपन के पूरी तरिया जो कि सड़ेड़ी गोबर की खाद है या केंचवा खाद है मींगो प्रयोग करना चाहिए। और एक बात वो अपन और ध्यान रखना चाहिए कि जो गर्मी को टाइम हुआ मीन टाइम में अपन ने खेत की ऊंडी पाड़ करके छोड़ देना चाहिए। इशू की है किसान भाइयों जका जमीन के अंदर दबेड़ा दिमग का अंडा है सुरंग है भी बाहर निकल जाए और तेज तावड़ा में कि अभी खत्म हो जाए या जका दूसरा पक्षी है बन खा के नष्ट कर दिए एक तरीको वो है। नीम की जकी खड़ है आ भी किसान भाइयों बहुत ही काम की हुए खेत में जब आप बुआई करा मीन टाइम की है कुंटलों सवा कुंटल जबकि नीम की खड़ है एक एकड़ के हिसाब से ले गए माटी मिला देनी चाहिए तो ईशू भी जबकि दीमक की है दूर भाग है और सागों की बहुत ही बेहतरीन प्राकृतिक तरीको है। और खेत की अपन साफ सफाई भी रखनी चाहिए। फसल कटाई के बाद की है खेत में जो कचरों है ठूंठ है सूखी घास है लकड़ी है इन्हें खेत से हटा देना चाहिए क्योंकि ये जकी चीज़ें हैं दीमक को घर हुआ तो अठा आपकी दिमक कलोनी बना ले और आपने खेत में फैल जाए तो उस खेत की साफ सफाई को अपन ध्यान रखना चाहिए। और दूसरो उपाय किसान भाइयों जैविक तरीको इमें कि वह एक मित्र फंगस आवे ब्यूबेरिया वासियाना तो आज की फंगस है किसानों के मित्र है 1-2 किलोग्राम आ फंगस ले गए और 100 किलोग्राम अच्छी जकी सड़ेली गोबर की खाद मिला के खेत में जो आप डाल दें लास्ट जुताई का टाइम तो विशु भी बहुत फायदा हुआ है। और दूसरी जकी फंगस आवे मेटारिजियम एनिसोपली इनको उपयोग भी दीमक ने प्राकृतिक रूप से खत्म कर दिया। तीसरो जो तरीको है किसान भाई वो है रासायनिक तरीको तो रासायनिक तरीके का इस्तेमाल

इस्तेमाल जो पहलापन की है, एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि इनको हमेशा ही सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। और सागे की है जहाँ दस्ताना पहन के प्रयोग करना चाहिए। तो रासायनिक तरीके में पहलो जहाँ उपाय है बीज उपचार। तो जो बीज होने वाला सागे तो की है रोग है भी खत्म हो जाए और सागे की है दिमक खून लागे। तो इन सारू अपन की है इमिडाक्लो पीरियड जो की 70 WS ताकत की दवाई आवे या थायोमेक्टोक्सोम आवे 30% FS ताकत में आ दवाई हम दोनों एक दवाई 5-7 ml ले गए और 1 किलो बीज के हिसाब से ले लेनी चाहिए और बीज में चित्रियाँ मिला देनी चाहिए और सुखा के फिर भी जांच करनी चाहिए। जो अपने खड़ी फसल में दिमक को प्रयोग है तो पानी देने टाइम अपन के फिप्रोनिल 5% ताकत की SC प्रारूप की दवाई आवे या क्लोरोपायरीफास है 20% ताकत की इसी प्रारूप में हम कोई एक दवाई 1.5 लीटर मात्रा में ले गए 1 एकड़ के हिसाब से और फिर किया टोपो टोपो करके किया पानी में टपकानी चाहिए जब आप पानी देवा बीटे या फिर आप जहाँ रेत है भी मिला के खेत में अपन बिखेर देनी चाहिए और बाद में तुरंत ही किया पानी लगा देना चाहिए। तो इन सब प्रबंध कर सकें और जिया कोई विशेष गन्ने की फसल है कणक की फसल है तो बम में विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो अपने मान लो ज़्यादा हो गई है समस्या तो कई और भी तरीका है बांगो उपयोग करके अपा इन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर सका। जिया खेत के अंदर की है मटका को जाल बिछा देना चाहिए या कोई मटको लेगी बिन के आप मुँह ते बिना माटी का दाब देना चाहिए और साइड में किया गिलो कर देना चाहिए और इन के अंदर जहाँ थोड़ा कच्चो गोबर है सूखी घास है पुरानी जूट की बोरी है आंशु भर गए और चारों मेर पानी छिड़क देना चाहिए। तो ये जकी चीज़ें किसान भाइयों दिमक ने आकर्षित करे तो 4-5 दिन बाद में किया दिमक इन अंदर आपको घर बना लिए तो बाद में ये मटकन आप बाहर निकाल गए या तो केरी सुन डाल गए जहाँ मिट्टियों तेल बोले बिना वो डाल के इन्हें नष्ट कर देना चाहिए या दूर फेंक देनी चाहिए। हींग और नमक को पानी भी किसान भाइयों बहुत ही उपयोगी हुए पर वो थोड़ो किए महंगो पड़े। जो पानी देनते टाइम अपन के जकी मुख्य खाड़ है बिंग अंदर आप हींगी पोटली बांध के घेर दिया तो हींगी जकी गंध हुए बा बहुत ही तेज हुए तो बीसों की मक्की है बाग जी है। अरंड की जकी खड़ है आ भी बहुत ही फायदेमंद तरीको है। नीम की खड़ की त्रियाँ भी बहुत ही दिमक ने दूर भगावे और कारगर हुए बिजांत के टेम या बुआई शू पहला खेत का माँ जी इन्हें मिला दिया तो दिमक को प्रकोप कम हो जाए। आधुनिक जैविक और पर्यावरण अनुकूल उपायों की बात करें तो EPN नाम का सूक्ष्म जीव आवे जका कि है दिमक के शरीर में घुस गए बिना अंदरों ख़त्म कर दिए। बाजार में वो पाउडर मिले भी है तो इन पाउडर ने ले गए आप पानी में गोल बना गए और जे बूंटा गए चारों मेर घेर दिया जड़ा करने तो दिमक को पूरी तरह से सफाई हो जाए और फसल ने भी कोई नुकसान को नहीं होए। लकड़ी को जो को सिरको है किसान भाइयों वो भी प्रयोग कर सकें वो भी एक प्राकृतिक कीटनाशक है। तो इन आप की है 2-3 ml 1 लीटर पानी मिला के पौधा की जड़ा में घेरा तो इन भी दिमक दूर भाग जाए। और फिर आप की है फसल चक्र को प्रबंधन भी अपने खेत में रखना चाहिए लगातार जो आप एक एक फसल बीजेंगा जियाँ जे कणक बीजा या फिर गन्नों ही लगातार बीजा तो इशू की है अपने खेत में दिमक को प्रकोप बढ़ जाए। तो अपने बीच बीच में की है दाल वाली फसल जियाँ है चीना है मूंग है उड़द है आंगो भी इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि दिमक आने पसंद कौन करे और अपने खेत में इनको प्रकोप कम हो जाए। तम्बाखू को पानी भी आप इस्तेमाल कर सकें तम्बाखू के पत्ता में की है तेज़ गंध हो है तो आना कि रात ने उबाल गए छोड़ दिया और दिन गए कि छाण गए प्रभावित जका फसल है या बूंटा है वहाँ पर जो आप घेरा तो इनमें जो निकोटीन है इनके कारण की है दिमक मर जाए तो इन त्रियाँ भी आप दिमक को रोकथाम कर सकें। दूसरी बात और है किसान भाइयों का अपने खेत के अंदर की है नमी है जो कि हमेशा बना के रखनी चाहिए क्योंकि दिमक जो की है वह सूखी जगह ने पसंद करे और सूखी माटी है बटा तेजियों फैले जो अपने खेत में हल्की नमी बनी रहे हल्की सिंचाई बनी रहे तो दिमक को प्रकोप आप ही आप कम हो जाए। तो खड़ी फसल में तुरंत राहत देने खातर आप जो मटकाल उपाय है

0: ग्लूकोकर्स का या सिंचाई के साथ फिप्रोनेलिया क्लोरोफायरीफास है आमी देश का। तो ये बात किसान भाइयों ने ध्यान में रखनी चाहिए। इतनी जी किसान भाई दिमाग को रोकथाम करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकेगा। तो अब अपने कार्यक्रम को समय जो पूरा हो गया है तो तार सुनील भाई ने देव आ गया। राम राम सा राम राम।
1: दीमक से फसल कैसे बचाएं? अभी किसान भाई सुन रहे थे ये जानकारी सुनील शर्मा से। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर। दिन का 1 बजने वाला है। थोड़ी ही देर में जयपुर अजमेर केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: आकाशवाणी का जयपुर अजमेर चैनल है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 5 दिन चलने वाली इस चैंपियनशिप का उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करना है। प्रतियोगिता में 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। योगासन भारत की यह पहल वैश्विक स्तर पर योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों सहित 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। वर्ष 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया जिससे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली शुरू हुई। सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए वर्ष 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम की शुरुआत की गई। जैम पर अब तक कुल कारोबार 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज 2 योजना में चयनित गांवों में अंडरग्राउंड बंकर बनाए जाएंगे। युद्ध की स्थिति में खतरे का सायरन बजते ही ग्रामीण इन बंकरों में शरण ले सकेंगे। इस योजना में श्रीगंगानगर जिले के 68 सीमावर्ती गांवों का चयन किया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि इनमें सबसे अधिक 20 गांव घड़साना उपखंड क्षेत्र के हैं। इन गांवों में कम्युनिटी हॉल के नीचे इन बंकरों का निर्माण किया जाएगा। श्री यादव ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज योजना का उद्देश्य चयनित गांवों को पक्की सड़कों और मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना है। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जनाभियान के तहत जल संरक्षण को लेकर कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज विभिन्न जिलों में निबंध, नारा लेखन, चित्रकला, खेलकूद प्रतियोगिताएं और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से वर्षा जल संग्रहण और भूजल पुनर्भरण का संदेश दिया जा रहा है। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सरकारी भवनों में बने रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं की साफ सफाई की जा रही है। विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जल चौपाल के कार्यक्रम भी रखे गए हैं। कल इस अभियान का समापन होगा। इस दौरान जिला स्तरीय समारोह में जल संरक्षण और जन भागीदारी के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले भामाशाहों, संस्थाओं, पंचायतों, नगर निकायों और जल योद्धाओं को जल

0: गौरव सम्मान दिया जाएगा। शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन इस वर्ष 29 नवंबर को किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और अन्य जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। गौरतलब है कि इसमें राज्य सेवा की 192 और अधीनस्थ सेवा के 415 पदों पर भर्ती की जानी है। और अब मौसम। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज कई इलाकों में सुबह बरसात हुई। भीलवाड़ा में ग्रामीण इलाकों में तेज बरसात का दौर चला। वहीं सवाईमाधोपुर में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज अधिकांश जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन स्थानों पर अंधड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर। 1:05 हुए हैं। अब बहनें सुने अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज महिला जगत पेश करेंगी मंजू शर्मा।

0: कार्यक्रम महिला जगत सुनने वाली सभी बहनों श्रोताओं को मंजू शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, गर्मी का मौसम, लेकिन पिछले दिनों हुई बारिश से लू का प्रभाव कुछ कम हुआ है, लेकिन मौसम का असर तो होता ही है ना। ऐसे में अगर हम काम की अधिकता या सफ़र आदि में निकलते हैं और बिना कुछ खाए पिए रहते हैं, तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भूखे रहने से हमारे शरीर की जो जठराग्नि है वो मंद पड़ जाती है, जिससे शरीर में कई प्रकार की समस्याएं पेश आती हैं। हमारा कहने का अभिप्राय है कि भोजन हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार कुछ लोगों के लिए हम कह देते हैं कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। लेकिन बहनों, ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और विचार उत्तेजक भी है। भोजन हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, परंतु क्या जीवन का उद्देश्य केवल स्वाद और तृप्ति तक सीमित है, या फिर भोजन केवल वह साधन है जिससे हम स्वस्थ, सक्रिय और सार्थक जीवन जी सकें? इस विषय पर विचार करते हुए हमें शरीर, मन, समाज और संस्कृति चारों स्तर पर भोजन की भूमिका को समझना होगा।
1: तू सपना से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तुझे हर किसी की आवाज सपना की ही आवाज लगती है।
2: सपना, सपना कौन थी?
3: मेरी अपनी, मेरी।
4: अरे हमें तो अपनों ने लूटा, पैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था।

वैनु, गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि हम खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। भोजन के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। भोजन से शरीर को ऊर्जा, पोषण और रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो व्यवहार में देखते हैं कि भोजन केवल पोषण तक सीमित नहीं रहता। स्वाद, आदत और लालसा भोजन को जीवन का केंद्र बना देती हैं। जंक फूड, अत्यधिक मीठा, तला भुना और मसालेदार, ये सब स्वाद को तो संतुष्टि देते हैं पर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार हम भूख ना होने पर भी खाते हैं, केवल स्वाद, तनाव, बोरियत या सामाजिक दबाव के कारण भी। ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि हम खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं। लेकिन इस विषय का उत्तर किसी एक पक्ष में नहीं है। भोजन का आनंद लेना गलत नहीं है, लेकिन भोजन ही जीवन का उद्देश्य बन जाए ये भी उचित नहीं है। तो बहनों, भूख लगे तभी खाएं, थाली में संतुलित आहार रखें, स्वाद के साथ पोषण को भी प्राथमिकता दें। भोजन को आदत या तनाव का समाधान न बनाएं। इसलिए ये कहना अधिक उचित होगा कि हम खाने के लिए नहीं जीते, बल्कि जीने के लिए खाते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों, गर्मी का मौसम अपने साथ तेज धूप, उमस, थकान, डिहाइड्रेशन और चिड़चिड़ेपन जैसी कई चुनौतियां लेकर आता है। खासतौर पर महिलाओं के लिए ये मौसम और भी संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि घर परिवार, कामकाज, बच्चों की देखभाल और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच वे अक्सर अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देती हैं। ऐसे में योग और फिटनेस न केवल शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, बल्कि मानसिक शांति और हार्मोनल संतुलन भी बनाए रखते हैं। गर्मी के मौसम में सही तरीके से किया गया योग महिलाओं के लिए वरदान साबित हो सकता है। गर्मियों में महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे अधिक पसीना और डिहाइड्रेशन, थकान और ऊर्जा की कमी, हार्मोनल असंतुलन, त्वचा संबंधी समस्याएं, वजन बढ़ना या सुस्ती आना। इन सभी समस्याओं की जड़ कहीं ना कहीं बहनों असंतुलन

जीवन शैली और शारीरिक गतिविधि की कमी होती है। योग और फिटनेस इन समस्याओं से निपटने का प्राकृतिक और सुरक्षित उपाय है। योग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये शरीर पर अधिक दबाव डाले बिना अंदरूनी संतुलन बनाता है, और योग से शरीर को ठंडक और शांति मिलती है, पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है, हार्मोनल संतुलन मिलता है, और बहनों तनाव, चिंता और अनिद्रा कम होते हैं, वजन नियंत्रित होता है और त्वचा में प्राकृतिक चमक आती है। इसलिए गर्मी में महिलाओं के लिए योग और फिटनेस कोई विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है।

अनुकीत से पहले हम बात कर रहे थे गर्मी में हमारे लिए योगासन और फिटनेस की कितनी आवश्यकता है। गर्मियों में विशेष रूप से शीतल प्राणायाम महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। शीतली प्राणायाम शरीर की गर्मी कम करता है। शीतकारी प्राणायाम जलन, प्यास और बेचैनी में राहत देता है। अनुलोम विलोम हार्मोनल संतुलन और मानसिक शांति के लिए उपयोगी है। इसी तरह भ्रामरी, तनाव, गुस्सा और अनिद्रा को दूर करता है। और फिटनेस के लिए महिलाओं को कुछ हल्के विकल्प भी अपनाने चाहिए, जैसे सुबह शाम की सैर, हल्की स्ट्रेचिंग, घर के कामों को एक्सरसाइज की तरह करना। ये प्राणायाम आदि मूड स्विंग्स, थकान और चिड़चिड़ापन कम करते हैं। लेकिन बहनों, गर्मी में योग और फिटनेस करते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, जैसे खाली पेट या हल्का भोजन करके योग करें, पर्याप्त पानी पिएं, ढीले और सूती वस्त्र पहनें, तेज धूप में व्यायाम न करें, शरीर की क्षमता के अनुसार ही अभ्यास करें, और स्वास्थ्य के लिए कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों, आज के डिजिटल युग में इंटरनेट ज्ञान का विशाल भंडार बन चुका है। सेहत से जुड़ी जानकारी पाने के लिए लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले या बाद में इंटरनेट का सहारा लेते हैं। यह सुविधा जितनी उपयोगी है उतनी सावधानी भी मांगती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है और बिना जाँच के दवाइयाँ लेना कभी कभी कष्टकारक भी हो सकता है। खैर, फिर भी हम इसके लाभ और हानि दोनों पक्षों पर बात करेंगे। मैंने इंटरनेट से सेहत की जानकारी लेने का सबसे पहला लाभ तो ये होता है कि घर बैठे किसी भी समय बीमारियों, लक्षणों, उपचार और दवाओं के बारे में जानकारी मिल जाती है। सही जानकारी मिलने से व्यक्ति अपनी सेहत के प्रति जागरूक हो जाता है और समय से जाँच और उपचार की ओर बढ़ता है। सामान्य समस्याओं पर प्रारंभिक सुझाव मिल जाते हैं, जिससे घबराहट कम होती है। पोषण, योग, मानसिक स्वास्थ्य, गर्भावस्था, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल जैसे विषयों पर उपयोगी सामग्री मिल जाती है। पहले से जानकारी होने से मरीज अपने लक्षण बेहतर तरीके से डॉक्टर को बता पाता है और सही इलाज हो पाता है।

बहनों, गीत से पहले हम चर्चा कर रहे थे इंटरनेट से सेहत की जानकारी लेने के फायदों की, और अब बात करते हैं इसकी कुछ हानियों की। यानी सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो बहनों, हर वेबसाइट या वीडियो विश्वसनीय नहीं हो सकता। गलत या अधूरी जानकारी कई बार नुकसान पहुंचा सकती है। लक्षण पढ़कर खुद बीमारी मान लेना चिंता बढ़ाता है और गलत उपचार की ओर ले जा सकता है। बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ या घरेलू नुस्खों का प्रयोग हानिकारक हो सकता है। तो बहनों, इंटरनेट की जानकारी सामान्य होती है। हर व्यक्ति की उम्र, रोग इतिहास और एलर्जी अलग-अलग होती है। इसलिए केवल विश्वसनीय स्रोतों जैसे सरकारी या मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से जानकारी लें। दवाइयाँ, डोज या इलाज खुद तय न करें। गंभीर, लंबे समय से चले आ रहे या बिगड़ते लक्षणों में तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। सोशल मीडिया की अफवाहों और चमत्कारी दावों से बचें। तो मैंने इंटरनेट से सेहत की जानकारी लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन इलाज किसी प्रशिक्षित डॉक्टर से ही करवाएं। सावधानी, समझदारी और संतुलन सबसे बेहतर मार्ग है।

बहनों, घर का दिल अगर कोई जगह है तो वह है हमारी रसोई यानी किचन। यहीं से परिवार के स्वास्थ्य, बजट और आदतों की दिशा तय होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि थोड़ी सी बचत से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन यही छोटी छोटी बचत जब रोज़मर्रा की आदत बन जाती है तो वो साल के अंत में बड़े फ़ायदे सामने आते हैं। किचन में की गई समझदारी न सिर्फ पैसे बचाती है बल्कि स्वास्थ्य, समय और पर्यावरण के लिए भी लाभकारी होती है। किचन की बचत की शुरुआत बाजार जाने से पहले ही हो जाती है। लिस्ट बनाकर खरीदारी करने से फालतू चीज़ें नहीं आती। महीने भर का मेन्यू तैयार कर लिया जाए तो ज़रूरत के अनुसार ही सामान लिया जाता है।

देखकर नहीं बल्कि वास्तविक आवश्यकता देखकर खरीदना समझदारी है। इस आदत से बजट कंट्रोल में रहता है और अनावश्यक खर्च रुकता है। अक्सर देखा जाता है कि अनाज, दालें या मसाले खराब हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सही तरीके से नहीं रखा गया होता। आटा, चावल, दालें एयरटाइट डिब्बों में रखें, मसालों को धूप और नमी से बचा कर रखें, पुराना सामान आगे कर दें और पीछे रख दें नया जो अभी अभी खरीदा है, इससे पहले वाला सामान इस्तेमाल हो जाएगा। और मैंने किचन में गैस और बिजली का इस्तेमाल होता है, सब्जी काट कर और सभी मसाले पानी वगैरह तैयार करके गैस जलाएं। प्रेशर कुकर का अधिक उपयोग करें, इससे समय और गैस दोनों बचती हैं। ढक्कन लगाकर खाना पकाने से गैस कम खर्च होती है। ये छोटी छोटी आदतें साल भर में बड़ा फर्क डालती हैं। रसोई में पानी की बचत भी बहुत ज़रूरी है। बर्तन धोते समय नल खुला ना रखें। सब्जी, चावल, दाल आदि को धोकर इनके पानी का प्रयोग पौधों में कर सकते हैं। इसी प्रकार बचे हुए खाने को की भी बढ़िया तरीके से संभाल हो सकती है, जैसे बचे हुए फीके या नमकीन चावलों से पुलाव, कटलेट या फ्राइड राइस बनाए जा सकते हैं। बासी रोटी से उपमा, चूरमा या बघारी रोटी बना सकते हैं। बची दाल सब्जियों को पराठे या सैंडविच बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। और घर में ही स्वादिष्ट खाना बनाएं ताकि बाहर के खाने पर होने वाला खर्च बचाया जा सके और स्वास्थ्य भी सही रहे। बच्चों को भी शुरू से ही यही आदत डाली जाए कि खाना बर्बाद ना करें, जितनी ज़रूरत हो थाली में उतना ही लें। पानी और गैस का भी प्रयोग सीमित मात्रा में करें। बड़ी बचत की शुरुआत बिनो छोटी बचत से ही होती है।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू।

0: नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकार

0: कारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
2: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है, शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी छुट्टी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रूपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये

0: चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
1: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
2: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 23,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

नमस्कार श्रोताओ, दोपहर के ठीक 2:30 बजे हैं और वक्त हो गया है एक ऐसी आवाज़ से जुड़ने का जिसने 4 दशकों तक हमारे दिलों पर राज किया। जी हाँ, भाषा कोई भी हो, जज्बात वही रहते हैं। आज का ये कार्यक्रम हम नाम कर रहे हैं संगीत के महानायक पद्म विभूषण SP बाला सुब्रमण्यम जी के। तो दिल थाम कर बैठिए और सुनिए SP जी के सबसे बेहतरीन और सुनहरे गाने, सिर्फ आकाशवाणी सूरतगढ़ पर।

देव कोहली के गीत को आप सुन रहे हैं, संगीत राम लक्ष्मण का। आवाजें लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की फिल्म का नाम हम आपके हैं कौन। कार्यक्रम का अगला गीत सुनी साजन फिल्म से, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज, गीत समीर का, संगीत नदीम श्रवण का।

एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ थी। साजन फिल्म का ये गाना गीतकार समीर थे और संगीत नदीम श्रवण का था। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं पत्थर के फूल। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और एसपी सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। देव कोहली के गीत को संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने।

मैंने प्यार किया, आइए इस फिल्म में सुनते हैं लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ों में, गीत असद भोपाली का और संगीत राम लक्ष्मण का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं और अब समय है उर्दू सर्विस का।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1171 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। 3:05 हुए हैं, खबरें नशर होंगी।
1: रजिया मुझसे खबर सुनिए। नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्स के दरमियान बातचीत में तवानाई की यकीनी फराहमी, तजारत

इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। सामईन, आज के मेरी पसंद प्रोग्राम के नगमे हमने लिए हैं उन फिल्मों से जिनमें नूतन ने अदाकारी की है, क्योंकि आज उनका यौम पैदाइश है। काफ़ी तफसीलात आप सुन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद बता दूँ, 4 जून 1936 को मुंबई में पैदा हुई। एक तरह से वालिद और वालदा पहले से फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद थी, और महज 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, और वो फिल्म थी हमारी बेटी, जो उनकी खुद मदर ने जिसे डायरेक्ट किया था। उसके बाद नगीना, हम लोग, जो 1951 में सामने आई, फिर सीमा, और इस तरह से धीरे धीरे धीरे फिर रास्ते खुलते चले गए, और इस दुबली पतली और खूबसूरत सी हीरोइन ने लोगों के दिलों पर अपनी अदाकारी से अनमिट नकूश छोड़े हैं। आज के मेरी पसंद प्रोग्राम के नगमे हमने उन्हीं की फिल्मों से लिए हैं।

नहीं, फिर सीमा और इस तरह से धीरे धीरे धीरे फिर रास्ते खुलते चले गए और इस दुबली पतली और खूबसूरत सी हीरोइन ने लोगों के दिलों पर अपनी अदाकारी से अनमिट नक़ूश छोड़े हैं। आज के मेरी पसंद प्रोग्राम के नगमे हमने उन्हीं की फिल्मों से लिए हैं।

0: ये नगमता फिल्म थी तेरे घर के सामने, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, नगमा निगार थे सर जयपुरी और मौसीकार एस डी बर्मन। सामिन, इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद, और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं नूतन की अदाकारी से सजी फिल्मों के नगमे। इससे पहले कि हम अगला नगमा आपकी खिदमत में पेश करें, एक ज़रूरी इत्तला आपको दें, कल यानी 5 जून को दिन में 11:30 पर आलमी यौम माहौलियात यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के मौके पर हम आपको सुनवाएंगे खसूसी प्रोग्राम। सुनना ना भूलिएगा, वक्त 11:30, 5 जून यानी फ्राइडे। इस प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय हमें ज़रूर लिखकर भेजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है उर्दू सर्विस ESD@gmail.com। और अब प्रोग्राम की अगली पेशकश फिल्म कर्मा का ये नगमा आप तमाम सामईन की नज़र है।
1: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार मुझसे।

0: क्या करते हो प्यार? अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, डू यू लव मी?
1: तो क्या कहा आपने?
0: अरे बरसों से तो कहता आया, आई लव यू, आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं, आई लव यू, सुबह सवेरे।

नूतन की अदाकारी से जी फिल्मों में एक फिल्म और थी खानदान, वो फिल्म भी उनकी लाजवाब अदाकारी की मिसाल थी। उसी का नगमा आप तमाम सामईन के लिए।

सामने सरगमे के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से पेश खिदमत प्रोग्राम अंदाज़े नज़र।

0: कि ये शायरी हमारी चलती रहेगी, इसका मुस्तकबिल भी है और इसका फिलहाल मुझे तो नहीं लगता है कि इसको कोई अंदेशा है किसी तरह का।
1: जी, उम्दा बातें थी और बहुत से नुक्ते ऐसे थे जिन पर लाजमी तौर पर जहन जाता है, जिनकी तरफ आपने उनकी तरफ इशारा भी किया। शायरी तो रहेगी और जब दुनिया की किसी भी जबान की शायरी रहेगी तो उर्दू शायरी भी रहेगी, ये एक कुल्लिया है, इसे मान लेने में कोई नुकसान
0: लेकिन
1: नहीं
0: नमन
1: है।
0: सर, इसमें एक बात मैं अर्ज करूं, पूरी दुनिया में शायरी इस वक्त किनारे लगा दी गई है। ये
1: जी
0: नसर का जमाना है और पिछले 50 बरस से तकरीबन ये नसर ही का जमाना चल रहा है। आप देखिए कि शायरी को 100 बरस हो गए, तकरीबन बड़े शायर नहीं पैदा हुए। लास्ट बड़ा शायर जो है वो मतलब ऑर्डन वगैरह आए, उसके बाद कोई बड़ा शायर नहीं पैदा
1: नहीं,
0: हुआ।
1: अगर
0: तो
1: हम
0: जी
1: पाब्लो नरोदा, मैं बहुत
0: हाँ, 50 साल
1: ताजा
0: से
1: हूँ
0: ज्यादा
1: उसके
0: हो गए
1: ऑक्टोवियो पास
0: नरोदा। नरोदा को
1: और
0: 50 साल से ज्यादा हो गए।
1: लेकिन ये अब तक ट्रेंड में है,
0: नहीं, मैं
1: अगर
0: तो
1: हम
0: कह
1: कह
0: रहा हूं,
1: सकते हैं
0: जी
1: शायरी रहेगी।
0: शायरी मैं तो कह
1: मेरा
0: रहा हूं कि शायरी
1: एज एन
0: रहेगी,
1: इंस्टीट्यूशन उसको एस्टैब्लिश
0: इंस्टीट्यूशन के तौर पे
1: करना
0: रहेगी।
1: मकसद
0: जी
1: नहीं मेरा,
0: जी
1: लेकिन अगर शायरी का जिक्र अलग अलग जबानों के हवाले से हो रहा है, अगर हम तर्जमे भी पढ़ रहे हैं तो भी शायरी है, वो किसी भी जबान में हो, किसी भी शक्ल में हो, तो यकीनन उर्दू में भी रहेगी। लेकिन जो मसला ये आता है कि इसके इससे कितनी उम्मीदें और कितने अंदेशे वाबस्ता हैं, तो हमारा जो कंसर्न है और आज का हमारी गुफ्तगू का मौजू है वो भी यही है कि ये जो नजर आ रहा है, क्या ये देरपा है या ये वाकई कोई दरिया है या कोई सराब है, तो ये हमें देखना होगा कि इसकी जो मकबूलियत, जो आप कह रहे हैं कि 5 स्टार होटल से लेकर के IIT और मुशायरा गाहों तक में मौजूद है, तो ये इसे हम एक इल्यूजन की तरह देख सकते हैं या हमें इसी को सच मान लेना चाहिए? ये अबू बकर अब्बाद साहब इस पर रोशनी
0: जी
1: डाल
0: जान जी
1: सकते हैं।
0: अब्बा, मुझे लगता है कि देखिए, मुस्तकबिल तो इसका रहेगा, ताबनाक रहेगा, और अंदेशे मेरे ख्याल से जाहिर करने में हम लोग कुछ शायद ज्यादती कर रहे हैं। शायरी बिलूम चार मौजूदात पे हावी होती है, इश्क है, तसव्वुफ है, सियासत है और एक जज्बात एहसास का बयान है। और ये तीनों चारों चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के साथ हमेशा से रही और हमेशा रहेंगी। इश्क से उसको छुटकारा नहीं है, जज्बात बहरहाल वो बयान करेगा, एहसास का इजहार करेगा शायर, या फिर सियासत से मुतालिक जो बातें हैं वो खुले या ढके अंदाज में वो कहेगा, उसके सारे के लिए उसको शायरी की ज़रूरत है, तो शायरी तो कायम रहेगी। दूसरे ये है कि शायरी में सिर्फ आप बीती नहीं होती है या कोई खबर नहीं होती है, जग बीती भी होती है। शायर की खूबी यही है कि वो जग बीती को आप बीती बना करके पेश कर देता है और आप बीती को जग बीती बना करके पेश करता है। हाँ, ये खुर्शीद साहब का कहना सही है कि ये नसर का जमाना है और पाबंद शायरी शायद उतनी मकबूल न हो इस दौर में या आने वाले दौर में, तो उसके लिए आज़ाद नज्म की हैसियत मेरे ख्याल से ज़्यादा मकबूल होगी मुस्तकबिल में। नसरी शायरी की शायद ज़्यादा ज़रूरत महसूस करे पाबंद के मुकाबले में, लेकिन ये कि शायरी का मुस्तकबिल बहरहाल ताबनाक है और शायरी हो रही है। बल्कि हम तो इधर ये देख रहे हैं कि शायरी की बाज़ असनाफ ऐसी हैं जो मतरूक हो चुकी थी, उसको रिवाइव कर रहे हैं लोग। मसनवी हमारे यहाँ कई शायर लिख रहे हैं, नौजवान शायर लिख रहे हैं, रसूल अख्तर लिख रहे हैं, रसूल अख्तर परवाना, रुबाइयां भी कही जा रही हैं। रुबाइयाँ लिख रहे हैं, आसिम शाहनवाज शिबली कई
1: बहुत
0: मजमू भी
1: बहुत
0: ले आ रहे हैं। इसके
1: बहुत
0: अलावा जफर कमाली का बहुत ही काम है रुबाई पे। इसके अलावा बहुत से लोग नावक हमजापुरी लिखते रहे हैं। फिर यह है कि यह जो उमराव जान अदा नॉवेल था उसको पूरी मसनवी की शक्ल में रशीद अशरफ खान ने तब्दील कर दिया है, तो ये भी है, वैसे भी मसनवी लिखी जा रही है काफी, तो शायरी तो मुझे लगता है कि रहेगा। अच्छा, गजल की मकबूलियत का जहां तक अंदाजा है, तो चूंकि दो मिसरे में एक पूरी बात कह दी जाती है, पूरी कहानी पूरी दास्तान बयान हो जाती है, और फिर उसकी खूबी ये है उसमें इशारे, किनाये, इलामत, तशबीह, इस्तियारे बहुत सारे होते हैं, तो बात कहीं से कहीं, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना वाली बात है, तो वो तो कायम रहेगा। यही वजह है कि पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, खुर्शी साहब के कहने के मुताबिक मजहबी घाट हो, मॉडर्न जमाने में देखिए तो होटल
1: तालीमी
0: हो,
1: इदारे हों।
0: तालीमी इदार हो, ये सब है, तो ये है। और सबसे अच्छा इजहार जो है जज्बात का या एहसास साथ का, वो गजल के फॉर्म में है, तो ये तो रहेगा। और जो हम देख रहे हैं नए लिखने वाले लोग हैं, बहुत से नए लिखने वाले हैं, जैसे सफ़ीर सिद्दीकी है, खालिद इबादी है, जमाल ओवैसी है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे ये उम्मीद होती है कि ठीक है, हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छी शायरी की है, बहुत अच्छे फन का मुजाहरा किया है, लेकिन नए लोगों में भी टैलेंट की कमी नहीं है। वो मौजू को नए तरीके से देख रहे हैं। अतर नफीस का बड़ा अच्छा शेर है, इश्क को देख रहे हैं, आशिक के को देख रहे हैं, माशूक को देख रहे हैं, नए तरीके से देख रहे हैं, रिवायती अंदाज से बिल्कुल हट करके देख रहे हैं। अतर नफीस का शेर मुझे याद आ रहा, अतर तुमने इश्क किया कुछ तुम भी कहो क्या हाल हुआ, कोई नया एहसास मिला या सब जैसा अहवाल हुआ, बिल्कुल अलग सा है।
1: जी जी
0: या फिर गुलाम मोहम्मद कासिर का एक शेर है।

0: क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो
1: बढ़िया
0: और कोई काम भी नहीं आता। या फिर खालिद आबादी बिल्कुल नौजवान शायर हैं और उनका शेर है, तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती, खुदा मसरूफ रहता है, हमारे शहर में आखिर कयामत कौन करता है। तो इस तरह के बहुत से अशआर हैं जिससे अंदाजा होता है कि नहीं, नई नस्ल नए तरीके से सोच रही है, जदीद सोच के साथ आगे बढ़ रही है। हाँ यह तो है कि वो हयात के अतबार से बहुत ज्यादा तजर्बे नहीं कर रही है, जो बिल्कुल नई नस्ल है, जैसे फिजा इब्ने फैजी वगैरह थे या अमीर कजलबाश वगैरह थे, लंबी बहर छोटी बहर मुश्किल रदीफे। लेकिन यह है कि मौजूआती तनव्वो, ख्याल को नए तरीके से पेश करने का तरीका और नई सोच, नए अल्फाज और नई दुनिया शेर में पेश कर रहे हैं, तो मैं तो बहुत पुरउम्मीद हूँ।
2: अहमद साहब ने जो कहा कि नए अल्फाज नई दुनिया, उम्मीद तो है, लेकिन जो खुशी साहब का सवाल था कि ये दौर नसर का दौर है, जाहिर है हम खुद भी सोचते हैं कि हमारी तरबियत गजल से हुई, नज्म से हुई, लेकिन महीनों गुजर जाते हैं, कोई शेरी मजमुआ देखे या कोई शेर पढ़े और पूरा फोकस अफसाने पे रहता है या नॉवेल पे रहता है, बल्कि ये दौर अफसाने के बजाय नॉवेल का दौर है, छोटे लिखे जा रहे हैं लेकिन नॉवेल तवातुर के साथ आ रहे हैं। मगर उसके साथ ही हम देखते हैं कि नई बहुत अच्छे मौजूद जज्बात भी हैं, बयान भी है, और वो बयान जिसे हम जब हम ये कहते हैं कि समाजी सरोकार, शायद गजल में उस तरह बयान नहीं होते कि गजल तो इशारे की जबान है या इशारे की जबान है, दो मिसरों में समेटना है तो बयान नहीं होता उसमें, तो बयान की उस कमी को नज्म पूरा करती है। और नज्म में भी नसरी नज्म जिस तरह एक गुफ्तगू या खुद कलामी के अंदाज में कही जाती है, वो मुशायरों में आज भी नहीं पढ़ी जाती लेकिन मशहूर है, आज भी अपीलिंग है। तेजी के साथ नए शायर ऐसे आ रहे हैं जो नसरी नज्म की जानिब मुतवज्जे हो रहे हैं। फिर गजल की शायरी में भी आप देखें कि रवायत से, किसी कहीं कहा था, शायद खुशी साहब ने कहा था या नुमान साहब ने कहा था कि रवायत का बोझ नहीं है उन पे। हमने जिस फिक्री तसलसल की और रवायत की बात की थी, उस रवायत से कटी हुई एक नस्ल है जो गजल की शायरी कर रही है, जिसके तहजीबी बुनियादें कुछ और हैं, वो तहजीबी बुनियादें उर्दू की तहजीबी बुनियादें नहीं है, उसके बावजूद अच्छे शेर आ रहे हैं। फिर बहुत नए गजल के शायर जिसमें सालिम सलीम है, मोहिदुर रहमान है, सफ़ीर सिद्दीकी का नाम आपने लिया, एक मजमुआ पिछले दिनों देखा साबिर औरंगाबाद के शायर हैं, उनका
1: जी
2: मजमुआ किस्त है,
1: अच्छे शायर
2: उसमें
1: हैं।
2: उसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज है, वो कितनी अच्छी है ये मुझे नहीं मालूम। बहरहाल अंग्रेजी लफ्जों का इस्तेमाल सबसे पहले हमारे यहाँ बशीर बद्र ने शुरू किया
1: जी
2: था
1: बिल्कुल
2: गजल
1: सही
2: की
1: बात बोल
2: शायरी
1: रहे हैं,
2: में।
1: बिल्कुल
2: इसी किस्म का कुछ एक तजर्बा साबिर ने भी किया और इस फर्क के साथ किया कि बशीर बद्र ने अंग्रेजी लफ्ज को उर्दू में लिखा और बहर में ले आए, बहर को जहन में रखते हुए लिखा। साबिर साहब ने अपने मजमुए में अंग्रेजी लफ्ज को अंग्रेजी में लिखा है, शेर में अगर क्यूट लिखा है
1: जी
2: तो क्यूट सी यू
1: अगली में लिखा है,
2: टी,
1: अगली में लिखा है
2: हाँ
1: जी।
2: अगली जो लिखा है UGLY लिखा है,
1: और वो बहर में भी है
2: और वो बहर, हाँ रवानी तो
1: जी
2: उस
1: जी
2: तरह से है
1: जी
2: कि वो
1: वो
2: बहर
1: बहर में
2: में,
1: है। हाँ
0: हाँ तो रस्म
2: ये
0: का फर्क हुआ ना इसमें, कोई बहुत
2: हाँ
0: अच्छी,
1: नहीं ये अंग्रेजी का लफ्ज ही इस्तेमाल किया
2: अंग्रेजी
1: है।
2: का
1: हाँ बहुत
2: लफ्ज
1: सारे
2: देखिए अकबर ने
1: अंग्रेजी
2: भी
1: बहर में
2: इस्तेमाल किया,
1: इस्तेमाल
2: बशीर
1: किया
2: बद्र ने भी इस्तेमाल किया, लेकिन अंग्रेजी में लिख लेना रस्म गजल
1: का
2: में,
1: कोई
2: दरअसल
1: नई
2: गजल
1: चीज
2: का
1: थोड़ी
2: मामला
1: ना।
2: है।
1: ये बात गजल की
2: नज्म
1: है
2: में तो
1: जी
2: हमारे यहाँ अकबर ने तो बहुत इस्तेमाल किया,
1: जी
2: तर्जा ने इस्तेमाल किया, लेकिन गजल में अंग्रेजी का लफ्ज अंग्रेजी के इमला के साथ शायद पहला तजर्बा है। कितना कामयाब हो गए तजर्बा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये उस समाज की तर्जुमानी जरूर कर रहा है जिसमें हम और आप जी रहे हैं। डिस्कशन लफ्ज अपने आप में अंग्रेजी है, हमने कितने अंग्रेजी के, तो ये जो जबान की तब्दीली है ये शायरी में रिफ्लेक्ट हो रही है, शायरी में उसकी अक्कासी हो रही है, खासतौर से नज्म में और कहीं कहीं गजल में। आने वाले दिनों में मुमकिन है कि रुझान बढ़े,
1: जी जी
2: ये
1: बिल्कुल
2: मुस्तकबिल के लिए कितना खुशकुन होगा ये कहना अभी शायद काबिल वक्त होगा, लेकिन इस रुझान के बढ़ने के इम्कान आते हैं एक ऐसे दौर में जहां हम मुस्कुराहट को भी एक स्माइल के आइकन से दिखाते हैं, जहां हम अपने गुस्से का इजहार भी एक लाल रंग का एक एमोजी दे के करते हैं,
1: अलामत है,
2: हाँ
1: ये सब
2: अलामतें,
1: अलामत है
2: अलामतों की तरफ पलटे
1: जी।
2: हैं हम, लेकिन शायरी अलामतों की तरफ पलटने के बजाय दो कदम आगे बढ़ रही है। तो इम्कानात तो हैं और इम्कानात हमेशा रहते हैं, अगर हम मुस्तकबिल की बात करेंगे तो हम इम्कानात की बात करेंगे और इम्कानात के साथ अंदेशे कहीं ना कहीं आते हैं। मसलन पहले शायर की तरबियत मुशायरों से होती थी, आपके फनी इर्तका की गुंजाइश होती थी मुशायरों में, आपकी जबान पे गिरफ्त की जाती थी। आज के मुशायरे वो तरबियत गजल के हवाले से नहीं कर रहे और मुशायरों में ये गुंजाइश नहीं बची कि उसमें नज्में भी, खासतौर से नसरी नज्म को सुन पाए सामईन या हाजरीन, उस पर दाद दे पाए, ये अभी भी मुमकिन।

0: नहीं है, आने वाले दिनों में उस लूप के एतबार से, और वो जो एक गहराई होती थी गजल में, वो गहराई अभी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुई है। अंदेशा इस बात का तो है कि गजल महज तुकबंदी न रह जाए, या शायरी महज बयान न रह जाए, या बाजार उसके मयार को मुतय्यन न करे। बाजार तो
1: जी,
0: आज के दौर
1: ये
0: की
1: आपने बहुत अहम बात कही है,
0: सबसे
1: बाजारों
0: बड़ी हकीकत है हमारी, सच्चाई आज के दौर की ये है कि हम बाजार से इन्फ्लुएंस्ड हैं। हम अपनी जाती जिंदगी में भी बाजार से इन्फ्लुएंस्ड हैं। 10 बार जब हम मोबाइल फोन खोलते हैं और ऐड आते हैं, 10 बार एक ऐड आता है तो एक बार हम कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं। यही मामला शायरी के साथ भी है।
2: जी। देखिए, फिल्मों में होता है, रेडियो में होता है, या दूसरी जगहों पे जो तो होता है,
1: मुशायरों
2: फरमाइशी
1: में सबसे
2: शायरी होती है,
1: ज्यादा,
2: मुशायरों में
0: मुशायरों में
1: होता
0: ज्यादा
1: है, फिल्मों में भी
2: हाँ,
1: है,
2: लेकिन जो
1: एकदम
2: आधुनिक
1: मुशायरों
2: शायरी
1: में
2: होती
1: हुआ
2: है,
1: है।
2: संजीदा शायरी होती है, तो मेरे ख्याल से उसमें वो डिमांड को बिल्कुल नहीं देखते हैं। हाँ, ये तो है कि हालात के तहत जो है अल्फाज बदलते रहते हैं, उसमें बदलता रहता
0: हाँ,
2: है
0: उसमें
2: बाजार के तहत।
0: शेरियत के मजरूह होने के इम्कानात बहुत हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि ये दौर नस्र का दौर है? सिर्फ इसलिए नहीं है नस्र का दौर कि नस्र बहुत अच्छी लिखी जा रही है। कुछ बहुत अच्छी चीजें नस्र में भी आ नहीं रही हैं, लेकिन उसके बावजूद नस्र की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं। उसकी शायद एक वजह ये है कि शायरी जिन चीजों से, जिन खूबियों से इबारत थी, वो खूबियां बतदरीज कम हो रही हैं। हमारे यहाँ रिदम कम हो गया, हमारे यहाँ लफ्जों की दरोबस्त जो शायरी का खासा थी, वो दरोबस्त, उस दरोबस्त का ख्याल अब कोई शायर नहीं रख रहा। हमारे यहाँ रिवायत से कटने के बाद जो जबान पे एक गिरफ्त थी लोगों की, वो जबान की गिरफ्त खत्म हो गई।
1: जी,
0: अब किसी भी लफ्ज को, सिर्फ लफ्ज को खपा देना शायरी नहीं हो सकती। मैं ये कह रही हूं कि क्यूट या अगली लफ्ज शायरी में, गजल में आ रहा है, और वो कितना आगे चल के कितना बढ़ेगा, ये रवैया या ये रुझान मैं नहीं कह सकती, हमें से कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन हमने अपनी शेरियत को, जिस चीज को हम तगज़ुल कहते हैं, नज्म में भी वो शेरियत होनी चाहिए, जज्बे की सतह पे भी, उसलूब की सतह पे भी, और लफ्ज की सतह पे भी, वो नगमगी, वो शेरियत और वो जज्बे की गहराई शायरी में कम हुई है। इसीलिए रुझान गालिबन नसर की तरफ बढ़ा है। तो मुमकिनात में से है कि कुछ ऐसे शायर आए जो रवायत को फिर से असर नौ जिंदा करें।
1: जी, नजमा साहब, आपने एक बात भी नसरी नज्म के हवाले से कही थी। असल में एक मसला ये हमारी, एक तो पहले ये है कि हिंदुस्तान में जो हमारा उर्दू का माशरा है, इसने नसरी नज्म को ज्यादा कबूल नहीं किया अभी तो। पाकिस्तान में तो खैर बहुत बड़ा हलका है नसरी नज्म कहने वालों का, बहुत तरह तरह की नज्में कही जा रही है वहाँ पे, और वहाँ बड़ी कबूलियत है, मकबूलियत को मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमारे माशरे में तो उनको मकबूलियत दरकिनार, कबूलियत भी हासिल नहीं है उसको।
0: बिल्कुल
1: अच्छा,
0: ठीक
1: अब
0: है।
1: मसला ये है, देखिए, एक तो बात यह है कि जब हम नसर कह रहे होते हैं, नसर का मामला इतना ये नहीं होता। नसर देखिए, बुनियादी तौर पर नसर शायरी की माँ है। इंसान सब कुछ पहले नसर में सोचता है, सारी फिक्री बहसें नसर में होती हैं। हम जिस तसव्वुफ के, अभी अब्बास साहब ने जिक्र किया कि तसव्वुफ हमारी शायरी, तसव्वुफ जो है वो शायरी नहीं थी। तसव्वुफ नसर में सारी बात करके, नसर में सारा कुछ, उसने सारी गुफ्तगू नसर में की, और हु की तशरीह करना शुरू की है ना शेख अली हजवेरी ने, तो यानी कितना 20 सफ़े लिख दिए। तो ये नसर है। मीर दर्द तो तसव्वुफ का, क्योंकि बिल्कुल आम जो हो, जो आम आदमी तक पहुंच सके उसको बयान किया है।
2: फिर उसके बाद असगर कौंटी भी कहते हैं तसव्वुफ का बहुत सा
1: हाँ,
2: शायर
1: तो
2: है,
1: किया है
2: बहुत
1: उन्होंने।
2: ही हाँ।
1: मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए, एक बात ये कहते हैं कि फारूक साहब ने एक जगह एक बात कही थी कॉलरिज के हवाले से। कॉलरिज कहता है कि भाई शायरी की दुश्मन साइंस है। उन्होंने कहा कि नहीं, शायरी की दुश्मन साइंस नहीं है, शायरी की दुश्मन नसर है। तो मैंने बड़ा गौर किया, मैंने कहा शायरी की दुश्मन नसर कैसे हो सकती है, क्या वाकई हो सकती है? फिर एक बार मुझे अभी फर्नांडो पेसवा का एक जुमला पढ़ने को मिला कि भाई कि एक एक अगला जो अगला मजीद तरक्की याफ्ता माशरा, उसमें शायरी बच्चों के लिए रह जाएगी, नसर रह जाएगी, नसर। तो फिर मसला ये हो गया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, शायरी की इतनी बड़ी रवायत दुनिया भरी पड़ी है, शायरी से होमर से आज तक शायरी तो होती रही है,
0: साहब,
1: शायरी रहेगी। मैंने कहा शायरी की 2-3-4 पूछ बुनियादें हैं उसके रहेगी, लेकिन चूंकि इंसानी इरतका यानी इंसान का फिक्री इरतका जो है वो नहीं रुक रहा है, वो आगे बढ़ता जाता है। इस वक्त देखिए नसर जो है वो कितने मैदानों में, सियासियात, इमरानियात है ना, फलसफा तो नहीं लेकिन फलसफे के जो का जो एक अवामी पहलू है, वो ये सब चीजें इतनी ज्यादा फैल गई हैं, तरह तरह की नजरियाती बहसें हो रही हैं। इन बहसों में के जाहिर है कि शायरी, अब जब तक कि ये बहसें एक जगह पे आकर के डायलूट नहीं होंगी, एक जगह पे जाकर के रुकेंगे नहीं, तब तक शायरी उसको अपने अंदर नहीं समो सकती। तो शायरी जो है खुद उसका अपना कोई इर्तका नहीं हो रहा है। शायरी को रवायत से बहुत इलाका रहता है, नसर को रवायत से इतना इलाका नहीं रहता है, क्योंकि नसर अपनी रवायत को तोड़ती चली जाती है। कल जदीदियत थी, आज मावादे जदीदियत है, आज मावादे जदीदियत हो जाएगा, कल ट्रूथ की बात करते हैं तो आज हम पोस्ट ट्रूथ की बात करते हैं। शायरी इसको भी करती है, जैसे नसरी नज्म में आपने कहा कि अगर आप दुनिया की जो नसरी नज्म

0: कही जा रही दुनिया भर में और जगहों पे, जो नसी नज़में कहेंगे, जो तरक्की याफ्ता माशा निकुनार पर्रा की नज़में यहाँ पढ़ी है, तो आपको अंदाजा होगा कि उन्होंने शायरी में भी इसका इरतका करने की कोशिश की है।
1: साहब,
0: हमारे माशरे
1: हाँ
0: में मसला ये है, हमारे माशरे में चूंकि मैं पहले ही अर्ज कर रहा था, गजल इतनी हावी है हमारी अदबी समाजियात पे कि वो गजल जो उलट पलट करती रहेगी अपने आप को और उसकी बुनियाद पे बिना पे वो मकबूल रहेगी, इसमें इम्कानात जरा ज्यादा नहीं रह गए हैं, अंदेशे भी नहीं है, मुझे जहां तक ऐसा महसूस होता है। जी
1: नहीं, खुशी साहब, आपने नस्र का जो बयान किया, जाहिर हम तकाबुल नहीं कर रहे हैं
0: जी
1: नस्र और शायरी का। सबसे बड़ी बात यह है कि शायरी का सीधा ताल्लुक, जो बात शुरू में अम्मा साहब ने कही, कि हमारी रूह से है, हमारे जज्बे से है। नस्र हमारी अक्ल को
0: देखिए, ये सिर्फ
1: फोकस करती
0: ये
1: है।
0: बात बातें जो हम बार बार कहते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वही एक सदाकत है।
2: एक नहत से मुझे लगता है नए शायरों में, जैसे पुराने शायर थे तो उनका मुताला बहुत वसी होता था,
0: जी
2: किताबें भी पढ़ते थे, मुख्तलिफ मौजूआत को देते भी थे, तजर्बे भी उनके बहुत थे, दूसरे शायरों को भी पढ़ते थे, दूसरी जबान की शायरी को भी पढ़ते थे। हमारा जितना क्लासिक शायर है तकरीबन फारसी से वाकिफ था।
0: जी
2: अब जो नया शायर है, तो ज़ुबैर रिज़वी ने एक दफ़ा अपने रिसाले ज़हन जदीद में लिखा कि अगर एक सफ़े पे 3 या 4 शायर की गज़लें शाये हो, तो हर शायर अपनी अपनी गज़ल पढ़ता, दूसरे तीसरे चौथे की नहीं पढ़ता है। तो जाहिर है ये तश्वीश तो है, उसके पास अल्फाज कहाँ से आएंगे, ख्यालात कहाँ से आएंगे,
0: जी
2: जज्बात का इजहार दूसरों से भी हम लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि नए जो शायर हैं उनका मुताला बहुत ज़्यादा वसी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं रहे हैं, अपने माकबल को भी नहीं पढ़ रहे हैं, क्लासिक शायरी को भी नहीं पढ़ रहे हैं, अपने आसपास को भी नहीं पढ़ रहे हैं।
0: इससे
2: नहीं अम्मा
0: इससे
2: साहब,
0: जज्बे जज्बे
2: हाँ
0: की में जो शिद्दत पैदा होती है वो बदरा कम हो रही है, जाहिर है
1: वो
0: कि
1: वही बात
0: किरदार
1: मैंने कही
0: इंसान
1: कि
0: जी
1: हमें जो ये लग रहा है, हमें गालिबन हमें ये वहम हो रहा है कि शायरी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है या अपनी अपनी ताबनाकी खो रही
0: नहीं, ये वहम मेरे ख्याल में
1: है
0: किसी को नहीं हो रहा है कि
1: ना,
0: शायरी खत्म हो रही है।
1: अपनी
0: हमारे
1: ताबनाकी
0: दरमियान
1: खो रही है, अपनी रोशनी
0: शायर
1: खो रही
0: है,
1: है, उसकी
0: अब भाई
1: रोशनियां कम हो रही
0: क्या
1: हैं,
0: बात
1: जो जो दिल को
0: नहीं
1: रोशन करती
0: शायरी
1: हैं। वो
0: जी
1: मुझे सफीर सिद्दीकी का एक शेर याद आ रहा है, बहुत नया शायर है, नए शायरों से मुझे बहुत उम्मीदें
0: जी
1: हैं।
0: बिल्कुल
1: पिछले दिनों मैंने भी वही सोचा जो आप सोच रहे हैं कि नस्र का दौर है, शायरी तो अब उस तरह से दिल खुशकुन नहीं रही। लेकिन पिछले दिनों जो नए शायर पढ़े, जो 35-40 साल के लड़के हैं, उनको पढ़
0: सफीर को
1: के,
0: और भी कम उम्र है बहुत।
1: सफीर तो बहुत ही कम उम्र है, तब क्या है वो, तबाह हाल अक्ल के तारीक उतार गोशों में चमक रही थी कोई चीज बेखुदी की तरह। अब इस शेर में जो वाकयतन बेखुदी है, वही बेखुदी शायरी का असल है, वो बेखुदी तो आने वाले जमानों में भी रहेगी,
0: बिल्कुल
1: जब तक
0: रहेगी।
1: हम हैं, जब तक इंसान है, और जब तक इंसान में जज्बात हैं, जब तक इंसान में दिल है, जब तक इंसान में सोच है,
2: मुझे लग रहा है कि
1: तब
2: आप
1: तक
2: लोग जो है
1: शायरी है।
2: शायरी को कम दिखा रहे हैं, नस्र नस्र का दौर है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बुरी नस्र लिखी जा रही है
0: नहीं
2: और
0: नस्र
2: नॉवेल भी
0: अभी
2: बहुत बुरे लिखे जा
0: नस्र की
1: रहे
0: बातें जो
1: हैं,
0: बात
1: एप्रिसिएशन की
0: की
1: गुंजाइश कम हो गई है।
3: जी, अभी नजमा साहबा फरमा रही थी कि बेखुदी है और जब तक ये बेखुदी है तब तक शायरी है, क्योंकि शायरी का बेखुदी से जो रिश्ता है वो
2: बिल्कुल
3: बहुत बहुत ही गहरा और बहुत पायदार है।
2: जी,
3: अब जहां तक बात नस्र और शायरी की है तो कभी इसमें तकाबुल नहीं किया जा सकता, और तकाबुल में कभी भी तअस्सुब और जो आपके अपने फिक्सेशंस हैं उनका बड़ा दखल होता है, तो इसीलिए हमें उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अब ये कि जो अदब के जो अलग-अलग हिस्से हैं, शायरी भी एक हिस्सा है और नस्र भी एक हिस्सा है, दोनों के नजदीक कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इम्कानात हैं, बहुत
4: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, FM 100.1 MHz पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 4 बज चुके हैं। आइए अब सुने आकाशवाणी दिल्ली से हमारा कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर।

0: भारत के वीर सैनिक सीमाओं की रक्षा और देश की सुरक्षा में सदैव अपने कर्तव्य, समर्पण और देश सेवा में निष्ठा से तत्पर रहते ही हैं। साथ ही ग्रीन इनिशिएटिव से लेकर मिशन लाइफ तक जंगल, पहाड़, नदी और आकाश की भी हिफाजत में जुटे हैं। प्रोटेक्टिंग द नेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग नेचर, यानी देश की रक्षा, प्रकृति की रक्षा। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ से कैंटोनमेंट बन रहे हैं जीरो वेस्ट जोन, सोलर पावर से चल रहे हैं कैंप और प्लांटेशन ड्राइव से हर सोल्जर बन रहा है एक इको वॉरियर। ये है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड मिशन जिसके लिए हमारी सेना जानी जाती है। और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को ये इनिशिएटिव और भी सशक्त और भी स्पेशल बन रहा है। भारत की धरती सलाम कर रही है अपने सपूतों को, अपने सैनिकों को। 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर आज का विशेष संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित है, जिसे बड़े दिल से बनाया है टीम रेनबो ने। और आज का ये स्पेशल एपिसोड आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और हमारे ओबी टीम मेंबर हैं वैभव श्रीवास्तव। और हमारी रेनबो टीम पहुंची हुई है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी कैंप दिल्ली में। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कमांडेंट गौरांग जैन के संदेश से।
1: तो आज मौजूद है आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में और हम बात करने वाले हैं यहाँ के कमांडेंट कर्नल गौरांग जैन से। सर, वेलकम टू द शो।
2: थैंक यू, और आपका यहाँ कैंप में आने के लिए और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
1: सर, जब लोग आर्मी के बारे में सोचते हैं, हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की खासकर, तो हमारे जहन में आता है डिसिप्लिन, ड्रिल्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस और ये सब चीजें। तो सर, बॉर्डर्स को सिक्योर करने से लेकर पर्यावरण को सिक्योर करने तक ये बदलाव की शुरुआत कैसे हुई, प्लीज हमें बताइए।
2: देखिए, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत के बारे में नहीं है, इसमें हमारी मिट्टी, जल, वायु सभी इस सुरक्षा के उसमें आते हैं। ये पर्यावरण संरक्षक आज सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक ये हमारे आवश्यकता बन चुकी है, और ये सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। फौज का और पर्यावरण का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। आप जानते हैं कि कैंटोनमेंट हमेशा से ही हरे भरे मिलेंगे आपको, और जो हमारे सैनिक हैं इनमें साफ सफाई रखना, पेड़ पौधे लगाना, ये उनके DNA में है। लेकिन आज सिर्फ साफ सफाई से या पेड़ पौधे लगाने से नहीं होगा, हमें एक पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनानी पड़ेगी और हमें कल्चरली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमने मिशन ग्रीन के तहत हमारा डीकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपक्षित मुक्त सैन्य भारत अभियान, जैसे कि जीरो वेस्ट इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं, वो चलाया जा रहा है, और ताकि हम आने वाली पीढ़ी को इसको सुरक्षित कर सके।
1: सर, क्या जीरो वेस्ट मॉडल एक्चुअल में मुमकिन है, क्या इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बता सकते हैं प्लीज?
2: जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, और इसके लिए बस हमें थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। जीरो वेस्ट मॉडल के लिए कुछ मापदंड होते हैं, जैसे कि कोई भी वेस्ट हमारा लैंडफिल में ना जाए, वेस्ट को सोर्स पे ही 100% हम सेग्रीगेट करें, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको 100% हम इन हाउस कंपोस्ट कर सकें, कोई भी वेस्ट हम ओपन बर्निंग में ना करें या इंसिनरेशन ना करा जाए इत्यादि। जैसे मैंने बताया कि अगर ये अपनाना है तो हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, वेस्ट को वेस्ट ना समझे बल्कि उसको हम रिसोर्स समझे। जिस दिन हमने वेस्ट को रिसोर्स समझ लिया, हम उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि रिसोर्स को हम रखते हैं और वेस्ट को हम फेंकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी सामान आप देखेंगे कि उसको हमने रिसोर्स की तरह समझ के रखा है, तो या तो वो खुद ही हम यूज कर सकते हैं या कोई और, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिसाइकल होके कहीं ना कहीं किसी के इस्तेमाल में आ ही जाएगा।
1: सर, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स कैंप किस प्रकार से जीरो वेस्ट में तब्दील किया गया, क्या इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप हमें समझा सकते हैं प्लीज?
2: जी बिल्कुल, आज जैसा आप जानते हैं पहले जितना भी वेस्ट होता था ये इकट्ठा होकर म्यूनिसिपैलिटी लैंडफिल्स में जाया जाता था, जो फिर कूड़े का पहाड़ बन गया। सो इसके लिए हमने जीरो वेस्ट के लिए सिस्टम तैयार किया। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार वेस्ट को सोर्स पे ही 4 तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं, जैसे ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, स्पेशल केयर वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट। इसके अलावा हमने कोलैबोरेट किया है कई NGO से या संस्थाओं से, जो कि रिसाइकल हमें इन साइंटिफिक तरीके से इसको कर सके। इसके अलावा कई उपकरण भी लगाए गए हैं। तो सब करने से इसका नतीजा ये हो रहा है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अब 100% हम इन हाउस यानी कि कैंप में ही कंपोस्ट कर रहे हैं, या फिर उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका किचन का वेस्ट हो गया या हॉर्टिकल्चर वेस्ट। जो ड्राई वेस्ट है जैसे पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, उनको हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद इन संस्थाओं को देते हैं जो वहां पे इनको रिसाइकिल करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स में तब्दील करते हैं, और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का करते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस के लिए हमने कुछ रैक्स लगाए गए जिसको हम वॉल ऑफ काइंडनेस कहते हैं, ताकि जो सामान काम

0: का है लेकिन शायद मेरे काम का नहीं है, उसको रीयूज करने के लिए लोग अपना वहां पे उसको डोनेट करते हैं, जैसे किताब, बुक्स, शूज, बच्चों के खिलौने, बर्तन, वो डोनेट करते हैं और जिसको जरूरत है वो उसको वहां से ले लेता है। सो इन सब छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जो हमने चीजें शुरू करी है यहाँ पे, इससे पिछले कुछ ही महीने में सिर्फ कैंप ने करीब 50 टन से भी ज्यादा वेस्ट को रिसाइकिल कर दिया गया है और लैंडफिल जाने से बचाया गया है। और इसी तरीके से बाकी कई यूनिट और हमारे स्टेशन अब जीरो वेस्ट में इस तरीके से तब्दील हो रहे हैं।
1: कहना होगा कि इनिशिएटिव्स वाकई कमाल के हैं और आई होप कि आर्मी से इंस्पिरेशन लेके बाकी लोग भी इनिशिएटिव्स करें। सर, क्या ये अभियान कैंप को साफ रखने और कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकने के लिए है या इसको और आगे बढ़ाने के लिए, आपने क्या सोचा है या क्या कदम उठाए हैं?
0: देखिए, साफ सफाई रखना और लैंडफिल में कचरा ना जाने के लिए ये एक छोटा सा पार्ट है ओवरऑल जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो, क्योंकि इसमें और भी कई चीज शामिल हो जाती है जैसे कि हमारे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना। आपको पता है नेचुरल रिसोर्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, चाहे हम पानी की बात करें चाहे हम फ्यूल की बात करें, तो उनको कंजर्व करना, इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन करना, वृक्ष लगाना, ये भी सारा हमारे पूरे पर्यावरण की तरफ आता है और इन सब चीजों पर भी हम काफी काम कर रहे हैं। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन पे आऊं, सबसे पहले फ्यूल कंजर्वेशन, तो उसमें ईवाइजेशन यानी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंप में ही आज की डेट में 25 से ज्यादा व्हीकल हमारे इलेक्ट्रिक हो रखे हैं जिसमें हमारे सैनिक यहाँ पे ऑफिस में जा रहे हैं। सोलराइजेशन का काफी काम चल रहा है जिससे कि बिजली की खपत कम हो रही है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारा थल सेना भवन बन रहा है वो GRE4 कंप्लाइंट है और एक इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाया जा रहा है। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करने के लिए करीब 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, सेंसर लाइट्स लगाई जा रही हैं और वाटर कंजर्व करने के लिए वहां पे इंटीग्रेटेड STP प्लांट, अनेकों वाटर रिसाइकलिंग पिट्स लगा रहे हैं और यही पानी इस्तेमाल किया जाएगा वहां के एबोरिकल्चर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा वहां पे मेगा कंपोस्ट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो कि करीब 1500 केजी तक का कंपोस्ट एक दिन में वहां पे कर सकते हैं। सो जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षक की तो वो सिर्फ एक पहलू वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है बल्कि पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच आती है जो कि एज एन आर्मी और एज अ कैंप हम इसको अपना रहे हैं।
1: आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, होलिस्टिक अप्रोच। मैं पूछूंगा कि इन सभी इनिशिएटिव्स का अल्टीमेट गोल क्या है आपके हिसाब से?
0: देखिए, अल्टीमेट गोल तो यही है कि हम पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित कर सके लेकिन साथ में कैसे हम एक डीप रूटेड कल्चरल चेंज यानी कि सांस्कृतिक बदलाव ला सके। हमारे जो जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, ये देश के हर प्रांत से आते हैं और यहाँ से उसके बाद वो देश के हर जगह यानी कि बॉर्डर एरिया से लेकर बड़े शहर तक तैनात होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक ग्रीन सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं तो ये हमारे एक ग्रीन एम्बेसडर्स का काम करेंगे। यहाँ पे एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम में है, डेली उठ के ये अपने वेस्ट को सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम के जैसे अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो जब ये वो यहाँ पे इस चीज को हिस्सा ले रहे हैं तो ये अब एक इनकी जीवन शैली और एक इनकी आदत बन चुकी है। जब यहाँ से ये पोस्टिंग जाएंगे कहीं पे भी तो ये अपना माइंडसेट लेके जाएंगे और वहां पे ये सोसाइटी में इस चीज को रेप्लिकेट करेंगे और एक कल्चरल चेंज डेवलप करेंगे।
1: सर, पूछना चाहूंगा कि वाकई एक अद्भुत विजन है और हमें पूरी उम्मीद है कि पर्यावरण संरक्षण में इसमें काफी मदद मिलेगी एंड आई होप कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये रंग लाएं और जैसा आपने कहा कि एक माइंडसेट चेंज हो ना सिर्फ फौजियों का, सोल्जर्स का, बल्कि पूरे देश का इसके थ्रू।
0: जी, यही हमारा इसके ऊपर कोशिश है, चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर कैंप है और या फिर पूरे इंडियन आर्मी इसके ऊपर लगी हुई है और मुझे यकीन है कि हमें इसमें और आगे बढ़ावा मिलेगा और सोसाइटी में चेंज आएगा। और मैं चाहूंगा कि आप जो हमने यहाँ पे ये चेंजेस ला रहे हैं, जो जीरो वेस्ट कैंप है, जैसे कि इंडियन आर्मी का ये पहला जीरो वेस्ट यूनिट है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जाके देखें और ग्राउंड पे, और हमारे मेजर अजीत मोरे हैं जो इसके प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, तो ये आपको एक बार ग्राउंड पे इसको दिखाएंगे।
1: साहब, हमसे बात करने के लिए, ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में बताने के लिए और हमेशा की तरह एक सोल्जर होने के नाते हमें प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू।
2: जय हिंद। तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश की मिट्टी को देश के सैनिकों का सलाम है दिल से। इस गीत के बाद अब हम आज के हमारे संदेश टू सोल्जर के स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स आर्मी कैंप के प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे से।
1: हम मौजूद हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स MOD आर्मी कैंप के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जोन में और हमारे साथ फिलहाल हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे। सर, स्वागत है शो में। हमें इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बताइए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं।
2: धन्यवाद, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। तो मैं बहुत ही गर्व के साथ आपको कहना चाहूंगा, ये हमारे पूरे भारतीय सेना का पहला जीरो वेस्ट कैंप है। भारतीय सेना की हर एक यूनिट, हर एक इकाई जहाँ भी मौजूद है वो इसी तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रही है। जब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस मिले थे तो उसके अनुसार हम यहाँ पे वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट, इसको हम यहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं। मतलब मुद्दा यह है कि वेस्ट को उसके सोर्स पे ही 100% रिसाइकल किया जाए। साथ ही साथ में जब ऑर्गेनिक वेस्ट या वेट वेस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें हम एरोबिक्स लगाए हैं, जिसको एरोबिक से हम खाद बनाते हैं, और साथ में बायोगैस लगाया गया है। बायोगैस कंपोजिट सिस्टम से हम इसको कुकिंग हाउस में इस्तेमाल करते हैं। ड्राई वेस्ट में प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, ई वेस्ट और टेक्सटाइल वेस्ट लगाया गया है, तो इसके द्वारा भी हम इसको रिसाइकल्स को आगे देते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, वेस्ट

इज नॉट अ वेस्ट, इट इंडिफिनिट रिसोर्सेस। इसको मैं एग्जांपल के तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। समझ लो मैंने किसी भी दुकान से आज चिप्स का पैकेट खरीद लिया, चिप्स मैंने खा लिए, रैपर फेंक दिया, तो रैपर मेरे लिए तो वेस्ट है। साथ ही साथ में मैंने केला खरीद लिया, केला खा लिया और उसका छिलका फेंक दिया, दोनों चीजें मेरे लिए वेस्ट है। अगर मेरे जैसे किसी समझदार इंसान ने उसको दोनों को इकट्ठा करके फेंक दिया, वो प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, वो धरती की हानि पहुंचाएगा। वो केला भी मैंने कहीं और फेंक दिया, कोई उस पर फिसलेगा गिरेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई समझदार इंसान है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, प्लास्टिक को मेरे प्लास्टिक वेस्ट में डाल दिया और उसको रिसाइकल कर दिया और उसको ब्यूटीफुल इक्विपमेंट्स में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वही केले के

0: फिसलेगा गिरेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई समझदार इंसान है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, प्लास्टिक को मैंने प्लास्टिक वेस्ट में डाल दिया और उसको रिसाइकल कर दिया और उसको ब्यूटीफुल इक्विपमेंट्स में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वही केले के छिलकों को हमने खाद के एरोबेस में डाल दिया और उससे हमने खाद बनाई जो नेचर को आगे प्रोटेक्ट करती है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, वेस्ट इज द ओनली वेस्ट इफ यू वेस्ट इट।
1: थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: हमने सुना कैसे पूरी डिटेल में मेजर अजीत मोरे ने ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके जानते हैं पूरे मिशन के बारे में। तो सबसे पहले बात एरोबिन कंपोस्टिंग की, जिसके बारे में बता रहे हैं हवलदार राजकुमार।
1: तो बात चल रही थी आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की। हम यहाँ फिलहाल मौजूद हैं एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के पास और हमारे साथ मौजूद हैं हवलदार राजकुमार जी। सर हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में प्लीज बताइए।
3: मैं आपको ऑर्गेनिक यानी के बेड बेस्ड के बारे में बताऊंगा। किचन और हॉर्टिकल्चर को मैनेज बेस्ड करने के लिए हमने कुक हाउस में एरोबिन सिस्टम और बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल किया है। एरोबिन के अंदर हम वेजिटेबल बेस्ड, फ्रूट बेस्ड, सूखी पत्तियां और बिना पका हुआ किचन बेस्ड को डालते हैं, जो कि 20 से 30 दिन में रिसाइकल होकर खाद बन जाती है। इस खाद को हम एरोबिन से निकालते हैं, जो कि 2 से 3 दिन सूखने के बाद इसको हम एक अच्छी क्वालिटी में खाद दर्शाई गई है। पूरी तरह से खाद तैयार होने के बाद इस तरह से खाद निकलती है, इसको आप पैकिंग भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पर्यावरण फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें ना ही बिजली और ना ही किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कैंप में अब तक सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर इससे हमने 750 केजी खाद को तैयार किया है।
1: हवलदार राजकुमार जी, इसकी कैपेसिटी कितनी है और कितने दिन में खाद बन जाती है?
3: इसकी कैपेसिटी 400 केजी की होती है। इसे हर दिन 20 से 25 केजी बेस्ट डाला जाता है, जो कि 20 से 25 दिन के अंदर कंपोस्ट यानी कि खाद तैयार हो जाती है।
1: साहब एक और बात बताएं हमें, ये जो एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम है, इसको इस्तेमाल में लाने के लिए और क्या मिलाया जाता है?
3: इसको ड्राई रखने के लिए इसके अंदर सूखी पत्ती डाली जाती है। इसके अंदर किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं है, ये बायोलॉजिकल काम करता है।
1: सर आपने हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में इतनी जानकारी दी, हमें बताया कि किस तरीके से खाद बनती है और बिना केमिकल्स को यूज किए बनती है। ये ग्रीन इनिशिएटिव है, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है। साथ ही साथ आप देखिए कि अगर इस तरीके के सिस्टम्स पूरे देश में इंस्टॉल किए जाएं, आर्मी से सीख ली जाए किस तरीके से हम वेट वेस्ट को, जैसा कि हमें प्रोजेक्ट ऑफिसर ने बताया था कि हम किस तरीके से वेस्ट को वेस्ट ना रखकर उसको एक एसेट में तब्दील कर सकते हैं, इसे कहते हैं वाकई वेस्ट से एक एसेट बनाना। थैंक यू सो मच।
2: अभी हमने जाना एरोबिन कंपोस्टिंग के बारे में। श्रोताओं हम आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे हम कि कैसे बायोगैस प्लांट लगा करके हमारी आर्मी कैंप में किचन मेंटेन किया जा रहा है और इस बारे में डिटेल में बता रहे हैं हमें हवलदार राजकुमार।
1: भारत में नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो दशकों और न जाने कितने वर्षों से होता आया है, लेकिन जिस तरीके से आर्मी इसे इस्तेमाल करती है और जिस तरीके से इसके नए प्रोसेसेस को सबके सामने रखा जाता है, ये वाकई अद्भुत है, अद्वितीय है। अभी फिलहाल हम आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की एक और बात करते हैं, जहां पर हम फिलहाल बायोगैस मशीन और बायो मेथनाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इसके बारे में हमें और बताएंगे हवलदार राजकुमार जी। सर प्लीज।
3: एलपीजी की खपत को कम करने के लिए हमने कुक हाउस में बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल कर रखा है। इसके अंदर हम मेस में बचा हुआ खाना जैसे कि पानी गर्म, दूध उबालना, अंडे उबालना इत्यादि कामों में इस्तेमाल करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, बायोगैस को अपनाना बल्कि आत्मनिर्भरता बनना ही नहीं बल्कि अपनी धरती को हरा भरा रखने में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए वेस्टेज को फेंके ना, उससे ऊर्जा बनाए।
1: तो बायोगैस इनिशिएटिव एक और ग्रीन इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से कचरा यानी वेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस तरीके के इनिशिएटिव से आप क्या कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं या हमारा देश क्या कर सकता है, वो ये है कि हम इस तरीके के इनिशिएटिव से वेस्ट को कम करके उन सभी एसेट्स को अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सभी रिसोर्सेस की बाहरी खपत को कम करके अपने ही आसपास की चीजों को इस्तेमाल करके रिसोर्सफुल बनकर हम वो सभी एसेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिसोर्सेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। हवलदार राजकुमार जी हमें प्लीज बताइए कि इसमें एक दिन में कितना वेट वेस्ट डाला जाता है और इससे कितनी गैस उत्पन्न होती है?
3: जी हाँ, ये प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे पास जो प्लांट लगे हुए हैं इसमें एक दिन में 20 से 22 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 3 से 4 गैस को प्रोड्यूस करके इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं।
1: इसको इस्तेमाल करने से कितने एलपीजी की बचत होती है, कितने सिलेंडर्स की बचत होती है, अगर आप हमें बता पाए?
3: ये भी प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे कुक हाउस में जो प्लांट लगे हैं इसमें हर एक प्लांट से एक महीने में 4 से 5 एलपीजी सिलेंडर की बचत होती है।
1: और सर इसको कितनी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, अगर आप हमें बताएं?
3: जी, सबसे इसकी खासियत यही है कि प्लांट को मेंटेनेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास प्लांट लगा हुआ है तकरीबन 6 महीने से लगा

0: हुआ, अभी तक इसकी कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ी।
1: बायोगैस प्लांट है इंडियन आर्मी का एक और ग्रीन इनिशिएटिव, जिसमें हम वेस्ट से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स, 4 से 5 सिलेंडर्स की खपत जितनी होती है उतना हमें प्रोड्यूस यहां से इस मशीन से मिलता है।
2: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश पर जान निछावर करने वाले हमारे जवान सरहद और देश के भीतर ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल को कैसे फिर से इस्तेमाल में लाया जा रहा है और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार।
1: यूज्ड कुकिंग ऑयल के बारे में हम सब जानते हैं, इस ऑयल को अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो ये सीरियस इंजरी सीरियस हार्म दे सकता है ह्यूमन बॉडी को। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है किस तरीके से यूज्ड कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल किया जाए, घर घर से इकट्ठा किया जाए। इसके लिए हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार जी। सर हमें प्लीज इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में प्लीज बताइए।
2: सर जैसे कि FSA की गाइडलाइन के अनुसार जो भी हमारा कुकिंग ऑयल है उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे काफी सेहत के ऊपर भी असर डालता है, इसे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसी को देखते हुए हमने इसको अलग करके जो भी हमारा कुकिंग ऑयल जो था इसको यूज्ड है उसको हम अलग करके किसी रिकॉग्नाइज संस्था को देते हैं ताकि उसकी रिसाइकल कर इसका बायोडीजल या सोप बनाया जा सके। इसको कलेक्शन करने के लिए हमने अलग अलग इसके लिए ड्रम्स जो केन्स रखे हुए हैं ताकि उसको सही तरीके से उसको डिस्पोज कर सके और इसको हम आगे डिस्पोज ऑफ कर सके। सर
1: थैंक यू सर हमें यूज कुकिंग ऑयल के बारे में बताने के लिए धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: अभी तक हम जान रहे थे वेट वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे गीला कचरा रिसाइकल किया जा रहा है या अगर यूं कहें कि ये कचरा अपसाइकल किया जा रहा है। अब बहुत अहम और हमारी जिंदगी पर असर डालने वाला प्लास्टिक वेस्ट, इसे कैसे अपसाइकल करके फिर से यूजेबल बनाया जा सके

0: जबकि प्लास्टिक के बारे में आम धारणा है कि ये कभी खत्म नहीं होता। इसकी जानकारी दे रहे हैं हवलदार अब्बास।
1: इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स को हम आगे ले जा रहे हैं। फिलहाल हमने वेट वेस्ट की बात की, हमने यूज कुकिंग ऑयल की बात की, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट की, अब हम बात करेंगे ड्राई वेस्ट की। हमारे साथ हैं हवलदार अब्बास जी। सर, हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में प्लीज बताइए, कैसे ये कचरा इकट्ठा किया जाता है, किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, कैसे आप इसको यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद क्या होता है, प्लीज।
2: सभी को मेरा जय हिंद। प्लास्टिक आज के गंभीर विषय बन चुका है। हमारी कोशिश यही है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। फिर भी जो प्लास्टिक जनरेट होकर हमारे पास आता है उसको सही से डिस्पोज कैसे करें, इसके लिए हमारे कैंप की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसके दौरान हमारे ब्लॉक्स, लिविंग एरियाज, कैंटीन एरियाज में हमने प्लास्टिक कलेक्शन पॉइंट्स को इंस्टॉल किया गया है। वहां से ये प्लास्टिक सेग्रीगेट होकर हमारे इस मेन कलेक्शन पॉइंट पे लाया जाता है। इसमें प्लास्टिक के बोतल्स, पैकिंग मटेरियल, दूध की पन्नियां, नमकीन पैकेट्स, यहां से ये सारा मटेरियल, वेस्टेज मटेरियल मान्यता प्राप्त एजेंसीज में भेजा जाता है रिसाइकलिंग के लिए। इससे वहां पे फर्नीचर बनाया जाता है, जैसे टेबल, चेयर, बेंच, कबर्ड, इसमें डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल हम पब्लिक प्लेस पे किया जाता है ताकि लोगों को मोटिवेशन और अवेयरनेस मिले। जैकेट ग्लेशियर्स में डिप्लॉय हमारे सोल्जर्स द्वारा इकट्ठे किए गए हुए प्लास्टिक मटेरियल के वेस्टेज से बनाई गई है, जो दर्शाती है कि आर्मी न सिर्फ रेगिस्तानों में बल्कि ग्लेशियर्स में पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है।
1: हवलदार अब्बास जी, मुझे ये भी बताइए कि रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर नॉर्मल फर्नीचर के मुकाबले कैसा होता है? अगर एक नॉर्मल फर्नीचर की बात की जाए और ये जो रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर है इसकी बात की जाए, दोनों का कंपैरिजन कैसा है, कितना मजबूत है, हम सभी लिसनर्स को बताइए।
2: ये नॉर्मल फर्नीचर से बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मजबूत है, धूप बारिश इस पे कोई असर नहीं पड़ता है और ये देखने में भी अट्रैक्टिव है और साथ में कंफर्टेबल भी है।
1: क्या ये रिसाइकल प्रोडक्ट्स आम लोग भी खरीद सकते हैं, इसके बारे में अगर आप बता पाए।
2: जी हाँ बिल्कुल, ये आप खरीद भी सकते हो और प्लास्टिक के बदले इसको ले भी सकते हो।
1: बस हर आइटम पर कुछ प्लास्टिक नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है अगर आप हमें बता पाए।
2: जी, ये जो मार्क 80 केजी का लिखा है ये दर्शाता है कि 80 केजी प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से इस बेंच को बनाया गया है। ये चीज भी दर्शाती है कि 80 केजी वेस्ट को फैलने से रोका गया है।
1: Absolutely, 80 kgs waste, आप सोचिए 80 किलो वेस्ट कितना ज्यादा होता है। उस वेस्ट को इकट्ठा करना, उसको रिसाइकल करना, उसको प्रोसेस करना और उसके बाद ये मजबूत फर्नीचर, ये मजबूत बेंच, ये सब चीजें बनाना, कितनी अहम चीज है ये, कितना मजबूत इनिशिएटिव है, कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है और कितना ज्यादा सस्टेनेबल है। सर, पब्लिक वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट की अगर बात की जाए, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, कितनी चीजें हैं
2: इसमें? डिफरेंट तकरीबन 28 आइटम्स बनाए जाते हैं, जिसमें टेबल, कबर्ड, तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती है।
1: हमें प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू सो मच सर।

0: इसी तरह कंधों से कंधे मिलाकर हम अपनी धरती को स्वच्छ और बेहतर बना सकते हैं और प्लास्टिक जैसे खतरनाक वेस्ट को भी अपसाइकल कर रहे हैं। अब बात करते हैं पेपर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में और इस बारे में बता रहे हैं हमें नायब सूबेदार कुलदीप राज।
1: ड्राई वेस्ट में ही हमने पहले प्लास्टिक वेस्ट की बात की, अब हम बात करेंगे पेपर वेस्ट की। किस तरीके से पेपर्स को इकट्ठा किया जाता है, कैसे वेस्ट पेपर्स को यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद उसको श्रेड किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस के बारे में हमें बताएंगे कुलदीप राज जी। सर प्लीज हमें इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझाएं।
2: जय हिंद। पेपर का इस्तेमाल पूरे कैंप में कम से कम किया जाता है, जिससे पेपर और समय दोनों की बचत होती है और एनवायरमेंट में भी फायदा मिलता है, जिससे पेपर का इस्तेमाल कम होता है और पेड़ पौधे कटने से बचते हैं। जो भी पेपर वेस्ट होता है, जैसे कि शटल पेपर, गत्ता, किताबें, रजिस्टर इत्यादि, प्लास्टिक वेस्ट की तरह मान्यता प्राप्त एजेंसी को दिया जाता है और जिससे पेपर, किताबें, डायरी इत्यादि बनाए जाते हैं, जिसे इस्तेमाल में लाया जाता है। रीयूज करने से रिसोर्सेज की कमी और सर्कुलर इकोनॉमी में बढ़ावा मिलता है।
1: किस तरीके से डिजिटल इंडिया का एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहां पर चल रहा है, तो जैसा कि आपने देखा इंडियन आर्मी की ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक और है प्लास्टिक वेस्ट और वेट वेस्ट के अलावा पेपर वेस्ट को किस तरीके से रिसाइकल और अपसाइकल किया जाता है, कैसे मान्यता प्राप्त एजेंसीज तक ये सारे पेपर्स पहुंचते हैं, डिजिटल इंडिया की प्रॉपर एग्जीक्यूशन तो आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में की जा रही है। डिजिटलाइजेशन के बाद पेपर वेस्टेज या पेपर यूसेज कहें बहुत कम हो चुका है, डिजिटल चीजों का, डिजिटल माध्यम का उपयोग ज्यादा होता है, लेकिन जितने भी पेपर्स इस्तेमाल होते हैं जो जरूरी होते हैं

0: हैं उनको भी रिसाइकल किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
1: एक और वेस्ट जो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है और वो है ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिससे हमारे मोबाइल, टैबलेट्स, चार्जर्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और भी कितने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें शामिल हैं। और ये ई वेस्ट भी हमारी धरती के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। और इस ई वेस्ट को कैसे अपसाइकल किया जा रहा है, बता रहे हैं हवलदार अशफाक अहमद।
0: ड्राइविंग इसकी ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करते करते अब हम आ चुके हैं एक स्पेशल कैटेगरी वेस्ट की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट। बेहद जरूरी चीज जो हम सभी के घरों में मिलती है, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, वायर्स, प्लग्स, आप सभी ने देखा होगा, क्या वो सब चीजें ई वेस्ट का हिस्सा है? आइए जानते हैं हवलदार अशफाक अहमद जी से। सर, स्वागत है शो में। जितनी भी चीजें हमारे घरों में मिलती हैं, क्या वो सब ई वेस्ट में आती हैं?
2: जय हिंद। हाँ बिल्कुल, वो सारी ई वेस्ट में आती हैं। ई वेस्ट एक अत्यंत गंभीर समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ई वेस्ट की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए कैंटोनमेंट, RWS और ऑफिस एरियाज में ई वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि स्पेशल केयर वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें न सिर्फ ऑफिस एरिया के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बल्कि जवान अपने घरों से भी बैटरी, चार्जर, बल्ब जैसे इत्यादि लाके इसमें डाल सकते हैं। जो आप ई वेस्ट बॉक्स है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं, ये जवानों ने अपने घरों से लाके इसमें डाला हुआ है। इस ई वेस्ट को मान्यता प्राप्त एजेंसीज के सेग्रीगेशन प्लांट्स में भेजा जाता है, जहां पर उन्हें साइंटिफिक तरीके से रिसाइकल करके उनमें से सिल्वर, कॉपर, अल्मीनियम जैसे एलिमेंट को निकाल के दोबारा से उपयोग में लाए।
0: बिल्कुल, मतलब ग्रीन मेटल्स को हार्वेस्ट किया जाता है। इस सभी ई वेस्ट का उपयोग करके हम इन ग्रीन मेटल्स को निकालते हैं, इनको बनाते हैं और उसके बाद इसका दोबारा से इस्तेमाल होता है। ग्रेट इनिशिएटिव, एक्सीलेंट इनिशिएटिव। सोचिए कितना ज्यादा कचरा हम घरों से, बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां से इकट्ठा करके यहाँ पर लाते हैं और उसके बाद इससे कुछ और उपयोगी, कुछ यूजफुल बनाते हैं। एक्सीलेंट इनिशिएटिव आई वुड से।

0: ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी कन्वेंशनल फ्यूल को नहीं बल्कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रही है। इसके बारे में बता रहे हैं हवलदार आशीष जी।
1: जय हिंद, मैं हवलदार आशीष। एनर्जी कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ग्रीन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सोलराइजेशन यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी इनमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारे पास आर्मी हेडक्वार्टर कैंप में 25 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक फ्लीट है जिनका इस्तेमाल डिपार्टमेंटल ट्रांसपोर्ट और इंटरनल मोमेंट्स के लिए किया जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक कार्स का एक फ्लीट है, साथ ही हाइड्रोजन बस और इलेक्ट्रिक बसेस का एक फ्लीट नजर आ रहा होगा, साथ एक इलेक्ट्रिक रिक्शा रखा हुआ है। इनके चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं जहां पे इन व्हीकल्स को चार्ज किया जाता है। एक व्हीकल को फुल्ली चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है और एक फुल्ली चार्ज व्हीकल तकरीबन 300 किलोमीटर की एवरेज देता है। ऐसा

0: करने से हम मंथली तकरीबन 4,000 लीटर और ईयरली 48,000 लीटर तक तेल की बचत कर रहे हैं। इन इनिशिएटिव्स को और इन व्हीकल्स को यूज करके हम न सिर्फ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा रहे हैं बल्कि अपने एनवायरमेंट को भी साफ सुथरा रख रहे हैं।
1: संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे ग्रीन इनिशिएटिव मिशन लाइफ स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं जो इमोशनली भी बहुत रिलेवेंट है और वो है वॉल ऑफ काइंडनेस। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें पुराने कपड़े, किताबें और यूनिफॉर्म शामिल हैं। हमारे फौजी भी अपनी यूनिफॉर्म के साथ भी इमोशनली अटैच्ड होते ही हैं। तो कैसे डिग्निफाइड वे में इन्हें डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है बता रहे हैं हवलदार विनोद कुमार और राइफलमैन दिनेश कुमार।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों सज्जनों, आर्मी और ह्यूमैनिटी, ये दोनों शब्द हम सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स इतने हैं जिन्हें गिनवाया जाए तो शायद ये दिन ये रात सब कम पड़ जाए। हम ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करने आए थे लेकिन यहाँ पर इनिशिएटिव्स के साथ साथ जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है उसी के साथ साथ एक ऐसा इनिशिएटिव भी है जो काइंडनेस को और ज्यादा दर्शाता है। कैबिनेट है ये 155 किलो प्लास्टिक को इस्तेमाल करके बना है। सोचिए 155 किलो प्लास्टिक अब सड़कों में या कचरे के डिब्बों के आसपास नहीं बिखरा हुआ है, उसको इस्तेमाल करके ये शेल्फ बनाया गया है। ये अपने आप में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं और इसके साथ साथ ही दिस इज एक्चुअली अ वॉल ऑफ काइंडनेस व्हिच मींस डोनेट व्हाट यू कैन टेक व्हाट यू नीड, मतलब अपनी मर्जी से आप डोनेट कर सकते हैं और जो भी जरूरत है वो आप यहां से ले जा सकते हैं। अमेजिंग इनिशिएटिव, ऐसा एक काम जो इंडियन आर्मी ही सोच सकती थी, इंडियन आर्मी ही कर सकती थी। आइए इस वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में हम और कुछ जानते हैं। हमारे साथ हैं हवलदार विनोद कुमार जी। सर स्वागत है शो में, प्लीज हमें वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में कुछ बताइए।
3: जय हिंद, आज मैं आपको वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में परिचित करवाऊंगा। वॉल ऑफ काइंडनेस यानी नेकी की दीवार, ये एक सोशल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट है जो कि रीयूज के कंसेप्ट को प्रमोट करता है। हमारे यहाँ काफी सारे लोग आते हैं जो कि अपने साथ घर में पड़ा एक्स्ट्रा सामान, जो कपड़े, जूते, किताबें, जहाँ यूनिफॉर्म, वो सब इधर डोनेट करते हैं। बुक्स की शेल्फ है और यूनिफॉर्म की, कपड़ों की, जिस अलमीरा में ये डोनेट करके जाते हैं और जहाँ से जरूरतमंद लोग जहाँ से उठा के बिना किसी हिचकिचाहट के ले जाते हैं। और बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि चैरिटी नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जहाँ से सामान ले जा सके। बाकी अभी तक डेटा के अनुसार 10 टन से 12 टन तक कपड़े जहाँ से डोनेट हुए थे और काफी सारा सामान जरूरतमंद लोगों को दिया जा चुका है।
2: वॉल ऑफ काइंडनेस के साथ साथ एक और शेल्फ है जिसमें ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स हैं, क्या इसके बारे में और बता सकते हैं?
3: देखिए अभी आपने सारे रैक्स देख लिए, अभी ये लास्ट में मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म रैक्स। इसमें हम तीनों सेनाओं के यूनिफॉर्म रखते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। देखिए फौजी आदमी के लिए सबसे बड़ा प्राइड होता है उसकी यूनिफॉर्म, ये हमारे इमोशन को टच करती है और दूसरा ये हमारा प्राइड है। हम चाहते हैं इसका सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसलिए हम इसे रिस्पेक्टफुल तरीके से इनको जहां रखते हैं तीनों सेना की यूनिफॉर्म को।
1: बता रहे हैं राइफलमैन दिनेश कुमार।
3: वॉल ऑफ काइंडनेस में अभी तक कपड़े, यूनिफॉर्म, इसके अलावा जहां पर बुक्स भी हैं। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम खत्म हुए थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जिन लोगों ने अपने एग्जाम खत्म किए उनके बुक्स जहां पर काफी डोनेट की गई हैं और ये सभी डोनेट सामान जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। और इसके अलावा अब जहां और भी बहुत सारी बुक्स हैं जैसे जेई, नीट, सीरियस और SSB, सभी तरह की बुकें आपको देखने को जहां मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहां पर जितने भी फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो अफसर जवान, वो अपने बच्चों के खिलौने, किताबें, ये सब जहां पर डोनेट करते हैं।
1: हमारे फौजी भाई कई बार डिफिकल्ट टेरेन्स में पोस्टेड होते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल नहीं होती है। ऐसे में हमारी आर्मी ने सोलर एनर्जी का प्रयोग कर डेवलप किए हैं सोलर हट्स और सोलर सिक्योरिटी चेक पोस्ट, जिसमें सोलर पावर से चलने वाले कई तरह के डिवाइसेस प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए जानते हैं आर्मी के इस इनिशिएटिव के बारे में।
4: जब हम सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो सबको पता है सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम नेचुरल सनलाइट को इस्तेमाल करके सोलर हट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसको हमने बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में लगाया जिससे आने वाले कम्प्यूटर्स इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पूरा सोलर पावर्ड है जिसमें 4 फैंस की सुविधा दी गई है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जिंग पॉइंट और साथ ही साथ में अगर हम चाहे तो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की भी इसमें क्षमता है। सोलर हट तो आपने देख लिया, अभी आपके सामने दर्शाई गई है सोलर संतरी पोस्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं आर्मी देश के विभिन्न विभिन्न भागों में डिप्लॉयड है, जैसे जब भी आर्मी रिमोट एरिया में डिप्लॉयज होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने इस इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी चेक पोस्ट को बनाया गया है। जैसे इसके अंदर एक फैन की सुविधा दी गई है जो गर्म और ठंडी हवा भी देता है, साथ ही साथ में इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट की भी सुविधा दी गई है। ये एक मोबाइल संतरी पोस्ट है जिसको यहां से लेकर हम किसी

0: जगह पे डिप्लॉय कर सकते हैं।
1: इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी कर रही है। आज हमने ग्रीन इनिशिएटिव्स देखे जो इंडियन आर्मी ले रही है, किस तरीके से ई वेस्ट, वेट वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, हर तरीके से कैसे इंडियन आर्मी हमारे पर्यावरण को बचा रही है, फ्यूचर को बचा रही है। यहाँ पर हेडक्वार्टर कैंप आर्मी में आके हमने सब जाना किस तरीके से आर्मी ये बेहतरीन इनिशिएटिव्स कर रही है और लगातार हमारे फ्यूचर को सेफगार्ड करके सस्टेनेबल तरीके से बेहतर बना रही है। हम इस वक्त प्रोजेक्ट इंचार्ज मेजर अजीत मोरे के साथ हैं। सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप क्या कहेंगे, ये ग्रीन इनिशिएटिव्स कितने जरूरी हैं, किस तरीके से आर्मी पूरे देश के सामने इस प्रेरणा को रख रही है?
0: थैंक यू वैभव, मैं आपको एक कहना चाहूंगा, जो हमारी सोच है वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ तक ही सीमित नहीं है बल्कि पर्यावरण सुरक्षा में है। हम इसको कल्चरल चेंजेस लाना चाहते हैं। जिस प्रोडक्ट पे हम अभी बैठे हैं, ये अपसाइकल प्रोडक्ट, हमने एक चौथा पहलू भी इसमें जोड़ दिया है। साथ में आपको कहना चाहूंगा, जब वेस्ट मैनेजमेंट या पर्यावरण संरक्षण की बातें आती है तो इसमें तीन बेसिक ह्यूमन टच पॉइंट्स, एक है इंडिविजुअल, एक है कम्युनिटी और तीसरा है अथॉरिटी, जिसमें आप लोकल बॉडीज होगी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जब तक ये इंडिविजुअल के अंदर से नहीं आएगा, तब तक हमारा एरिया या हमारा पर्यावरण साफ नहीं होगा। ये आपको मैं जोर देकर कहना चाहूंगा, हमारे देश का हर एक सिटीजन, हर एक बंदा एक पर्यावरण योद्धा है और जब तक उसके अंदर से ये आएगा, तभी हम हमारे देश के या हमारे गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत अभियान को पूरा कर पाएंगे। तो कल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं, तो ये हमारे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत अभियान, मिशन लाइफ अभियान, इसको सफल बनाने के लिए हम सब देशवासी मिलकर इसको योगदान दें। जय हिंद।
2: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर सेना का संदेश है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आज का संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित था, जिसमें जीरो वेस्ट जोन से लेकर सोलराइजेशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से ई वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही ऑर्गेनिक वेस्ट का साइंटिफिक मैनेजमेंट और बायोगैस के अलावा हमने जाना कि एरोबिन कंपोस्टिंग क्या है और कैसे इससे खाद बनाई जाती है, और ये भी कि वॉल ऑफ काइंडनेस के माध्यम से पुराने कपड़े, जूते, किताबें, बच्चों के खिलौने डोनेट करके रीयूज कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जा रहा है। हम आशा करेंगे कि इंडियन आर्मी के अपनी धरती और प्रकृति के प्रति इस जज्बे से हम भी प्रेरणा लेकर अपना योगदान अवश्य देंगे और इसे बेहतर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आज के संदेश टू सोल्जर्स के इस स्पेशल शो की प्रस्तुतकर्ता थी राजलक्ष्मी और मेरे सहयोगी थे ओबी पर वैभव श्रीवास्तव, और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज। मेरा नाम है शाहिद। जय हिंद।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बज चुके हैं। अब युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम सुने, युववाणी।

फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। मिलकर लोग खुश होते हैं तो क्या हुआ दोस्तों, बिना मिले किसी को खुश कर जाना भी जिंदगी है। युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा वर्मा का नमस्कार। दोस्तों आज आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कार्यक्रम युवाणी के साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ फिल्मी गीत और साथ ही दोस्तों हम करेंगे

कुछ विषयों पर चर्चा। तो लीजिए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की बात से। श्रोताओं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका जीवन, उनकी भावनाएं, उनकी थॉट्स, उनके संघर्ष, सब कुछ समाज से जुड़ा होता है। और जब इन्हीं अनुभवों को शब्दों में ढाला जाता है तो जन्म लेता है साहित्य। इसीलिए कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। दोस्तों, दर्पण यानी एक कांच, वही दिखाता है जो हमारे सामने होता है। उसी तरह साहित्य भी समाज की वास्तविक तस्वीर हमारे सामने रखता है। उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, उसकी परंपराएं और समस्याएं और उसके सपने। दोस्तों, साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि यह समाज को दिशा देने वाला एक सशक्त माध्यम भी है। इतिहास उठाकर तो देखिए, हर युग का साहित्य उस समय के समाज की स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहे दुम्यान। दोस्तों, इन पंक्तियों में उस समय के समाज में फैले भेदभाव के खिलाफ एक सशक्त आवाज सुनाई देती है। इसी प्रकार तुलसीदास, सूरदास और मीरा जैसे कवियों ने भक्ति साहित्य के माध्यम से समाज में प्रेम और आस्था की भावना को मजबूत किया। साहित्य केवल समाज का प्रतिबिंब ही नहीं दिखाता दोस्तों, बल्कि समाज को सुधारने की शक्ति भी रखता है। एक अच्छी कहानी, एक अच्छी कविता या फिर एक अच्छा उपन्यास कई बार मनुष्य के सोचने का तरीका ही बदल देता है। हिंदी के महान लेखक प्रेमचंद को ही देख लीजिए दोस्तों, उनकी कहानियों और उपन्यासों में गरीबों की पीड़ा, किसानों की समस्याएं और समाज की सच्चाई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। साथियों, इतिहास अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए होता है। कोई भी सब्जेक्ट या फिर कुछ भी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उसके साहित्य को पढ़कर तो देखिए बहुत आनंद मिलेगा। प्रेमचंद जी की उनकी प्रसिद्ध कहानी पूस की रात में एक गरीब किसान की मजबूरी का ऐसा मार्मिक चित्र मिलता है, पाठक का हृदय पिघल जाता है। दोस्तों, इस तरह का साहित्य समाज को संवेदनशील बनाता है और हमें दूसरों के दुखों को समझने की प्रेरणा भी देता है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि एक अच्छी पुस्तक 100 अच्छे मित्रों के बराबर होती है। जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो हमें जीवन के विभिन्न अनुभवों से गुजरने का अवसर मिलता है। हम दूसरों के संघर्ष, उनकी खुशियों और उनकी भावना को महसूस कर पाते हैं। दोस्तों, साहित्यकार भी तो अपनी जो समस्याएं हैं, अपनी पीड़ाएं हैं, अपनी खुशियां हैं, उनको थॉट्स के माध्यम से, लाइनों के माध्यम से एक बुक में अपने विचारों को लेखन करता है, उजागर करता है, चाहे वह गरीबी हो, अशिक्षा हो, भ्रष्टाचार हो या फिर समाज के कुछ अन्य मुद्दे हो। इसीलिए भी तो कहा जाता है साहित्य समाज का आईना ही होता है। और यह आईना हमें हमारी सच्चाई भी दिखाता है और हमें बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, राजस्थानी में एक कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ऐसी कहावतें और लोक कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी हमें जीवन में महत्वपूर्ण संदेश दे जाती है। आज के युवाओं के लिए साहित्य का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में जब लोग तनाव और चिंता से घिर जाते हैं तो साहित्य उन्हें नई ऊर्जा और पॉजिटिव सोच देता है। दोस्तों, एक अच्छी किताब हमें निराशा से बाहर निकाल सकती है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है। साहित्य हमें सोचने, समझने और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। हमें बताता है कि जीवन केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी जीने का नाम जिंदगी है। तो श्रोताओं, आज की बात में हमने बात की साहित्य समाज का दर्पण, इस विषय पर हमें हमारे समाज की सच्चाई, हमारी कमियां और हमें बेहतर बनने की प्रेरणा देता है।

दोस्तों साहित्य से जुड़ना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, कहानियां सुननी चाहिए और जीवन के मूल्यों को अवश्य अपनाना चाहिए। अगर आपने कभी साहित्य पढ़ने का, साहित्य जानने का शौक नहीं रखा है तो आज से इसकी शुरुआत कीजिए और अच्छे के लिए बदलाव का अनुभव कीजिए। तो लीजिए चलते हैं कार्यक्रम के पहले गीत की ओर, और बातचीत फिर हम बाद में करेंगे।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर?
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय

0: बर्ताव करें आपका बचाव।
1: दोस्तों, कुछ दुआएं तस्वीरों से नहीं छुपकर किए गए अच्छे कर्मों से भी मिलती है। लीजिए, अब हम बात करेंगे जीवों पर दया। इस टॉपिक पर जो मानवता की आत्मा से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, दया केवल भावना नहीं बल्कि मनुष्य के श्रेष्ठ चरित्र की पहचान है। जब हम किसी असहाय जीव की सहायता करते हैं, किसी प्यासे पक्षी को पानी पिलाते हैं या फिर किसी घायल पशु की मदद करते हैं, तो हम केवल एक जीव की सहायता नहीं करते बल्कि मानवता का सम्मान करते हैं। दोस्तों, इस संसार में मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, कीट पतंगे और अन्य जीवों को भी जीने का अधिकार है। वे भी दर्द महसूस करते हैं, भूख प्यास सहन करते हैं, प्रेम और सुरक्षा चाहते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि किसी राष्ट्र की महान और नैतिक प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां पशुओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। और यह कथन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में जीवों के प्रति दयालु हैं। दोस्तों, इसी विषय पर एक छोटी सी कहानी को समझाते हैं। एक गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। गर्मी के दिन थे। उसने एक दिन देखा कि एक छोटी चिड़िया बार बार उसके घर के आंगन में आ रही है और बेचैन होकर इधर उधर उड़ रही है। तो रवि समझ गया कि चिड़िया प्यास से व्याकुल है और उसने तुरंत एक मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर छत पर रख दिया। दोस्तों, कुछ ही देर बाद चिड़िया ने पानी पिया और अपने साथ कई अन्य पक्षियों को भी लेकर आई। तो रवि की दादी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, आज तुमने एक जीव की प्यास बुझा जाकर बहुत बड़ा पुण्य कमाया है। उस दिन रवि को समझ आया कि दया दिखाने के लिए नहीं, बड़े साधनों की नहीं बल्कि बड़े दिल की जरूरत होती है। दया में कुछ भी दिखावा करने की जरूरत नहीं होती बल्कि आपकी एक अच्छी सोच और आपके कर्म ही काफी होते हैं। यदि हमारे पास धन है लेकिन दया नहीं तो धन व्यर्थ है। दोस्तों, हमारे पास शक्ति है लेकिन करुणा नहीं तो वो शक्ति भी निरर्थक है। भारतीय संस्कृति में जीवों पर दया को बहुत महत्व दिया गया है। भगवान महावीर का संदेश था, जियो और जीने दो। भगवान बुद्ध ने भी करुणा और अहिंसा को जीवन का आधार बताया। संत कबीर ने कहा, दया हृदय में रखिए क्योंकि निर्दय होए। दोस्तों, एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसने देखा कि कुछ पक्षी उसकी फसल के दाने चुग रहे हैं। पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया, फिर उसने सोचा, ये भी तो भगवान के बनाए हुए जीव ही हैं, इन्हें भी तो भोजन चाहिए, इन्हें भी तो भूख लगती होगी। उसने खेत के कोने में कुछ दाने अलग से डाल दिए। अब पक्षी वहीं जाकर दाना खाने लगे और किसान को फसल का नुकसान भी नहीं हुआ और साथियों पक्षियों का पेट भी भरने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि समझदारी और दया साथ साथ इजीली चल सकती है। दुर्भाग्य से आज अनेक पशु पक्षी मानव की लापरवाही और क्रूरता का शिकार भी हो रहे हैं। कभी उन्हें मनोरंजन का साधन बनाया जाता है तो कभी उन्हें भूखा प्यासा भी छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, गर्मी के दिनों में अनेक पक्षी केवल पानी की कमी के कारण ही मर जाते हैं। ऐसे समय में हमारा एक छोटा सा किया गया प्रयास भी किसी जीव का जीवन बचा सकता है। तो दोस्तों, जरूर इस कार्य को कीजिए बिना किसी दिखावे के। दूसरों के साथ व्यवहार चाहे जैसा हो, हमें अपने अच्छे गुण नहीं छोड़ने चाहिए। एक पेड़ दोस्तों हजारों पक्षियों का घर होता है, एक तालाब अनेक जीवों का जीवन होता है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण भी जीव दया का ही रूप होता है। दोस्तों, दया वह भाषा होती है जिसे बहरे सुन सकते हैं, अंधे देख सकते हैं।

एक कटोरा पानी भी किसी जीव के लिए जीवन दान बन सकता है, तो जरा सोचिए यह दान क्यों ना किया जाए। लीजिए, इसी विषय को यहीं समाप्त करते हैं। बातों का सिलसिला तो आगे भी जारी रहेगा। आइए उससे पहले आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

दोस्तों जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका हिसाब सिर्फ उस ऊपर वाले के पास हो। असली इंसानियत वही है जो बिना नाम और पहचान के किसी के काम आ जाए। कुछ दुआएं तस्वीरों से नहीं, छुपकर अच्छे कर्मों से किए गए कामों से मिलती है।

बढ़ाते हैं, इसी पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहां खुशियां अपने आप ही रास्ता ढूंढ लेती है। बुजुर्ग हमारे जीवन की वो छाया है जिनकी बदौलत हम जीवन की धूप में भी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन के सुनहरे वर्ष परिवार को संवारने में लगा दिए, तो आज वो जो हम हैं उसमें उनके त्याग, प्रेम और संघर्ष का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज के आधुनिक युग में, जब हम सभी लोग अपने बिजी शेड्यूल के कारण इतने व्यस्त हो रहे हैं, तब बुजुर्गों का सम्मान और उनकी देखभाल पहले से भी अधिक आवश्यक हो गई है। दोस्तों, बुजुर्ग केवल उम्र से बड़े नहीं होते, वे अनुभव के खजाने होते हैं। उन्होंने जीवन के अनेक रंग देखे होते हैं, सफलता और असफलता दोनों का अनुभव किया होता है। दोस्तों, जहां किताबें खत्म हो जाती है, वहां से बुजुर्गों का अनुभव शुरू होता है। उनकी सलाह हमें कई गलतियों से बचा सकती है। आज की युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी में आगे हो सकती है। हम मान सकते हैं कि टेक्नोलॉजी आज का युग है, लेकिन दोस्तों, जीवन के अनुभव बुजुर्गों का कोई मुकाबला नहीं है। जो अनुभव हम बुजुर्गों से प्राप्त कर सकते हैं, वो चाहे आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, कोई भी AI टूल यूज कर लीजिए, चाहे कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का आप यूज कर लीजिए, वो अनुभव हम प्राप्त नहीं कर सकते। जो उनके पास बैठकर उनके बातों को सुनकर प्राप्त कर सकते हैं। लीजिए, इसी विषय को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। एक गांव में एक अर्जुन नाम का लड़का रहता था। उसके दादाजी बहुत समझदार और सरल स्वभाव के थे। एक दिन अर्जुन ने देखा कि दादाजी अपनी पुरानी घड़ी को बहुत संभाल कर रखते हैं, तो उस बच्चे ने पूछ लिया, दादाजी ये पुरानी घड़ी इतनी खास क्यों है? दोस्तों, दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह घड़ी मुझे मेरे पिता ने दी थी। जब भी मैं इसे देखता हूँ, मुझे उनके संघर्ष और प्यार की याद आ जाती है। फिर उन्होंने कहा, बेटा, वस्तुएं पुरानी हो सकती है, लेकिन उनसे जुड़ी यादें कभी पुरानी नहीं होती। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में माता पिता और बुजुर्गों को विशेष स्थान दिया गया है। उसी दिन अर्जुन को समझ आया कि बुजुर्ग केवल लोग नहीं होते, वे परिवार का इतिहास होते हैं, परिवार की नींव होते हैं। हम भी तो कभी बुजुर्ग होंगे, हम भी तो यही एक्सेप्ट करेंगे कि हमें भी अपने आसपास के वातावरण में अपने परिवार के सदस्यों के पास बैठने का टाइम मिले। ना कोई महंगे गिफ्ट चाहिए होते हैं उनको, ना कोई मोबाइल फोन, ना कोई गाड़ी, ना कोई पैसा, सिर्फ उनके पास दो चार पल बिताए हुए, उनकी बातें सुनने हुए। बस यही तो वो हमसे चाहते हैं। हमारे यहाँ सुबह उठकर बड़ों के चरण स्पर्श करने की परंपरा रही। दोस्तों, यह केवल एक रीति नहीं बल्कि सम्मान और विनम्रता का प्रतीक है। हम किसी को जानबूझकर कह कहकर कोई भी काम नहीं करवा सकते। बड़ों का सम्मान करना संस्कारों की पहचान होती है। जिसे अपने बड़ों का आशीर्वाद मिल जाता है, उसे जीवन में सबसे बड़ी पूंजी मिल जाती है। एक युवक रोज बस से कॉलेज आता था। एक दिन बस में बहुत भीड़ थी, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति बस में चढ़े, उन्हें बैठने के लिए जगह भी नहीं मिली। दोस्तों, युवक तुरंत अपनी सीट से उठ गया और उसने बैठने की भी जगह दी, तो उन बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। युवक ने महसूस किया कि उस दिन उसे जो खुशी मिली, वह पुरस्कार से भी कम नहीं थी। देखिए श्रोताओं, सम्मान देने के लिए धन नहीं, केवल अच्छे संस्कार होने चाहिए। आप में संस्कार हैं, लेकिन आप उनको, अपने संस्कारों को व्यक्त कीजिए। आज समाज तेजी से फैल रहा है, परिवार

दोस्तों, जिंदगी की सबसे खूबसूरत विरासत संपत्ति नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में छोड़ी गई अच्छी यादें होती है। साथियों, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारे परिवार की नींव से जुड़ा हुआ विषय है बुजुर्गों का सम्मान। लीजिए, इसी विषय को हम आगे

यार छोटे होते जा रहे हैं, लोग अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि कई बार अपने ही घर के बुजुर्गों के लिए समय ही हम नहीं निकाल पाते। कई बुजुर्ग दिन भर किसी के दो मीठे शब्द सुनने के लिए तरस जाते हैं। बुजुर्गों के पास सबसे अधिक जरूरत दवाइयों की नहीं होती दोस्तों, अपनापन और सम्मान की होती है। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय उनके साथ बैठ जाए, उनकी बातें सुन ले, तो यही उनके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होता है। कभी ऐसा जरूर करके देखिए, अपने बुजुर्गों के पास दो चार पल बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उनसे कहिए कि आपने अपने बचपन में क्या किया था, कैसे किया था, अपने स्कूल में पढ़ाई की थी, या फिर अपने कामों के, अपने संघर्षों को कैसे अपनाते हुए आगे बढ़े थे। तो देखिए दोस्तों, आपको बहुत खुशी मिलेगी उनकी बातें सुनकर, और उनको भी खुशी मिलेगी कि हमारे पास, हमारे टाइम के लिए भी हमारे बच्चे अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं। हम छोटे छोटे प्रयास तो कर सकते हैं, रोज उस उनके साथ कुछ समय बिता सकते हैं, उनकी बातों को सुन सकते हैं, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रख सकते हैं। सिर्फ हमारा 1 या 2 मिनट ही उनके साथ अच्छे से व्यवहार किया गया, बात की गई ही बहुत खुशी देती है दोस्तों उनको। बुजुर्गों का सम्मान करना कर्तव्य नहीं होता, और यह कर्तव्य हर किसी को नहीं मिलता, यह तो सौभाग्य की बात होती है। जो अपने माता पिता का दिल जीत लेता है, वह जीवन की सबसे बड़ी सफलता प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, बुजुर्ग हमारे जीवन का अनमोल हिस्सा है, हमारी धरोहर है, और इस धरोहर को सहेज कर रखिए। जीवन में ऊंचा वही उठता है जो अपने बड़ों के आगे झुकना जानता है। तो दोस्तों, इसी विषय को यहीं समाप्त करते हैं। लीजिए, आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में अगला कार्यक्रम का गीत, और बातों का सिलसिला तो आगे भी चलेगा। फिर उसके बाद हम कुछ और नए विषय पर बातचीत करेंगे।

दोस्तों अभी आप सुन रहे हैं युवाणी कार्यक्रम कॉटन सिटी चैनल आकाशवाणी सूरतगढ़ से प्रसारित। मेगावोट 918 किलोहर्ट्ज़, DRM 909 किलोहर्ट्ज़, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर।

दोस्तों, नशा जीवन का नाश। नशा पल भर की खुशी देता है लेकिन जीवन भर का दुख दे जाता है। आज के समय में नशा युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुका है। तंबाकू, शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और अन्य मादक पदार्थ दोस्तों न केवल शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि व्यक्ति के सपनों, रिश्तों और भविष्य को भी बर्बाद कर देते हैं। लीजिए, इसी विषय पर हम अभी चर्चा करेंगे। एक गांव में राहुल नाम का एक होनहार युवक रहता था। पढ़ाई में भी अच्छा था, खेलों में भी अव्वल था और माता पिता की आंखों का तारा। कॉलेज जाने के बाद कुछ गलत मित्रों की संगति में पड़ गया। दोस्तों, कहने से किसी के उसने सिगरेट पीना शुरू की, फिर शराब और धीरे धीरे नशे की लत लग गई। राहुल ने सोचा कि कभी भी नशा छोड़ देगा, लेकिन धीरे धीरे वह उसका एडिक्ट बनता गया। पढ़ाई छूट गई, परिवार से दूरी बढ़ गई और स्वास्थ्य भी उसका खराब होने लगा। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम हमारे सपनों की पहचान थे, अब तुम्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया है। और माँ की आंसू में आंसू देखकर राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नशा मुक्ति केंद्र की सहायता ली, दृढ़ संकल्प के साथ इस एडिक्शन को छोड़ दिया। दोस्तों, आज वह बच्चा एक सफल शिक्षक और युवाओं को नशे से

दूर रहने की प्रेरणा देता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि नशे की शुरुआत भले ही मजाक में हो, लेकिन अंत अक्सर दुखद होता है। जो खुद पर विजय पा लेता है दोस्तों, वो किसी नशे की जरूरत ही नहीं पड़ती। माइंड सेट इज एवरीथिंग, यानी जिसने अपने माइंड पर काबू कर लिया हो, चाहे कैसी भी संगति हो, कितनी भी गलत संगति हो उसके आसपास, उसके ऊपर कभी हावी नहीं हो सकती। सच्ची खुशी में नशे में नहीं, अच्छे कर्मों, अच्छे विचारों, अच्छे थॉट्स में होती है। दोस्तों, नशे के दुष्परिणामों को देखें तो फेफड़ों की बीमारी, ट्यूमर का खतरा, हार्ट डिजीज, तनाव, अवसाद, क्रोध, चिड़चिड़ापन, अपने निर्णय खुद लेने की क्षमता में कमी आ जाती है। परिवार आर्थिक संकटों से जूझता चला जाता है, कर्ज और आर्थिक संकटों से घिरने लग जाता है। दोस्तों, एक बुजुर्ग व्यक्ति रोज अपने पोते को समझाते थे कि बुरी आदतों से दूर रहो बेटा। एक दिन उन्होंने पोते को एक छोटा पौधा उखाड़ने को कहा और उस पोते ने आसानी से उखाड़ दिया। फिर बड़ा पौधा उखाड़ने को कहा, थोड़ी मेहनत लगी। अंत में एक बड़े पेड़ को उखाड़ने को कहा तो वह बच्चा असफल रहा। बुजुर्ग बोले, बेटा बुरी आदतें भी ऐसे ही होती है। शुरुआत में छोड़ना आसान होता है, लेकिन समय बीतने पर वे जड़ पकड़ लेती है। नशे की राह अंधेरी है, हर खुशियों पर पहरेदारी है। जो इसमें कदम बढ़ाता है वह खुद अपना नुकसान कर जाता है। छोड़ो इसको, जीवन अपनाओ, सपनों को सच करके दिखाओ। हिम्मत है तो कुछ बन के दिखाओ, संघर्षों से लड़ के दिखाओ। माँ बाप का सम्मान बढ़ाओ, नशा मुक्त भारत बनाओ। श्रोताओं, युवा शक्ति किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि युवा ही नशे से दूर नहीं रहेंगे तो हमारे देश का भविष्य कैसे उज्जवल होगा? नशा समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि नई समस्याओं की शुरुआत होती है। जीवन दोस्तों बहुत अनमोल है, हमारे अगले पल में क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो जैसा है, जो भी जीवन है हमारा, जैसा भी है, उसको अपने अच्छे विचारों, अच्छे थॉट्स के माध्यम से स्पेंड कीजिए। हमारा पल भर का भी हमें भी नहीं पता होता, तो दूसरा कैसे बता सकता है? हम अब जो इस टाइम एट प्रेजेंट जो हैं, क्या पता अगले पल क्या हो जाए। तो जैसा है उसको अच्छे कामों में, अच्छी बातों में, दूसरों के साथ पॉजिटिविटी के साथ बिताएं और अच्छे के लिए बदलाव का अनुभव करें। हमने जाना कि नशा किस प्रकार व्यक्ति, परिवार, समाज को प्रभावित करता है। स्वयं भी नशे से दूर रहें, दूसरों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। तो दोस्तों, इसी विषय को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दूसरों जीवन में पॉजिटिव रहना बहुत बड़ी असफलताओं से सफलता पा लेना है। वह एक ऐसी शक्ति होता है जो न किसी को दिखाई देती है, न हमारी सकारात्मकता को हम छू सकते हैं, लेकिन जीवन की दिशा बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। और वो शक्ति होती है हमारी पॉजिटिव सोच। जैसी सोच वैसा ही जीवन। मनुष्य की सोच ही उसकी पर्सनैलिटी, उसके व्यवहार, उसके भविष्य का निर्माण करती है। यदि सोच पॉजिटिव हो तो कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है दोस्तों, और सोच नेगेटिव हो तो आसान रास्ते भी मुश्किल दिखाई देते हैं। सूरज हर सुबह संदेश देता है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, उजाला अवश्य आता है। दोस्तों, सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक सुंदर नजरिया होता है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के पास पास खेत थे। एक वर्ष बहुत कम वर्षा हुई। पहला किसान हर दिन शिकायत करता कि अब तो फसल बर्बाद हो जाएगी, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और दूसरा किसान कहता, जो होगा देखा जाएगा, मैं तो मेहनत करता रहूंगा। पहला किसान चिंता में बैठा रहता और दूसरा किसान अपने खेत में पानी बचाने के उपाय करता। कुछ महीनों बाद दोस्तों, पहले किसान की फसल लगभग नष्ट हो गई और दोस्तों दूसरे किसान की फसल ठीक ठाक निकल आई। तो लोगों ने पूछा, तुम्हें सफलता कैसे मिली? तो किसान मुस्कुराकर बोला, समस्या दोनों के सामने थी, फर्क से

सोच का था। श्रोताओं, सकारात्मक सोच समस्याओं को खत्म नहीं करती, बल्कि उनसे लड़ने की ताकत हमें दे जाती है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी कठिनाई का सामना करना ही पड़ता है। विद्यार्थी परीक्षा की चिंता करता है, किसान मौसम की, व्यापारी व्यापार की, और युवा अपने भविष्य की चिंता अक्सर करते हैं। सकारात्मक व्यक्ति हर समस्या को इजीली हैंडल कर लेता है। थॉमसन एडिसन, जो एक महान वैज्ञानिक, उन्होंने हजारों बार असफल होने के बाद कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने केवल हजारों ऐसे तरीके खोजे जो काम ही नहीं करते। और यही सकारात्मक सोच दोस्तों उन्हें महान बनाती है। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, दुनिया में कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। हर मुश्किल से सीखो कुछ, जीवन को बेहतर बनाओ, मंजिल उनको मिल जाती है जो चलते रहने का साहस रखते हैं। दोस्तों, दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। ऐसे में यदि हम किसी को मुस्कान, उसका हौसला, उसके अच्छे शब्द दे सकें, तो यह किसी अनमोल उपहार से कम नहीं। आपके शब्द किसी के चेहरे पर मुस्कान भी ला सकते हैं, और आप किसी का आत्मविश्वास भी बढ़ा सकते हैं। दूसरों का हौसला देना भी दोस्तों एक प्रकार की सेवा ही है। जरूरी नहीं किसी की सेवा करने के लिए पैसों की जरूरत हो। मुस्कान बांटने से कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती जाती है। जहां अच्छे विचार होते हैं, वहां अच्छे रिश्ते बनते हैं। खुद पॉजिटिव रहिए, दूसरों को भी पॉजिटिव रहने के लिए कहिए। आपके आसपास चाहे जो भी, जितने भी नेगेटिव लोग हों, जैसी भी नेगेटिव बातें भी करते हो, तो उनके साथ अच्छे से व्यवहार कीजिए, पॉजिटिव वाइब्स दीजिए, ताकि आपके पास भी लौटकर पॉजिटिव वाइब्रेशन आए। हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, किसी की गलती पर उनका मजाक न उड़ाएं, निराश व्यक्ति को हिम्मत दें, और दोस्तों छोटी छोटी सफलताओं की सराहना करें। एक अच्छा इंसान दोस्तों वह नहीं जो केवल खुद को खुश रखे, बल्कि दूसरों को खुश रहने की प्रेरणा दे। अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार, अच्छे संस्कार हमारी सबसे बड़ी दौलत होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान की पहचान उसके शब्दों और उसके व्यवहार से होती है। हम चाहे कितने सफल क्यों ना हो, कितने बड़े आदमी क्यों ना बन जाए, चाहे हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर कोई भी ऊंचा पद प्राप्त कर सकते, लेकिन यदि हमारे पास शब्द दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, तो हमारी सफलता अधूरी है। वही यदि हमारे शब्द किसी के माइंडसेट को पॉजिटिविटी दे जाते हैं, तो दोस्तों वह सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। हौसला देने वाले लोग हमेशा याद रखे जाते हैं। समस्या आने पर हमारा नज़रिया ही तय करता है कि हम मजबूत होंगे या फिर समस्याओं को देख के समस्याओं को अपने ऊपर हावी कर लेंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे सकारात्मकता पर। कोई भी प्रॉब्लम हो, घबराएं नहीं, समस्या पर समाधान दें, स्वयं पर विश्वास रखें। आत्मविश्वास दोस्तों वो शक्ति होता है जो असंभव को भी संभव बना देता है। समस्याएं कभी भी रास्ता रोकने नहीं आती, रास्ता दिखाने आती है। जहां उम्मीद होती है, वही तो दोस्तों रास्ते होते हैं। युवा पीढ़ी को तो खुश रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, बुजुर्गों के साथ, अपने माता पिता के साथ, परिवार के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, और दूसरों को पॉजिटिव वाइब्स देनी चाहिए, नेगेटिव वाइब्सों को दूर रखना चाहिए। इजीली आप अपनी मंजिल की ओर पहुंच सकते हैं। जीवन में समस्या आना सामान्य है, लेकिन समस्या के सामने हार मान लेना सामान्य नहीं होता। दोस्तों, हर नई सुबह नई उम्मीद लेकर आती

हमेशा हर परिस्थिति में धैर्य रखें, समस्या नहीं समाधान पर ध्यान दें। हर दिन किसी ना किसी बात के लिए हर किसी का धन्यवाद दें, चाहे कोई पत्थर ही क्यों ना हो। एक छोटा सा पत्थर भी आपकी समस्याओं को हैंडल कर सकता है, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। यदि परिस्थिति आपके अनुसार नहीं है तो स्वयं को परिस्थिति के अनुसार मजबूत बनाइए। सकारात्मक सोच वो शक्ति होती है जो मुश्किल है को मुमकिन है में बदल देती है। लीजिए, इसी विषय को यहीं समाप्त करते हैं।

लीजिए चलते हैं दोस्तों अब आज की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की ओर और जानेंगे आज के इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाओं को। 2003 में डोमिनिक गणराज्य की 18 वर्षीय सुंदरी एमिलिया वैगे आशी के दिन मिस यूनिवर्स बनी। 2006 में यूगोस्लाविया के पूर्ण गणराज्य मोंटेग्रो ने स्वतंत्रता की आज ही के दिन घोषणा की थी। दोस्तों 4 जून के दिन यानी आज ही के दिन ही 2008 में हरियाणा सरकार ने पारिवारिक पेंशन का लाभ 25 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को देने की घोषणा आज ही के दिन की थी। श्रोताओं ये तो था आज के प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को हमने जाना। लीजिए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का एक आखिरी गीत।

दोस्तों जीवन ऐसे जियो कि आपके जाने के बाद लोग आपकी बातें नहीं आपकी अच्छाइयों को याद करें। जिंदगी की किताब में सबसे खूबसूरत पन्ने वे होते हैं जिन पर किसी की मदद और दुआएं लिखी होती है। जब तक सांस है तब तक सीखना है, जब तक जीवन है तब तक मुस्कुराना है और दूसरों को मुस्कुराहट देनी है। लीजिए आज का युवाणी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की पूजा वर्मा को दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवावाणी। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के कॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बज चुके हैं। आइए अब सुने कार्यक्रम विवरण। पहले सुनिए इस सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे सरायकी की कड़ी संख्या 26। चौपाल कार्यक्रम होगा संध्या 7 बजे। इसमें आज जानकारी के विषय होंगे, ताप घात से स्वयं को बचाएं, नीम का जैविक खेती में महत्व, गर्मी में मुर्गियों की देखभाल, बाजार भाव और मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध रही तो आपको दी जाएगी। फिल्म संगीत आप सुनेंगे संध्या 7:45 पर। एक ही फिल्म से जानकारी और गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। कंट्री वाइड इनसाइट कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होगा रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम रात्रि 11 बजे तक अनुप्रसारित होगा। अभी आप सुन रहे थे इस सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। आइए अब सुने कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। सवेरे 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चिंतन सवेरे 6:45 पर होगा। इसमें आप जानकारी लेंगे मानवता विषय पर और वाचक स्वर होंगे स्वामी धर्मेंद्र नंद के। कार्यक्रम विवरण सवेरे 6:50 पर। खेतिया अवस्थे कार्यक्रम में आप कल सवेरे 7:10 पर जानकारी सुनेंगे, ओजोला का उत्पादन कैसे करें। और इसके अलावा आप सुनेंगे राजस्थानी लोक भजन। मानस कान की कड़ी संख्या 265 सुनवाई जाएगी सवेरे 7:20 पर। सवेरे 7:30 पर आप सुप्रभात कार्यक्रम में

आप इसी जानकारी सुनेंगे। बाल विवाह कानूनी अपराध, अच्छा संगीत, मानसिक आराम, महापुरुषों का जीवन में महत्व। इसके अलावा आप सुप्रभात कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता, पर्यावरण संरक्षण, वार्ताकार होंगे धर्मवीर सारस्वत। सुगम संगीत कार्यक्रम में चंद भजन सुने सवेरे 8:45 पर। मरुमंगल में मंथन डावरा की चंद राजस्थानी लोकगीत आपको सुनवाए जाएंगे सुबह 9:10 पर। डॉइट सॉन्ग पर आधारित फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। सवेरे 10 आप सुनेंगे विशेष भेंटवार्ता, विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर वार्ताकार डॉक्टर M.M. सक्सेना से नवीन सिसोदिया की बातचीत। समय एक बार फिर से नोट कीजिए, कल सवेरे 10:00। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गा मेरे मन का, ये थीम बेस पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। गीत मेला फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सवेरे 11:00 आकाशवाणी सूरतगढ़ से। आप कार्यक्रम विवरण दोपहर में सुनते हैं 12:00। सैनिकों के लिए कार्यक्रम होगा 12:05 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम होगा 12:30 पर। खेत कल्याण कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा बुवाई से पहले ध्यान रखने योग्य बातें 12:50 पर। दिन में 1:05 पर घर आंगन कार्यक्रम में जानकारी के विषय होंगे विश्व पर्यावरण दिवस, गर्मी में हल्के रंगों के कपड़े क्यों पहने, टिप्स में रेफ्रिजरेटर की दुर्गंध से छुटकारा कैसे पाएं, टी टाइम चाहत या जरूरत, ये विषय होंगे घर आंगन कार्यक्रम में। फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। दिन में 3:00 आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस आपको सुनवाई जाएगी, मगर इसमें केवल न्यूज ऑन AIR ऐप पर और FM पर चालू रहेगा प्रसारण, और मीडियम वेव पर रखरखाव के चलते ये प्रसारण बंद रहेगा। ये वाणी कार्यक्रम संध्या 6:00, इसमें आपसी बातचीत के विषय होंगे PM सूत्रीय फार्मूला, लू से बचे स्वस्थ रहें, राजस्थान लोकभाषा शिक्षा कौशल आज का इतिहास, और गीतारो गजरों कार्यक्रम चौपाल में संध्या 7:00 आप सुनेंगे, और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। रात्रि 9:30 पर हमारा पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम आप सुनेंगे मिट्टी दी खुशबू। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे, हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त संध्या की 6:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे सरायकी की कड़ी संख्या 26वीं।

0: इंडिया रेडियो दा सिराइकी प्रोग्राम है। हरजीत कौर हाजर है तुहाडे किते अज दा प्रोग्राम घिन के हाल चाल हिन तुहाडे? तुसा सारे ठीक ठाक हो सो ना? ते अज दे प्रोग्राम विच मैं घिन के आई हां सौम्या दुआ दी एक लोक कहानी कबीली ते वन सवन्ने सिराइकी गीत। प्रोग्राम दी शुरुआत करेंदे हां सौम्या दुआ दी कहानी नाल। कहानी दा नाम है कबीली।
1: एक डिहारे नंदू दा हां थिया शिव मंदिर विच मत्था टेकन दा। नंदू सोचन लगा कल्ले किथां वेसा, गुबली पौड़ियां किवें चढ़सी। गुबली नंदू दी त्रिमत है। गुबली बहु ठुल्ली है ना वांगू। वद भी नंदू सोचिया कोशिश करे सा प्यार ना लखे सा ता मन वेसी। नंदू ओ गुबली, गुबली लव यू डियर है जी। गुबली हिकदम आख्या लव यू डियर, अज की थी गया, की आखना चाहंदे हो, लव यू डियर अखेंदे पए हो। नंदू कुछ भी कहनी दिल करेंदा पए हई, छट तू मनसी कहनी। गुबली आखो मन वेसा तुसा को डर लगदा पिया है। ओ जोर दी हसी। गुबली दवरी सोटे नाल मिर्ची कुटेंदी पई हई। नंदू हां डर ता लगदा ही है, तू ठुल्ली है मैं कख जिया। गुबली हाथे सोटा चाके आखो केडी गल है, जेड़ा अख नहीं सकदे तुसी भी ना। नंदू कम ता छोड़ ता डिसे सा, सोटा थले तरक। गुबली आखो कम ना करा, एक केड़ी गल थई, सोटा हुण भी गुबली दे हथ विच है। नंदू अखेंदा प्या हां कम ना कर, रुकवंज तू ता सुन दी कहनी। गुबली किथा करेंदी पई हां,

छोड़ता दिता है। नंदू, सोटा ता थल्ले रखिया कहनी, गल्ला करेंदी है, तू मिर्चा कुटेंदी पई है, समझ आंदा है कुछ? ए सोटा चा के डे मरे सी ता? गुबली गुस्से विच, रख दिता, खुश थी वंजो, डिसो हुण की अखेंदे पए हो, मेकू देर थींदी पई है। नंदू, सुन सुन ना, ओ पहाड़ी वालिया मंदिर है, उथे वंजना है, सुपना आया हाई, हां करेंदा पिए है वंजा, तेकू भी गिन वंजा नाल। गुबली गुस्से नाल, कमले थी गए हो, मेकू भी कमली समझिया है, मेरा जिसम नहीं डिसदा, मैं 500 पौड़िया चढ़ सकदी हां। लव यू डियर अखेंदे हो, हुण समझी, तुसा चांदे हो हार्ट अटैक थी वे, पौड़िया तो डिग पोसी मरवे सी, मैं मरवे सा, दूजी गिणा सो, ठुल्ली आ इस वास्ते, वाह जी वाह। नंदू, ना गुबली ना, तू ता मेरी जान है, तू ता मेरी मान है, हुण चुप थी वंज, मेरा इवें कोई मदबल कहनी। गुबली, चुप थी वंजो, नैण मटक्का करण दा हां थींदा पिया है, वंजो कर घिनो। नंदू, ना ना, तेरे सिवा मेडा केर भी कहनी, जेड़ा तू मेडी सेवा कीती है, होर कौन करे सी? मिठी रानी, देख मंदिर वे सू मेकू तेरे नाल वंजना है, त्रिमत नाल होमना चाहिदा है, नाल नाल टुरसा तेरे, पोनिया भी नाल नाल चढ़सा, बा बा के आराम नाल वेसू, वेले सवेले निकलसू, शामी आवेसू। गुबली, बालका दा की थी सी? नंदू, दोनों घर होसन, जंदरा ला के वंजेसू, अंदर खेड़दे रासन, सवेले दोनों धा के तैयार थिए, जंदरा ला के होले होले टुरदे टुरदे, कदी बा के कदी टुरद के सफर तय किता, रस्ते विच जंगल पिया, गुबली थक के वतवा गई। नंदू, की थी गया? सुन, इथे बावन पानी पी घिन, पराठे खा घिन, त्रे लगी होसी पानी पी घिन। गुबली, त्रे ता लगी है, पानी डे वोचा, टुर टुर के हां लुड़दा वेंदा है, धुप भी तेज थींदी पई है, दोनों होले होले टुरदे रहे, दुपारी थी गई है, गुबली को धुप बहुत तेज लगन लगी, पसीना भी आंदा पिया है, सुनसान जंगल गुबली दी पाजेवा छम छम छम करेंदी पईन। गुबली, बहु तेज धूपे, मैं टुर कह नहीं सकदी, तुसा जिद करेंदे हो, की करा? नंदू, मेडी गुबली सर ते चुन्नी कर घिन, ओ देख बहु वड्डा बरगद दा दरख्त आंदा पिया है, उथा बा के रोटी खांसू, तुरदे तुरदे और बरगद दा दरख्त भी बहु दूर आई, बहु पुराना दरख्त आई, हजारा जड़ा। गुबली, इन्ना वड्डा दरख्त पहली बार देखिया है, दरख्त दे तले बा के छां विच ठंडी ठंडी हवा खाती। नंदू भी इन्ना वड्डा दरख्त देख के घूमदा रिया। गुबली, बा वंजो घूमदे रासो, घ्यू पाते पराठे ता चार कट घिनो, पानी भी डे वोचा। नंदू, ओ भगवान, घिन वठ, त्रे लगी आ पानी पी घिन। गुबली, तुसा भी घिन छोड़ो, घ्यू पाते पराठे नरम हिन। नंदू, तू खा घिन, हुड़े खासा। नंदू घूमदा पिया है, दरख्त को हिक चिट्टा मकोड़ा नंदू दे मोंडे ते ढह के बा गया। कुछ देर विच नंदू को लग्या, मेकू आवाज के डेंडा पिया है, कौन हो सी? इत्थां उत्थां देखिया, डिसदा कोई भी कहनी, आवाजा आंदी रही, मकोड़ा मोंडे ते हाई, डिसदा किवें? मकोड़ा होले होले गिची ते आ गया, ता भी नंदू को कहनी पता चलिया, आवाज कित्थों आंदी पई है, केर बुलाइंदा पिया है। चिट्टे मकोड़िया को बहु गुस्सा आ गया, सोचण लगा, एक केड़ा इंसान है जेड़ा मेरी गल दा जवाब भी नहीं देंदा। ओ टुर के नंदू दे कंधे उत्ते बा गया, उत्थू आवाजा दित्ती, वत पुछिया, कौन हो कौन हो? हुण नंदू को लग्या उत्ते टुरदा पिया है, ओ हथ नाल झटकिया ता मकोड़ा हथ दे विच आ गया। चिट्टा मकोड़ा जोर नाल अखेंदा है, सुनदे कहनी, बुलेंदा पिया हाम, पुछदा पिया हाम, कौन हो समझ नहीं आंदा? नंदू घबरा गया, एक ही मकोड़ा इंसान वंगा बुलेंदा पिया है? ओ डर गया, ह ह ह के बोलिया, ना ना, असा ता मंदिर वंजना है, इत्थे ठंडी छां देख के बागे, असा कुछ भी कह नहीं किता। चिट्टा मकोड़ा, कल्ले हो? नंदू, ना ना, नाल

गुबली है, चिट्टा मकोड़ा। एक गुबली कौन है? नंदू। मेडी त्रिमत, मेडी जान है, मेडा मान है। नंदू हैरान परेशान थी के जवाब देंदा पिया है। चिट्टा मकोड़ा, ये सारा इलाका साडा है, इत्था बावना नहीं चाहिदा। हुण तुसा गुबली दे नाल साडे जंगल दी राजा कबीली नाल मिलना पोसी। ओ जेड़ा कुछ अखे सी ओ करना पोसी। नंदू बहु डर गया, पसीने पसीने थी गया। ओ सोचिया बेबे तां बाऊ जी अखेंदे हाम जंगल दा राजा शेर होंदा है, ओ वड़ा तेज होंदा है। एक कबीली राजा कौन है? शेर को भी वड़ा जानवर हुण की थी सी, मेडी गुबली को भी ठुल्ला। गुबली, अजी सुनदे हो किथे गए? जिथां वंजो उथां तुसां गुम जांदे हो। परेशान थी गई हां, मैं ना होवां ता की थी सी इना दा। ओ लभदे लभदे नंदू दे कोल आ गई। नंदू मुंह ते उंगली रख के चुप रावण दा इशारा किता। गुबली तां समझी कहनी इशारा। नंदू दे हथ ते चिट्टा मकोड़ा आसर जमाया होया हाई, हथ कमदे पए सन। मकोड़ा आख्या, मैं ढा वेसा कमणा बण कर दे। नंदू मकोड़े को आख्या, चुप थी वंज। गुबली तेडी गल सुनी ता उंगली रख के तेरा पापड़ बना दे सी। चिट्टा मकोड़ा, चुप थी वंज। कख जिया, आपने को साम के रख, मैं को इत्थे केर भी कुछ भी नहीं कर सकदा। साड़ी फौज दिथी है कप के खावे सी, हुणे सरदार मिल सी तां ते को साड़ी ताकत दा पता चल सी। टुरु हुण सरदार जो भी करे सी। नंदू ही गल दिसो, तुसा चिट्टे मकोड़े हो, तुसा इंसाना वंगू किवें बुलेंदे हो। मकोड़ा, चुप थी वंज, शाणा ना बन। नाल नाल टुण, हूं तेडी गुबली है ना, हूं को भी आख। नंदू, गुबली सुन, मकोड़े दी फौज विच फस चुके हां, हुण तू भी नाल नाल टुर। गुबली, ओ समझी कहनी, की अखेंदे पए हो, कमली कमली गल्लां करेंदे पए हो। नंदू, चुप थी वंज, भगवान नाल नाल टुर। साड़े नाल नाल वंजन लगे, पिछू मकोड़िया दी फौज, दरक दे कोल पहाड़ी, सोना जिया झरना, सोनी सोनी पक्षिया दी आवाजा, सारिया कुछ सोना सोना। इंसान दी बू जंगल विच आंदे ही सारे एक पासे थी गए, पंखी तां मवेशी। चिट्टा मकोड़ा, सुनो हुण गुफा विच वंजड़ा है। नंदू, सुनो जी, घबरा के आखण लगा, साकू गलती थी गई, असा हुण इत्था ना आसू। नंदू को लगदा पिया हाई, जंगल दा राजा शेर होंदा है, ए सरदार होर वड्डी जानवर हो सी, हुण असा बचना कहनी। साडे गोश को चट चट के सारे पार्टी मणासन। नंदू गुबली दा हथ फड़ के रोवण लगा। गुबली, किथे वेंदे पए हो? ए मंदिर दी पहाड़ी के नी? नंदू, गुबली सच्ची अखेंदा पिया हां, अज जान बच वेसी तां जंगल विच कदई ना आसा। बेबे दी कसम खांदा हां, मेकू पता होंदा ए थीवड़ा है तां तेकू इत्थे कदी भी ना लांदा। तू ते मेरी जान है, मेडा माण है। दोनों गुफा विच गिए, सोने सोने नजारे, हां कम दा वेंदा है, मरण दा ख्याल आंदे ही पसीना आ गया। कुछ भी समझ केनी आंदा पिया है। गुफा बहु लंबी हाई, गुबली थक के त्रुट गई, त्रे लगी पई हाई, बावर दी जगह कहनी, पिछू मकोड़िया दी फौज। चिट्टा मकोड़ा, सुनो इत्थे बावंजो सरदार जेड़े वेले आसी ता असा खबर डेसू चा, असा कुछ खा के आंदे हां। गुबली, सुनो ए की थींदा पिया है? मंदिर कहनी। नंदू आख्या, असा जंगल विच फस चुके हां, एक सरदार है कबीली, ओ मकोणिया दी फौज आई, उना दी जंगल दी सरदार। जंगल दा सरदार ते शेर होंदा है, बेबे भाभी लाला भाभी अखेंदे हान, इथा कबीली सरदार है, शेर को भी वड्डा जानवर। हुण तू ता मैं मर वेसू, बचड़ा कहनी। साड़ी हुण अखीरी मुलाकात है, बालका दा की थी सी कुछ समझ कहनी आंदा पिया। गुबली दहाड़ा मार मार के रोवण लगी। कुछ देर बाद ढोल नगाड़िया दी आवाज आवण लगी, छोटी वड्डी

सुंदर कौर देकाए इस गीत तुम बाद प्रोग्राम दी आखरी पेशकशे महक मलिक दा गाया गीत कदी यार होन दा साडा कदी प्यार होन दा साडा। क्या बोल हिन ते क्या गायकी है, लो चस घिनो।

शादाब भी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम सैराइकी। आज आप इस कार्यक्रम की कड़ी संख्या 26वीं सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.72 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के कॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 6:30 होने वाले हैं। अब आप थोड़ी ही देर में आकाशवाणी जयपुर से सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

तीन सीटों पर चुनाव के लिए भाजपा के दो प्रत्याशियों का ऐलान, सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया। देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार आज नई दिल्ली में लॉन्च की गई और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, राज्य सरकार हर घर और खेत तक निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए लगातार प्रयास कर रही है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मसौदा जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी न्यायिक निर्णय केवल एआई की ओर से उपलब्ध कराए गए विश्लेषण और एल्गोरिथम निर्णय लेने पर आधारित नहीं हो सकता। मसौदे पर लोगों से इस महीने की 20 तारीख तक सुझाव मांगे गए हैं। इस ड्राफ्ट में एआई सहायता प्राप्त कार्यों, केस प्रबंधन, कानूनी अनुसंधान, दस्तावेज सारांश, अनुवाद और प्रतिलेखन की अनुमति दी गई है। हालांकि इसमें सभी अदालती कामकाज को मानव नियंत्रण में रखना अनिवार्य किया गया है। प्रस्तावित मसौदा एआई को निर्णय देने, सजा तय करने, गवाहों की विश्वसनीयता का आकलन करने और कानूनी परिणामों का निर्धारण करने से रोकता है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की तीन सीटों पर होने वाली राज्यसभा चुनाव के लिए अपने दो प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने आज राजस्थान सहित पांच राज्यों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। राज्य में तीन सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज की आज नई दिल्ली में मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा, निवेश, स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया गया। पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुदेंद्र टंडन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस बैठक में ऊर्जा क्षेत्र की साझेदारी करने पर विशेष रूप से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री श्री मोदी का कल गुजरात और

0: दमन दौरे का कार्यक्रम है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने और जनहित योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रौद्योगिकी ने अहम भूमिका निभाई है। एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में नई दिल्ली में आज आयोजित सुधार उत्सव में उन्होंने ये बात कही। श्री रिजिजू ने कहा कि तकनीक को अपनाने से मंत्रालयों को लाभार्थियों के जीवन में बड़े बदलाव लाने में मदद मिली है।
1: भारत के कोने में बैठने वाला एक महिला भी हमारा स्कीम का लाभ उठा करके जिंदगी में, तो ये कितना कि हमारा मिनिस्ट्री का स्कीम से लोगों का जिंदगी में बदलाव आया है। 2047 में हमको टारगेट सेट करना ही है, और जब हिंदुस्तान का आजादी का 100 साल पूरा होगा 2047 में कोई गरीब नहीं बचेगा हिंदुस्तान।
0: संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली शुरू की है। आयोग ने इसका सफल उपयोग हाल ही में हुई सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षाओं में किया है। यूपीएससी अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने बताया कि इसके तहत आवेदन भरते समय उम्मीदवार की जो फोटो अपलोड की जाती है उसका मिलान कर देखा जाता है कि वही अभ्यर्थी परीक्षा देने आया है। जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निलहानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 1982 में हथकड़ी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाले श्री निलहानी ने आग ही आग, शोला और शबनम, आंखें, दिल तेरा दीवाना और तलाश सहित कई प्रसिद्ध फिल्में बनाई। वे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। देश की पहली फ्लैक्स फ्यूल यात्री कार आज लॉन्च की गई। फ्लैक्स फ्यूल ऐसे वाहन होते हैं जो पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये 20% से लेकर 100% एथेनॉल तक के ईंधन का उपयोग कर सकते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में इसकी लॉन्चिंग की। इस मौके पर श्री पुरी ने फ्लैक्स फ्यूल तकनीक को देश में ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का नया अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि इसका बड़े पैमाने में इस्तेमाल होने से एथेनॉल आधारित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। श्री गडकरी ने कहा कि फ्लैक्स फ्यूल वाहन प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात की निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के तहत बिजली उत्पादन निगमों की ओर से किए गए बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बिजली उत्पादन, आपूर्ति व्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। श्री नागर ने किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के प्रयासों के बारे में भी बताया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर घर हर खेत तक निर्बाध बिजली पूर्ति करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है।
2: जयपुर में रूफ टॉप कई जगह लग रहा है, लेकिन वो दिन के समय जो रूफ टॉप लग रहा है वो वापस हमें ट्रांसमिशन में आता है। ऐसे कई हमने जीएसएस चिन्हित किए हैं जहां हमारे पास वो ट्रांसमिशन में वापस आता है, तो वही उसी जीएसएस पर हम बैटरी स्टोरेज लगाएं और उसको वही स्टोर करें, वही उसको उपयोग करें, ताकि वो ट्रांसमिशन पर हमारा जब पीक आवर्स के टाइम लोड पड़ता है जो वो ना पड़े और वो वहीं डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से वहीं पर ही का उपयोग हो जाए, इस पर निरंतर हम काम कर रहे हैं।
0: देश में सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के निर्धारित लक्ष्य का 80% काम अब तक पूरा हो चुका है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पर बताया कि देश भर में 53,000 से अधिक सरकारी भवनों पर कुल 855 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा प्रणालियां लगाई जा चुकी हैं। प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में इस संबंध में बैठक ली। इस दौरान विभिन्न शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के लिए डिपो, चार्जिंग स्टेशन बनाने और अन्य कार्यों

0: की समीक्षा की गई। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत राजस्थान को 1150 बसें आवंटित की गई हैं। ये जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, अलवर और कोटा सहित 8 शहरों में चलाई जाएंगी। इन बसों का ट्रायल हो चुका है। इसके लिए आवश्यक सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भाजपा की ओर से राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। विश्वास से विकास, सेवा से सुशासन नाम का ये जनसंपर्क अभियान 21 जून तक चलेगा। कार्यक्रम की सहसंयोजक अपूर्वा सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि इस दौरान विभिन्न गतिविधियां होंगी।
1: विश्व पर्यावरण दिवस के दिन एक पेड़ माँ के नाम की मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें विभिन्न बूथों पर गांवों में, ढाणियों में समस्त जन को जागरूक भी किया जाएगा पर्यावरण के प्रति, और पर्यावरण के आगे कैसे संरक्षित करना है इसका पाठ भी उनको पढ़ाया जाएगा। 5 जून के बाद में विशेष संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता के कैंप, वृक्षारोपण के कैंप और इन 12 वर्षों में जो प्रगति के पथ निर्मित हुए हैं वहां पे भ्रमण करने का, उन प्रगति के जो इमारतें हैं वहां पर जाकर विकास की सूचक से रूबरू होने का मौका मिलेगा।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी ने लोगों से पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया है। विश्व पर्यावरण दिवस से पूर्व राज्यपाल ने अपने संदेश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत छायादार पौधे लगाने और उनकी उचित देखभाल करने की अपील की है। वहीं पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने और नागरिकों को पौधरोपण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कल से हरियालो राजस्थान 2026 अभियान की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री जनलाल शर्मा जयपुर से इसकी शुरुआत करेंगे। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में होने वाले इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम लोगों की भी सहभागिता रहेगी। प्रदेश भर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम रखे गए हैं। इस मौके पर पाली के जवाई क्षेत्र में विशेष स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाएगा। वहीं ब्यावर के टूरिस्ट विलेज देवमाली गांव में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून का आज देश में आगमन हो गया है। केरलम से मानसून ने प्रवेश किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अगले 2-3 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नजर आ रही हैं। इससे राजस्थान में भी आंधी बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है। इस बीच राज्य में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इससे उदयपुर जिले में दोपहर बाद बरसात हुई। वहीं डूंगरपुर के साबला में ओले भी गिरे। चूरू जिले के बीनासर, सातड़ा और सहला सहित कई गांवों में तेज अंधड़ के बाद अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट बताया है। वहीं जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही को छोड़कर बाकी स्थानों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से कुछ भागों में अगले 3 दिनों तक तेज आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। वहीं कुछ हिस्सों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने की आशंका है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2025 बैच के 7 प्रशिक्षु अधिकारियों को सहायक कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार जयपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर जिलों में इन्हें पदस्थ किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मसौदा जारी किया। कोई भी न्यायिक निर्णय केवल एआई की ओर से उपलब्ध करवाए गए विश्लेषण पर आधारित नहीं होगा। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए भाजपा के 2 प्रत्याशियों का ऐलान। सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया। देश की पहली फ्लैक्स फ्यूल कार आज नई दिल्ली में लॉन्च की गई। और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, राज्य सरकार हर घर और खेत तक निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से कोटा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख आशीष मेहता ने तैयार किया है। जिले में इन दिनों मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जहां एक ओर पूरे महीने में भीषण गर्मी और हीट वेव का दौर बना रहा, वहीं महीने के आखिरी दिनों में आंधी और बारिश की गतिविधियों ने जिले वासियों को प्रभावित किया। इसी सिलसिले के साथ

0: जून महीने की भी शुरुआत हुई। इससे लोगों को प्रचंड गर्मी से तो निजात मिली, लेकिन अभी भी दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। अस्पतालों में हीट वेव से प्रभावित लोगों के उपचार के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। बदलते मौसम के बीच जिले में इन दिनों जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकानों की गिनती और सूचीकरण का काम किया जा रहा है। प्रगणक घर घर जाकर डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। इस दौरान वे लोगों से 33 सवालों के जवाब पूछकर सूचना एकत्रित कर रहे हैं। जनगणना निदेशक विष्णु चरण मलिक बीते दिनों कोटा आए और उन्होंने जनगणना कार्य की प्रगति के संबंध में बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सभी जानकारियां वास्तविक स्थिति के अनुरूप ही दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही डेटा की गुणवत्ता, सत्यापन प्रक्रिया और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की गई। जिले में इन दिनों भूजल संरक्षण और वर्षा जल संग्रहण को लेकर वंदे गंगाजल संरक्षण जनअभियान चलाया जा रहा है। अभियान की शुरुआत पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने चंबल रिवर फ्रंट से की। यह अभियान कल संपन्न होगा। 15 दिन के इस अभियान के दौरान जल संरक्षण और साफ सफाई से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। इनमें कलश यात्रा, सरोवर और पीपल पूजन, ग्राम सभाओं का आयोजन, जल संरचनाओं की सफाई, प्रभात फेरियां, साइकिल रैली जैसी गतिविधियां शामिल हैं। 3 जून को ऊर्जा विभाग द्वारा जिले भर में ट्रांसफॉर्मर्स के आसपास साफ सफाई की गई। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने दिघोद के डूंगरजय स्थित कमल सरोवर में ग्रामीणों और अधिकारियों के साथ श्रमदान करते हुए घाटों की सफाई की। कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया। इसमें जिले में 100 से अधिक किसानों और कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया। जिले की महिला किसान वंदना गौड़ और किसान राहुल नागर को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जिला स्तरीय पुरस्कार दिया गया। कोटा का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अगले वर्ष अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा। दिसंबर से नियमित व्यावसायिक उड़ानें शुरू होंगी। लोकसभा अध्यक्ष ने एयरपोर्ट परियोजना की प्रगति को लेकर नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। संभागीय आयुक्त तथा कोटा और बूंदी के जिला कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बीते महीने जिले को कई विकास कार्यों की सौगात मिली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में लाड़पुरा विधानसभा क्षेत्र की मानस गांव, रंगपुर, किशनपुरा, तकिया, ताथेड़, आरामपुरा, खेड़ा रामपुर, भीमपुर, जाखोड़ा, अरंडखेड़ा, अरलिया, जागीर, गंदीफली और गोदलिया हीड़ी ग्राम पंचायतों में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन पर 18,29,00,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पिछले दिनों सांगोद स्थित अपने निजी आवास पर ईआरसीपी और बिजली विभाग से जुड़े उच्च अधिकारियों और अभियंताओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में परवन वृहद सिंचाई परियोजना की प्रगति, बिजली कनेक्शन और क्षेत्र की विभिन्न लिफ्ट परियोजनाओं पर चर्चा की गई। ऊर्जा मंत्री ने धुलेट टू लिफ्ट परियोजना से तत्काल कनेक्शन जारी करने को कहा, ताकि कनवत क्षेत्र के 14 गांवों को जल्द से जल्द पानी मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने देवली लिफ्ट परियोजना से भी शीघ्र पानी देने के निर्देश दिए। श्री नागर ने मंडिता, कुंदनपुर, विनोद खुर्द और मंडाप गांव का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया और क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने बीते दिनों युवा आवास प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक की। युवा मामले और खेल मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार गठित की गई इस कमेटी के साथ कोटा में बन रहे यूथ हॉस्टल के प्रबंधन, रख रखाव सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य जल्द पूरा करने और स्टाफ नियुक्त करने के निर्देश दिए। कोटा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर रूपेश है, प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। सर्वोच्च न्यायालय अदालता माए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रा उपयोग रो मसौदो जारी करियो। कोई भी न्यायिक फैसलो केवल एआई री कानू मुहैया कराया गया, विश्लेषण माथे आधारित नी वेला। राजस्थान सू राज्यसभा री 3 सीटा माथे चुनाव खातर भाजपा रा 2 प्रत्याशी ऐलान।

0: सतीश पूनिया और अलका गुजर ने उम्मीदवार बनाए गयो। देश री पहली फ्लेक्स फ्यूल कार आज नई दिल्ली में लॉन्च करी गई और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कया राज्य सरकार हर घर और खेत में लगातार बिजली पुगा बाखातर कोशिश कर रही है। समाचार आ रहे सागे मैं रचना पारिक और अब है समाचार विगतवार। सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ अदालत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काम में लेवन रो मसौदो जारी करियो। इनमें साफ किनो है कि कोई भी न्यायिक फैसलो केवल एआई री कानून मुहैया कराया गया विश्लेषण और एल्गोरिदम फैसला लेबा माथे आधारित नी सकेला। मसौदा माथे लोगानू इन मीनारी 20 तारीख तय सुझाव मांगा गया है। इन ड्राफ्ट में एआई सहायता प्राप्त काम, केस प्रबंधन, कानूनी अनुसंधान, दस्तावेज सारांश, अनुवाद और प्रतिलेखन री मंजूरी दी गई है। हालांकि इन माय सगड़ा अदालती कामकाज ने मानव नियंत्रण माय राखनो जरूरी करियो गयो है। प्रस्तावित मसौदो एआई ने फैसला लेबा, सजा तय करबा, गवाहारी विश्वसनीयता को आंकलन करबा और कानूनी नतीजा तय करबा सु रोके है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की तीन सीटा माथे होबा वाला राज्यसभा चुनाव खातर आपरा दो प्रत्याशियों रो ऐलान करियो है। पार्टी सतीश पूनिया और अलका गुजर ने आपरो उम्मीदवार बनायो है। भाजपा रा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह आज राजस्थान समेत पांच राज्यां खातर आपरा प्रत्याशियों रो नाम ऐलान करियो है। राज्य में तीन सीटा माथे राज्यसभा चुनाव वेला इन खातर 8 जून तय नामांकन दाखिल करया जा सके है। 18 जून ने वोट पड़ेला और 19 दिन नतीजा ऐलान करया जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला री कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज री आज नई दिल्ली माए मुलाकात भी। इन दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा, निवेश, स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल समेत दूजा हलका माए इमदाद बढ़ाबारी संभावना माथे विचार करियो गयो। पूर्वी हलकारा सचिव रुद्रेंद्र टंडन मीडिया सु बातचीत माए बताया कि इन बैठक माए ऊर्जा हलकारी साझेदारी करबा माथे खास रूपू चर्चा करी गई। प्रधानमंत्री श्री मोदी रो काल गुजरात और दमन दौरा रो कार्यक्रम है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू कया के शासन व्यवस्था ने चोखो बनाबा और जनहित योजनावा ने चलाबा माए प्रौद्योगिकी महती भूमिका निभाई है। एनडीए सरकार रा 12 बरस पूरा होबारे मौके नई दिल्ली माए आज राख्या सुधार उत्सव माए या बात की गई। श्री रिजिजू कया के तकनीक ने काम में लेबा सु मंत्रालय रा लाभार्थियों रा जीवन माए बड़ो बदलाव लियाबा माए इमदाद मिली है।
1: भारत के कोने में बैठने वाला एक महिला भी हमारा स्कीम का लाभ उठा करके जिंदगी में, तो ये कितना कि हमारा मिनिस्ट्री का स्कीम से लोगों का जिंदगी में बदलाव आया है। 2047 में हमको टारगेट सेट करना ही है और जब हिंदुस्तान का आजादी का 100 साल पूरा होगा 2047 में कोई गरीब नहीं बचेगा हिंदुस्तान।
0: संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी परीक्षा प्रक्रिया ने और सुरक्षित और साफ गोई बनाबा खातर फेंस ऑथेंटिफिकेशन प्रणाली शुरू करी गई है। आयोग इनरो सफल इस्तेमाल हाल ही मायवी सिविल सेवा और भारतीय वन सेवारी शुरुआती परीक्षा माय करियो। यूपीएससी अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार बताया रे इनरे तहत आवेदक भर्ती टेम उम्मीदवारी जो फोटो अपलोड करी जावे है उनरो मिलान कर देखियो जावे है के उन्हीं अभ्यर्थी परीक्षा देबा आयो है। जानिया मानिया फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी आज मुंबई माए देवलोक वे गया। वे 76 बरस रहा। बरस 1982 माए हथकड़ी फिल्मों आपरा कामरी शुरुआत करबा वाला श्री निहलानी आगिया, शोला और शबनम, आंखें, दिल तेरा दीवाना और तलाश समेत कई नामजोग फिल्मा बनाई। वे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड रा अध्यक्ष भी रिया। ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। देश री पहली फ्लेक्स फ्यूल यात

0: यात्री कार आज लॉन्च करी गई फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल रामेल सु चल सके है ये 20 लेयर 100% एथेनॉल ने ईंधन रूप में कम माय ले सके है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी नई दिल्ली में एंड्री लॉन्चिंग करी राजस्थान ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनावारा लगस रहते हैं बिजली उत्पादन निगम रिकानियों करिया गया चोखा प्रदर्शन ने लेर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आज जयपुर में प्रेस वार्ता करी इन दौरान वना प्रदेश में बिजली उत्पादन आपूर्ति व्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनावा माते विस्तारों चर्चा करी श्री नागर किसाना ने दिन में बिजली मुहैया कराबा खातर आबाद की ऊर्जा मंत्री कया के राज्य सरकार हर घर हर खेत ताई लगातार बिजली पुगावा खातर कोशिश कर रही है
1: जयपुर में रूफ टॉप कई जगह लग रहा है लेकिन वो दिन के समय जो रूफ टॉप लग रहा है वो वापस हमें ट्रांसमिशन में आता है ऐसे कई हमने जीएसएस चिन्हित किए हैं जहां हमारे पास वो ट्रांसमिशन में वापस आता है तो वही उसी जीएसएस पर हम बैटरी स्टोरेज लगाएं और उसको वहीं स्टोर करें वहीं उसको उपयोग करें ताकि वो ट्रांसमिशन पर हमारा जब पीक आवर्स के टाइम लोड पड़ता है जो वो ना पड़े और वो वहीं डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से वहीं पर ही का उपयोग हो जाए इस पर निरंतर हम काम कर रहे हैं
0: देश में सरकारी भवना माथे सौर ऊर्जा संयंत्र लगा बारा तय लगसरो 80% काम हाल तई पूरो वेगियो है केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी आज न्यारा न्यारा मंत्रालय और संस्थानारा एहलकाना सागे बैठक करी श्री जोशी सोशल मीडिया माथे बताया कि देश भर में 53,000 सरकारी भवना माथे कुल 855 मेगावाट बूतारी सौर ऊर्जा प्रणालियां लगाई जा चुकी है प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक बसा चलाबा खातर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और जरूरी व्यवस्थावा पक्की करबारो काम चल रियो है मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में इन बाबत बैठक ली इन दौरान न्यारा न्यारा शहरा में इलेक्ट्रिक बसा खातर डिपो चार्जिंग स्टेशन बनाबा और दूजा कामारी समीक्षा करी गई बतायो जावे है कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना रे तहत राजस्थान ने 1150 बसा आवंटित करी गई है ये जयपुर जोधपुर बीकानेर अजमेर अलवर और कोटा समेत 8 शहरा माए चलाई जावेला इन बसारो ट्रायल वे चुकियो है इन खातर जरूरी सुविधा माथे तेजियों विकास काम करियो जारियो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाली केंद्र सरकार 12 बरस की उपलब्धियां ने जन जन ताई पुगाबा खातर प्रदेश भाजपा रीकानियों राज्यव्यापी अभियान चलायो जावेला विश्वास सु विकास सेवा सु सुशासन नाम रोयो जनसंपर्क अभियान 21 जून तई चालेला कार्यक्रम री सह संयोजक अपूर्वा सिंह आकाशवाणी ने बतायो के इन दौरान न्यारी न्यारी गतिविधियां वेला
2: विश्व पर्यावरण दिवस के दिन एक पेड़ माँ के नाम की मुहिम चलाई जाएगी जिसमें विभिन्न बूथों पर गांवों में ढाणियों में समस्त जन को जागरूक भी किया जाएगा पर्यावरण के प्रति और पर्यावरण के आगे कैसे संरक्षित करना है इसका पाठ भी उनको पढ़ाया जाएगा 5 जून के बाद में विशेष संपर्क अभियान चलाया जाएगा जिसमें विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता के कैंप वृक्षारोपण के कैंप और इन 12 वर्षों में जो प्रगति के पथ निर्मित हुए हैं वहां पे भ्रमण करने का उन प्रगति के जो इमारतें हैं वहां पर जाकर विकास की सूचक से रूबरू होने का मौका मिलेगा
0: राज्यपाल हरिभाव बागड़े लोगों पर्यावरण मुजब जीवन शैली बनाबारी अरज करी विश्व पर्यावरण दिवसों पहली राज्यपाल आपरा संदेश माए एक पेड़ माँ के नाम अभियान रे तहत छायादार पौधा लगाबा और वारी चोखी देखभाल कर बारी अरज करी अठीने पर्यावरण संरक्षण ने जन आंदोलन बनाबा और नागरिका ने पौधा लगाबा खातर जाग जगा बारा लगसू कालू हरियालू राजस्थान 2026 अभियान री शुरुआत वेरी है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पूर्व इंडी शुरुआत करेला विश्ववाणी की वृक्ष उद्यान माए होबा वाला इन कार्यक्रम माए जन प्रतिनिधि पढ़निया स्वयंसेवी संस्थावां और आम लोग मौजूद रहवेला प्रदेश भर माए विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके कई कार्यक्रम रखा गया इन मौके पालीरा जवाई हल्का माए खास स्वच्छता कार्यक्रम चलायो जावेला इन मौके ब्यावरा टूरिस्ट विलेज देवमाली मा सिंगल यूज प्लास्टिक रे खिलाफ जागरूकता अभियान चलायो जावेला दक्षिण पश्चिमी मानसून आज केरलम सो देश में आ गयो है भारत रा मौसम विज्ञान महकमो ने पुष्टि करी है के आवता 2-3 दिन में मानसून आगे बढ़ सके है इन सु राजस्थान में भी आंधी बारिश होबारो अंदाजो है इन बीच राज्य में आज

0: नयो पश्चिम में विक्षोभ सक्रिय वियो है इंड उदयपुर जिला में दोपहर पाछे मे बरसो वठिने डूंगरपुर रा सांबला माए ओला पड़िया चूरू जिला रा बीनासर सातड़ा और सहला समेत कई गांव में तेज अंधड़ पाछे चोखो मे बरसो मौसम महकमो आज नौ जिला माए आंधी बारिश रो ऑरेंज अलर्ट बतायो वठिने जैसलमेर बाड़मेर जालोर और सिरोही ने छोड़कर बाकी ठोड़ा माथे येलो अलर्ट जारी करियो गयो है। विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप रा पहला संस्करण शुरुआत आज अहमदाबाद में भी पांच दिन रा इन आयोजन में देश दुनिया रा करीब 500 एथलीट भाग ले रिया है। बाड़मेर में आज उत्तर पश्चिमी रेलवे रा पहला वाटर रिसाइकलिंग संयंत्र उद्घाटन करियो गयो। उत्तर पश्चिमी रेलवे रा महाप्रबंधक अमिताभ रेलवे स्टेशन माथे इनरी शुरुआत करी करीब 2.5 करोड़ रुपया री लागत बढ़िया इन कारखाना रेलवे लीलन री धुलाई माए काम माए लियो गयो पानी दोबारा काम माए लियो जा सकेला। और अब है आखिर माए खास खबर एक कर फेरू। सर्वोच्च न्यायालय अदालत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रा उपयोग रो मसौदो जारी करियो। कोई भी न्यायिक फैसलो केवल एआई री कानी मुहैया कराया गया विश्लेषण माथे आधारित नी वेला। राजस्थान राज्यसभा री तीन सीटा माथे चुनाव खातर भाजपा रा दो प्रत्याशी ऐलान सतीश पुनिया और अलका गुर्जर ने उम्मीदवार बनायो गयो। देश री पहली फ्लेक्स फ्यूल कार आज नवी दिल्ली माए लॉन्च करी गई और ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर कया राज्य सरकार हर घर और खेत ताई लगातार बिजली पुगावा खातर कोशिश करी है। इंडस आगे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भी हो माँ को आगलो समाचार बुलेटिन कल सुमार है 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, एफएम 100.1 मेगा हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 7 बज चुके हैं। अब ग्रामीण परिवार अपना दैनिक कार्यक्रम सुने चौपाल।

चौपाल सुनिए सगल्या श्रोतावाने, सुनील बायगीवरशी मोकळी मोकळी, राम राम। श्रोताओं, आजकल तापमान है जिको दिनों दिन बद तो जान लाग रही है, और ईशु के आपने तापघात यानी लू लगन की बहुत ही ज़्यादा संभावना रे है, जबकि आपने खतर के जानलेवा भी हो सके। शरीर को तापमान जे ज़्यादा बढ़ जाए तो अपन के लू लाग जाए, एर भीषण गर्मी के मौसम में खुद ने सुरक्षित रखना बहुत ही जरूरी है। तो इन सारू अपने कई जगह उपाय है वे करना चाहिए। एक तो कि है जहाँ पानी है तो पानी बार बार पीना चाहिए, एर प्यास लागन को इंतजार न करना चाहिए। दिन में थोड़ो थोड़ो किए पानी अपने पीन तो रहना चाहिए। हरी पानी में आपा किए नींबू पानी है, ORS को जो आजकल पैकेट मिले अपने सरकारी अस्पतालों में फ्री मिले, नारियल को पानी है, छा है, लस्सी है, और राबड़ी जो कि अपनी लोकप्रिय पेय पदार्थ है अपनो, इनको सेवन अपन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और शरीर में नमक और जो खनिज लवण है अंग संतुलन बना के रखना चाहिए। ज़्यादा चाय है, काफ़ी है, शराब है, या ज़्यादा जका खाण डाला पेय पदार्थ है आंसू दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो नशो की है कि तरीके कोई नशो है तो अपन भी इंसू बचना चाहिए। और चाह रहे कि ज़्यादा शरीर को तापमान बिगाड़े तो इंसू अपन परहेज रखना चाहिए। और अंग जो

आपां सेवन करां तो अपने शरीर में की है पानी की कमी आ जाए, जिकने डिहाइड्रेट बोले। और स्रोतों आपन की है जो आपनों पहनाओ है नहीं, इन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हल्का दका सूती कपड़ा है, खद्दर का जी आवे या और दूसरा होवे वे पहनना चाहिए, जका ढीला होवे हल्के रंग का होवे। ज़्यादा जका तड़क भड़काल होवे या काले रंग होवे तो काले रंगों जो कपड़ो है वो की है गर्मी ने सोसे और आपकी जो शरीर की गर्मी है बा बाहर कौन निकल दिए। तो हमेशा ही हल्के रंग आपने कपड़ा पहनना चाहिए। और जो आज सिंथेटिक कपड़ा चल है बहुत कि आपने हवा कौन लग गए और ना ही पसीनों सुख है तो आज आपने बचना चाहिए। धूप से हमेशा ही आपने सुरक्षा रखनी चाहिए। तावड़े में पहली बात तो है निकलना नहीं चाहिए, और जो निकला तो भाई सिर ने ढक गए जिया टोपी है, दुपट्टो है, छतरी है। और आजकल तो क्या है धूप वाला चश्मा चल रहा है, जखा अपन आँखा में गर्मी कौन लगन दिए तो ईशा आंग भी आप प्रयोग कर सका। टेम को ध्यान रखना चाहिए, सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच में जब आपने तावड़ो सारों ज़्यादा तेज हुए तो इन टेम में आपने अनावश्यक रूप यानी बिना मतलब घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अर्थ का काम काज ही हुए लोग बागबान तो किए विशेष रूप में ध्यान रखना चाहिए। सिर डगे निकलना चाहिए और निर्णय काल जे कद ही नहीं निकले कि इनकी खागे निकले। जहाँ कसरत को काम है, कोई भारी काम है तो बिना कि अपने सुबह जल्दी उठ गए टेम शुरू करना चाहिए जद या फिर शाम का टेन जब मौसम ठंड हो जाए। और खान पान में आपने विशेष बदलाव करना चाहिए। जिया मान लियो एक तो हल्को भोजन करो, गर्मी में भारी तेल आला जका मसालेदार भोजन हुए अंग है पचाण में शरीर ने ज़्यादा मेहनत करनी पड़े तो आपने अपने शरीर को तापमान बढ़न देना नहीं चाहिए। अर हल्को अर जो अच्छी तरह अपने पच जे आराम पच जे इसो भोजन करना है। मौसमी फल जिया तरबूज है, खरबूजा है, खीरा काकड़ी है, संतरा फल ये भी खाना चाहिए जका अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हुए। एर दोपहर गए टेम कर गए खिड़की दरवाज़ा मन बंद रखना चाहिए, पर्दा भी गिरा के रखना चाहिए। कूलर है या एसी है आंगो ज़्यादा भी तो प्रयोग किया शरीर खातर खतरनाक ही हुए पर आप आंगो प्रयोग कर सका। एर जो ठंडो पानी है तो भी शो स्नान करना चाहिए। लू लाग जाए तो अपन के करना चाहिए, जो आदमी लू ला गई कि नहीं बिने तो बिना ठंडी जगह पर छियाँ जकी जगह बटे सुनाना चाहिए। गीला कपड़ा जिया है तो बीच में शरीर पहुँच गए और ठंडे पानी से स्नान कराना चाहिए और तुरंत कोई डॉक्टर है बीच में संपर्क करना चाहिए। तो इन त्रियाँ को आप ध्यान रख सका तो गर्मियों बचाव कर सका। और दूसरी बात और श्रोताओं का रूंख है नहीं जका रूंख भी अपन ज़्यादा लगाना चाहिए। जियाँ खेजड़ी का रूख है तो बहुत ही आपने जो कि दोरा की धरती है खतर वरदान है। तपे धरा अंबर बड़े चाले ताती जाल, छियाँ करे जग न सुखी धन धन खेजड़ डाल, धन धन खेजड़ डाल। तो अपन ज़्यादा रूख है ये लगाना चाहिए ताकि अपने पर्यावरण के अंदर की है ठंडक बनी रहे, पर्यावरण को जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे तो आपां भी ठीक रहे शां। तो ज़्यादा आपने आपने चारों मेर की है हरियाली रखनी चाहिए ताकि आपनों स्वास्थ्य बनो रहे और आपां तापघात है लू है तो अंशू बच डे इसका बात आप और भी कर शां। पहला आप सुना हो लोक भजन।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं सुनियो प्यारो सो भजन, बात करा अब खेती बाड़ी की। तो आजकल की अपने ज़्यादा जका किसान भाई है वे रासायनिक खेती पर बड़ा निर्भर रहने लग गया है। तो अपन ज़्यादा में ज़्यादा जैविक जकी खेती है बिंगो इस्तेमाल करनो चाहिए ताकि अपनी जकी मट्टी है बिंगो स्वास्थ्य लंबे टाइम तीन बनो रहे। तो इन सारू बात करा खेती सारू नीम के बारे में जो आपने प्रकृति को एक बहुत ही मोटो वरदान है। आज के टाइम में जठे रासायनिक खादा और कीटनाशकों को ज़्यादा इस्तेमाल हूँ जमीन की जो उपजाऊ क्षमता कम होने लग रही है

ठीक है, नीम को जो आप जो पारंपरिक जैविक खेती का तरह प्रयोग करा तो एक वो रामबाण उपाय है। खेती में आप नीम को प्रयोग जो करा तो आपने अच्छो फायदो है। जी हाँ, प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में आप इस्तेमाल कर सका। नीम के जका बीज है जका ना पानी मोली बोला पत्तियां हैं आम के एजा डिरेक्टिन नाम को एक सक्रिय तत्व हो है, वो कीटां खातर एक शक्तिशाली निवारक है। हानिकारक कीटांशों सुरक्षा करे। नीम गुंज को तेल या काडो है फसलान ने जका नुकसान पहुँचाने वाला 200 तरीके का किसान वजो कीट जका है बाने वो रोकने की क्षमता रखे। जी हाँ, आपने चेपो है, थ्रिप्स है, सुंडी है, सफ़ेद मक्खी है, आंगो बहुत ही बढ़िया नियंत्रण करे। ऐसा क्या अपना जका खेती बाड़ी खातर मान लियो मित्र कीट है, अपना जमींदार का जका सहायक कीट है, बांग खातर बहुत ही अच्छो है क्योंकि बांग ने वो कोई नुकसान कौन पहुंचावे। जी हाँ, केंचू है, मधुमक्खियाँ है, लेडी बर्ड बीटल है, ये जगह किसान का मित्र साथी है। एक ये जगह अपने फसलों का दुश्मन कीट है बाने खा गए और खात्मो करे तो आपने आंगो जीवन अपाई नीम के प्रयोग से बचा सका। जे इनकी जगह अपन जे रासायनिक रसायन को प्रयोग करा तो आंगो कि जीवन खत्म हो जाए तो बहुत शो आपने नुकसान पहुंचे। दूसरो जिया नीम की खड़ है तो आ खाद घसा गए सुरक्षा को भी काम करे। नीम के बीजा जो तेल निकले इनके बाद जकी खड़ बचे आ खेती खातर बहुत ही फायदेमंद है। ईशु के जका भूमिगत कीट वैशु बचा हुआ है आ माटी में मौजूद जका मान लो हानिकारक कीड़ा है, दीमक है, सूत्रकृमि है, आने खा खत्म करे। एर पोषक तत्वों की ईशु भी पूर्ति हुए, इनमें क्या नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसा तत्व हुए जका पौधे की विकास में बहुत ही मदद करे। तो अपन किए सागे सागे तो कीट नियंत्रण हो जाए और सागे सागे किए देखो आपने जो कि फसल ने जरूरी पोषक तत्व चाहिए बे मिल जाए तो आम का आम और गुठलियाँ का दाम दोनों बातों फायदो हो जाए। और सागे किए इशू यूरिया की बचत हो गए। जद यूरिया खाद में नीम का तेल को अपन लेप करा तो माटी में नाइट्रोजन को नुकसान कम हो गए और माटी में नाइट्रोजन जकी की धीरे धीरे घुल गए मिलने लग जाए, दूसरा पोषक तत्व भी बेसक्रिय हो जाए। ऐसा क्या किया जका पौधा अपना है बने लंबे टाइम तक नाइट्रोजन मिलती रहे और यूरिया की खपत अपने 15-20 सैकड़ा कम हो जाए तो भी अपन एक फायदा है क्योंकि अपने यूरिया कम लानी पड़े तो अपनों देखो जेब पर भार पड़े, खेती पर देखो खर्चो बद है वो बचे। रोग नियंत्रण की बात करां तो नीम में एंटी फंगल, कवकनाशी और एंटी बैक्टीरियल का जका गुण हुए बांशों वो रोगनाशक भी काम करे। नीम के पानी को जी आप छिड़काव करां फसल पर तो जिया फंगस है, जिया पाउडरी मिल्ड्यू है, ब्लास्ट रोग है या और कोई जिया बैक्टीरिया होने वाली बीमारी है बेरुक जे। एर बीजा ने जे आप जब बीजांत को काम करा तो बी टाइम की जे नीम का घोल शू आप उच्चारित कर लिया बीजो उपचार कर लिया तो एक तो के बीजा को उगावा छो है और दूसरो जो कि शुरुआती जो कि बीमारियां बीज में होवे बे की है कम आवे फसल के अंदर शुरुआत में बिना सुरक्षा मिल जाए तो साग साग तो उगाव बढ़िया हो जाए और साग की जो कि शुरुआती बीमारियां जो कि फसल में लागे बे बहुत ही कम होवे। एक और फायदे वो है कि अनाज को अपा भंडारण करा तो भी में बींगो काम हो है। फसल कटाई के बाद जब आपा अनाज लंबे टाइम तक मान लियो आजकल सुरक्षित रखना पड़े तो इनमें कि आपा नीम की जकी सूखी पत्तियां हैं भी बहुत ही कारगर हो है। अनाज का जगह मान लियो बक्सा है, बोरियां हैं, हमें नीम की सूखी पत्तियां रखने चुमा में गुण कौन लग गए, इली कौन पड़े और दूसरा कीड़ा है भी कम लग गए और वो पूरी तरह सुरक्षित भी है, यानी इस आपने स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव कौन पड़े। आपन जिया मान लियो रसायन को प्रयोग करा तो भी शू अपनों अनाज में कीन कीन की जेर की मात्रा चली जावे जब वो आप

प्रयोग में लिया तो अपने शरीर में बहुत जेर पहुँचे। बिंगी बजाय जे आप नीम की पत्तियां को प्रयोग करा अनाज भंडारण गैमा तो कि एक तो अनाज को जो स्वाद है वो विशो को विशो बने रहे, बिंगी गुणवत्ता पर भी कोई बुरो असर कौन पड़े। तो सीधी सी बात आए किसान भाइयों के नीम का इस्तेमाल शू खेती में किया लागत कम हुए और माटी की जकी सेहत है वह सुधरे और आपने किए रसायन मुक्त स्वस्थ अनाज मिले। इन कारण आपने किया ज़्यादा से ज़्यादा नीम को अपनी खेती में इस्तेमाल करना चाहिए।

की जो कि सेहत है वह सुधर है और आपन की रसायन मुक्त स्वस्थ अनाज मिले। इन कारण आपन की ज़्यादा से ज़्यादा नीम को अपनी खेती में इस्तेमाल करना चाहिए। और आजकल का जगह जागरूक किसान भाई है बे तरफ भी ध्यान देने लग रहा है, तो इस अपने जो आम का आम और गुठलियाँ का दाम दोहरों फायदो जी, सगा अपना स्वास्थ्य बढ़िया, सगा अपनी जो कि खेत की माटी है बिंगो स्वास्थ्य बढ़िया रहे, तो बाकी आपने लंबे टाइम तक उत्पादन दे सके और बिंगी उर्वरा शक्ति बनी रह सके। बात आप और भी करशा, पहला सुना और प्यारो सो लोकगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं सुनो प्यारो सो लोकगीत। श्रोताओं आपने गठा जिका किसान है वे खेती बाड़ी के सागे सागे की है पशुपालन को धंधो भी करे। पशुपालन में जहाँ पोल्ट्री फार्म भी चलावे तो बात करिया भी गर्मियों के मौसम में आप मुर्गियों की देखभाल किया करा। ये मौसम में क्या है मुर्गी की जकी देखभाल करना एक बहुत ही चुनौती वाला काम है। मुर्गियों के शरीर में पसीने की किए किसान में जो ग्रंथियाँ को नहीं हुए जिनके कारण वे आपके शरीर को तापमान की आसानी से किए नियंत्रण कौन कर सके। तापमान जब 30 सेंटीग्रेड ऊपर जान लग जाए तो बम में हीट स्ट्रेस की शिकार होने लग जाए जिसो अंडा और मांस का उत्पादन कम हो जाए और जो ज़्यादा समस्या हुए तो मुर्गियों की मौत होनी भी शुरू हो जाए। तो मुर्गियों ने गर्मियों में स्वस्थ रखने सारू कई बातों को ध्यान रखना चाहिए जका मुर्गी पालन व्यवसाय करें। सारों पहली बात है जो आवास है बट पूरो हवा को जो है प्रबंध होना चाहिए। हवा को आवागमन है वो सही होना चाहिए। मुर्गियों को जो शेड है पोल्ट्री फार्म है बिना ठंडो रखना सबसे पहला और जरूरी कदम है। हवा को रुख जो है शेड में हवा आन जान की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। हरी सारू शेड की छत पर पंखा है एग्जैस

फैन जका मालो हवा बाहर न फेंके बे पंखा भी लागेड़ा होना चाहिए। अगर छत टीन की है तो वहाँ पर पुआल या जकी घास आवे वहाँ छिड़केड़ी डाल देनी चाहिए। रड़को पानी छिड़क गए छत पर सफ़ेद जो चुन्नू आवे बीव लगा देना चाहिए तो बी सूखिए तापमान कम हो जाए। दिन के मौसम में शेड के साइड वाला जगह पर्दा है अन कि आपने पूरी तरह हटा देना चाहिए जो कि जी ताजी हवा है बास के तेज़ धूप छू बचाण सारू शेड के बाहर पेड़ है या हरी जाली है ये भी आप लगावा तो इन छू भी किया तापमान कम हुए। दूसरी बात आ है किसान भाइयों के ठंडे और साफ पानी की हमेशा व्यवस्था होनी चाहिए। गर्मियों में मुर्गियाँ दाना से ज़्यादा किए पानी पिए पानी की कमी बां खातर जानलेवा उसके ताजो और ठंडो पानी हमेशा ही आपने जो पोल्ट्री फार्म है बैठाना चाहिए। पानी की टंकियाँ पाइपा आगे चारों मेर के जूट का जका बुरा है बांसू डगी रखनी चाहिए ताकि पानी गर्म न होवे। शेड में पूरी मात्रा में बर्तन भी होना चाहिए ताकि जकी मुर्गियाँ बैठे आसानी से पानी पी सके। और इनके अलावा जिया विटामिन है ग्लूकोज है विटामिन सी है इलेक्ट्रोलाइट्स है ये ज़रूर आपने मुर्गियों ने देना चाहिए ताकि वह में गर्मी कम लागे बने और भी हीट स्ट्रेस की शिकार न भी शू लड़न की हमें ताकत आ जाए। और जी आपन खान पान है मुर्गी को वहीं पर भी आपने विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। गर्मी के कारण मुर्गियाँ की दाणों जो को कम खावे जिसू बने पूरा किए पोषण कौन मिले। गर्मियों के दिनों में जिया सुबह 10 से 4 बजे तई शाम 4 बजे तई दाणों ने देना चाहिए। दाणों हमेशा किए सुबह जल्दी और शाम ने जब मौसम में कि ठंडा आ जाए भी टाइम देना चाहिए। और जका पोषक तत्व है वहाँ पर विशेष रूप से जका पोल्ट्री फार्म का मालिक हुए मन विशेष ध्यान देना चाहिए भी दाण में प्रोटीन है विटामिन है मिनरल है अंगी मात्रा थोड़ी सी की है बढ़ा देनी चाहिए ताकि जे मान लो कम भी खावे तो भी मन पूरा पोषण मिल जाए। और दोपहर के समय हल्को गिलो दाणों देना चाहिए जो को भी पसंद करे और शरीर में पानी की सग सग के पूर्ति कर दिए। और जो आप मान लो बिछावन बिछावा बी पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। शेड के फर्श पर बिछाई जाने वाली जकी सूखी घास है लकड़ी का जो भूसो है बी सूखी है गर्मी पैदा हुए तो गर्मी में इन जकी घास की मोटाई है लगभग 1.5 से 2 इंच रखनी चाहिए। और इन्हें लीटर बोले तो लीटर ने समय समय पर के ऊपर नीचे करते रहना चाहिए बिना बदलते रहना चाहिए ताकि भी में जकी गैस बने गर्मी बने बाकी बाहर निकलती रहे। और जो बिछावन है वो किए ज़्यादा गिलो नहीं होना चाहिए नहीं तो किए मुर्गियों में और दूसरी जकी बीमारियां हैं वे फैल सके। और तरीको वो है कि किसान भाइयों भीड़ कम रखनी चाहिए। गर्मी के मौसम में क्या शेड के अंदर मुर्गियों की जकी संख्या है सामान्य से 10 से 15 सैकड़ा तक कम रखनी चाहिए। और जगह जो ज़्यादा हुए तो क्या मुर्गियों ने फैलने को मौको मिल जाए बिन्ने बिन्ने जा सकैर वागो शरीर की गर्मी आसानी से बाहर निकलने। दोपहर के टाइम में मुर्गियां ने बार बार परेशान नहीं करनी चाहिए और ना ही बने इन्ने बिन्ने किए बजानी चाहिए शांत माहौल रखना चाहिए ताकि वहाँ में तनाव कम हुए। जैसी कोई मुर्गी जहाँ मुँह खोल गए सांस हाँपती दिखे तो बिना तुरंत किए ठंडी जगह ले जागे और ठंडे पानी को बड़े छिड़काव करना चाहिए। तो आम बातों को आपने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और हीट स्ट्रेस की जकी समस्या है इनका जका लक्षण है बांगी बात करा तो इनमें क्यों है मुर्गी एक तो किया पांख फैला गए जमीन पर पड़ जाए और मुँह खोल गए लगातार वो सांस ले यानी आप जाए और तेज तेज सांस लेने लग जाए दाणों खानों बिल्कुल बंद कर दिए और जो ज़्यादा पानी पिए और सुस्त होगी आँखा बंद कर लिया तो वो हीट स्ट्रेस की ये जका लक्षण है आप पर जका पोल्ट्री फार्म का जका कर्मचारी है माने विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इन तरीकों को जो आप अपने ध्यान रखांगा पोल्ट्री फार्म में तो अपनी जकी मुर्गियां हैं माने गर्मी से बचा सकांगा और ज़्यादा उत्पादन ले सकांगा। बात आप और भी करांगा पहला प्यारा सो सुनाओ लोकगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं सुनियो प्यारो सो लोकगीत, और अब टेम है मौसम और बाजार भाव को। तो अगले 1-3 घंटा में पठानकोट है जियाँ गुरदासपुर होशियारपुर अमृतसर फिरोजपुर और जका मोगा है फाजिलका है फरीदकोट है मुक्तसर गंगानगर बीकानेर हनुमानगढ़ सिरसा बठिंडा आम आंधी के सागे सागे केजियाँ के अड़की बारिश की संभावना है। बात करां बाजार भाव की तो अपने तई जैतसर मंडी छू बाजार भाव पुगता है चौटे सरसों का भाव निकलिया 6,500-7,241 रुपया कणक गाठ भाव उगड़िया 2,350-2,600 रुपया तई ग्वार अठे बिक्यो 5,450-5,640 रुपया और पीली सरसों जकी अठे बिकी 6,741 रुपया जोगा अठ भयो भाव रिया 2,100 रुपया और चना का भाव रिया 5,500 रुपया। गंगानगर मंडी की बात करा तो कणक अठे बिकी 2,325-2,571 रुपया तई चिणा गठ भाव निकलिया 5,220-5,580 सरसों का 7,250-7,625 रुपया ग्वार का भाव उगड़िया 5,550-5,637 रुपया जो अठे बिक्यो 2,111-2,261 रुपया। तो ये आज का बाजार भाव और अब सुना मथा ने एक प्यारो सो लोकगीत।

का निर्माण किया और बाद में सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी चर्चा में रही। अपने विभाग बयानों और फैसलों के कारण वे अक्सर सुर्खियों में रही। फिल्म निर्माण से लेकर प्रशासनिक जिम्मेदारियों तक उनका सफर कई उतार चढ़ावों से भरा रहा। यही वजह है कि उनका नाम भारतीय सिनेमा की चर्चित हस्तियों में शामिल किया जाता है। आओ दोस्तों, उन्हें हम श्रद्धांजलि दें और उनको शत शत नमन करें। और उनकी निर्माता के रूप में चंद फिल्में जो उन्होंने प्रोड्यूस की, उनके हम गीत आपको सुनवा देते हैं। ये पहला गीत शोला और शबनम फिल्म से, आवाज़ शब्बीर कुमार की, कविता कृष्ण मूर्ति की, गीत अनजान का, संगीत पप्पी लहरी का। आइए सुनिए ये गीत।

शतो पहलाज नहलानी 16 सितंबर 1971 में इनका जन्म हुआ। अगर हम बात करें इनकी अवार्ड्स की तो फिल्म फेयर बेस्ट लिरिस्ट अवार्ड 2007, 2008 और 2014 में इन्हें प्राप्त हुआ। नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट लिरिक्स के रूप में इन्हें 2007 में और 2013 में भी अवार्ड प्राप्त हुआ। कैनिस लॉयंस गोल्ड 2003 में और IFAA 2007, 2010 और 2014 में इन्हें सम्मानित किया गया और 2015 में श्रोताओं इनको पद्मश्री से भी सुशोभित किया गया। और दोस्तों इनकी जो गीत और फिल्में जो इन्होंने प्रोड्यूस की वो अपने आप में एक नई जिंदगी देने वाली फिल्में थी जिन्हें सभी श्रोताओं ने काफ़ी सराहा। तो इसी तरह की एक फिल्म थी दोस्तों और वो फिल्म थी आंखें फिल्म और उस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा देते हैं कुमार सानू सुदेश भोंसले कविता कृष्णमूर्ति अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में। लीजिए सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, पहला आज नैलानी के बारे में हम बात करें। भारतीय फिल्म के हिंदी कवि, लेखक, पटकथा लेखक और भारतीय सिनेमा के गीतकार और इन सभी उपलब्धियों से भरे हुए पहला आज नैलानी आज हमें छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं और इन्हें आकाशवाणी कॉटन सिटी चैनल के सूरतगढ़ परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से हमारा शत शत नमन और

श्रोताभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 8 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं की सेवा में आज नमस्कार जसवीर सिंह की तरफ से। श्रोताओं, आज का ये एक ही फिल्म से जानकारी और गीत कार्यक्रम लेकर उपस्थित है। आपने गीत के बोल सुने और निश्चित रूप से आपने पहचान लिया कि वो फिल्म मिलन का गीत है। और फिल्म मिलन की इन गीतों के साथ आज हम पहुंचे हैं कार्यक्रम में। और हम बता दें दोस्तों, इस फिल्म का जो चयन करने का मुख्य कारण है कि आज जहां हमें फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ पहलाज नहलानी की तरफ से, वहीं हम बात करें तो आज नूतन का जन्मदिन, तो 4 जून 1936 को हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेत्री नूतन के सौंदर्य को और उनका जन्म हुआ था। और उनके सौंदर्य

को मिस इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वह इस पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला बनी थी। और हम बात करते हैं दोस्तों फिल्म मिलन की, तो मिलन की कहानी की हम बात करें तो पुनर्जन्म, प्रेम, विछड़न और भाग्य के अनोखे मेल पर आधारित है। यह कहानी दो अलग अलग जन्मों में फैले प्रेम की दास्तान है, जिसमें ये दिखाया गया कि सच्चा प्रेम समय और मृत्यु की सीमाओं को भी पार कर सकता है। श्रोता, हम कहानी की शुरुआत करते हैं कि एक शांत और सुंदर गांव से होती है, जहां नदी लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी गांव में एक गरीब मगर मेहनती नाव चलाने वाला युवक रहता है, जिसका नाम गोपी होता है। गोपी सीधा सादा, ईमानदार और खुश मिजाज इंसान है। वह नदी पार कराने के काम करता है और मधुर आवाज तथा सरल स्वभाव के कारण गांव में सबका प्रिय होता है। उसी गांव में एक अमीर जमींदार परिवार की बेटी राधा रहती है, यानी नूतन। राधा सुंदर, शिक्षित और दयालु स्वभाव की लड़की है। एक दिन नदी के किनारे राधा की मुलाकात गोपी से होती है। शुरुआत में यह केवल सामान्य परिचय होता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। नदी पार करते समय छोटी छोटी बातचीत और बार बार की मुलाकातों से दोनों के बीच प्रेम जन्मने लगता है।

श्रोताओ, राधा यानी नूतन और गोपी यानी सुनील दत्त जानते हैं कि उसकी सामाजिक स्तर में बहुत अंतर है। एक तरफ जमींदार की बेटी, दूसरी तरफ गरीब नाविक। फिर भी उनका प्रेम इन सीमाओं को नहीं मानता। दोनों छिप छिप कर मिलने लगते हैं। नदी, नाव और किनारे उनके प्रेम के गवाह बन जाते हैं।

श्रोताओं, लेकिन समाज और परिवार इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकती। जब राधा के परिवार वालों को उनके प्रेम का पता चलता है तो वे बहुत नाराज होते हैं। उन्हें लगता है कि एक गरीब नाविक उनकी इज्जत के लायक नहीं। राधा पर घर से बाहर निकलने तक की पाबंदियां लगा दी जाती हैं। दूसरी ओर गोपी यानी सुनील दत्त भी समझ जाता है कि उनका रास्ता आसान नहीं है, लेकिन प्रेम के कारण वह राधा से दूर रहने की कोशिश नहीं कर पाता। दोनों एक साथ जीवन बिताने का सपना देखते हैं। इस बीच राधा की शादी किसी और से तय कर दी जाती है। यह खबर सुनकर दोनों टूट जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे इस जन्म में साथ नहीं रह सकते तो जीने का क्या अर्थ है। अंततः दोनों भागकर एक साथ नया जीवन शुरू करने का निर्णय लेते हैं।

श्रोताओ, रात के अंधेरे में दोनों नदी किनारे मिलते हैं। गोपी यानी सुनील दत्त अपनी नाव लेकर आता है ताकि वे गांव छोड़ सके, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर होता है। मौसम खराब हो जाता है, तेज हवाएं और तूफान शुरू हो जाता है। नाव नदी के बीच में पहुंचती है तभी दुर्घटना हो जाती है। नदी की उफनती नहरें दोनों को अपने भीतर समा लेती हैं। प्रेमी एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः दोनों की मृत्यु हो जाती है। मरने से पहले दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि यदि पुनर्जन्म हुआ तो वे फिर मिलेंगे। और दोस्तों, यहीं से कहानी दूसरे जन्म में प्रवेश करती है। सालों बाद एक नए समय में कहानी फिर शुरू होती है। अब एक युवक जिसका नाम

वहीं से कहानी दूसरे जन्म में प्रवेश करती है। सालों बाद एक नए समय में कहानी फिर शुरू होती है। अब एक युवक जिसका नाम सुनील है, वह पढ़ा लिखा आधुनिक और अच्छे परिवार से है, लेकिन बचपन से ही उसे कुछ अजीब सपने आते रहते हैं। कभी नदी दिखाई देती है, कभी नाव, कभी किसी अनजानी लड़की का चेहरा। सुनील इन सपनों को समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि शायद ये केवल कल्पनाएं हैं, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, ये अनुभव और गहरे होते जाते हैं। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक युवती से होती है जिसका नाम रेनू है। पहली बार मिलते ही दोनों एक अजीब सा अपनापन महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो पहले भी कहीं मिल चुके हैं।

0: करूं।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर। हाँ,

श्रोता और रेणु की कभी कभी अनजानी यादों से परेशान रहती है। नदी, नाव और कुछ पुराने दृश्य उसे बार बार दिखाई देते हैं। शुरुआत में दोनों इन बातों का संयोग मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगता है कि उनके बीच कोई गहरा संबंध है। नीलू और रेणु के परिवार उनके रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोचते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन तभी कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो उनके पिछले जन्म के रहस्य को उजागर करने लगती है। एक यात्रा के दौरान वह उसी क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां वर्षों पहले गोपी और राधा रहते थे। जैसी वह नदी और पुराने घाट को देखते हैं, दोनों के मन में दबे हुए दृश्य जागने लगते हैं। सुनील को अचानक याद आने लगता है कि वह पहले भी यहां आ चुका है। उसे नाव चलाने की अनुभूति होती है। दूसरी ओर रेणु को लगता है कि वह इस जगह को बहुत अच्छी तरह जानती है। धीरे धीरे पिछले जन्म की यादें पूरी तरह सामने आने लगती हैं। उन्हें पता चलता है कि वे वही प्रेमी हैं जो पिछले जन्म में बिछड़ गए थे। लेकिन कहानी यहाँ भी आसान नहीं होती। कुछ गलत फहमियाँ और परिस्थितियाँ उनके वर्तमान जीवन में भी बाधाएं पैदा करती हैं। परिवार और समाज की सोच फिर उनके सामने खड़ी दिखाई देती हैं।

सुनील और रेणु अब पहले से अलग हैं। पिछले जन्म के दुख ने उन्हें मजबूत बना दिया है। वे समझ जाते हैं कि अगर इस बार भी डर या परिस्थितियों के आगे झुक गए तो इतिहास को खुद को दोहरा सकता है।

श्रोता दोनों अपने परिवारों को समझाने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे सच्चाई, प्रेम और उनके अटूट विश्वास का असर होने लगता है। परिवार भी महसूस करते हैं कि यह रिश्ता केवल संयोग नहीं बल्कि गहरी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। अंततः वे सभी बाधाओं को पार कर लेते हैं। जो प्रेम पिछले जन्म में अधूरा रह गया था, उसे इस जन्म में पूरे होने का अवसर मिलता है। और श्रोताओं, कहानी का मुख्य संदेश यही है कि सच्चा प्रेम केवल एक जीवन तक सीमित नहीं होता। सामाजिक भेदभाव, अमीरी गरीबी, दूरी और समय सब उसके सामने छोटे पड़ सकते हैं। फिल्म पुनर्जन्म की अवधारणा के माध्यम से ये दिखाती है कि अधूरी भावनाएं कभी कभी नई शुरुआत खोज लेती हैं। दोस्तों, इस प्रकार मिलन केवल एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि विश्वास, भाग्य और पुनर्जन्म की भावनात्मक यात्रा बन जाती है, जहां दो प्रेमी अंततः उस मंजिल तक पहुंचते हैं जिन्हें उनकी तलाश उन्हें दो जन्मों तक रहती है।

श्रोतो, आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए फिल्म मिलन की पटकथा और उनमें फिल्मी गीत। और दोस्तों, अब अपने साथी जसवीर सिंह को इस कार्यक्रम से इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत, मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, FM 100.1 MHz पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से स्पोर्ट्स स्क्रीन।

0: नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र मणि राजेश। स्पोर्ट्सकैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज, एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्सकैन के साथ खेल की हर बात। सबसे पहले मुख्य समाचार। अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन, कहा योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने शीर्ष स्थान हासिल किया, प्रिया घांगस और विश्वनाथ सुरेश ने टॉप 3 में जगह बनाई। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी मेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। मेंस सिंगल्स, वीमेन सिंगल्स और मिक्स डबल्स में भारत की चुनौती समाप्त। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में मीरा एंडिवा फाइनल में पहुंची। दूसरा सेमीफाइनल डायना श्नाइडर और माजा चोलिनस्का के बीच। जापान में एशिया अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कल भारत की दोनों टीमें उतरेंगी। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए एक व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
1: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की और विस्तार से जानकारी के साथ अहमदाबाद से हमारी संवाददाता अपर्णा खूंट।
2: The city of Ahmedabad is buzzing with unprecedented energy as it hosts the first ever World Yogasana Championship from today. This is not just a competition, it is a defining moment in the evolution of Yogasana. For centuries, this practice was synonymous with spiritual wellness, but today it is being transformed into a globally competitive sporting discipline with its eyes firmly set on the Olympic moment. With the support of Ministry of Youth and Affairs and Sports, Ministry of Ayush and Sports Authority of India, this championship has brought together a massive international contingent from USA to Ghana, Kenya to Malaysia. Athletes are ready to push their boundaries of human potential. India, as the host nation, is fielding a strong 122-member squad competing across 6 age categories ranging from sub-juniors to senior masters. The technical precision of this event is underscored by the introduction of an electronic scoring system, a first at the global level, ensuring that every posture, balance and flow is just with absolute transparency. As this grand opening ceremony unfolds, the message is clear. Yogasana is India's greatest contribution to the world of sports. Whether it is individual events, artistic displays or traditional group performances, the world is watching to see how this ancient heritage thrives in the competitive arena.
0: और

0: योगासन के मैट के बाद अब चलते हैं बॉक्सिंग के रिंग की तरफ, जहां विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का जबरदस्त दबदबा देखने को मिला है। जैस्मीन लंबोरिया ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान अपने वर्ग में हासिल कर लिया है, वहीं प्रिया घांघस और विश्वनाथ सुरेश ने टॉप 3 में जगह बना ली है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा कायम है। जैस्मीन लंबोरिया महिलाओं की 57 किलोग्राम कैटेगरी में शीर्ष मुक्केबाज बन गई हैं। 60 किलोग्राम में एशियाई चैंपियन प्रिया घांघस और 50 किलोग्राम में विश्वनाथ सुरेश टॉप 3 में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम वर्ग में विश्व नंबर 1 के तौर पर अपना दबदबा बनाए रखा है, जबकि प्रीति नंबर 3 पर पहुंच गई हैं। 70 किलोग्राम में अरुंधति चौधरी, 80 किलोग्राम में पूजा रानी और 80 से अधिक किलोग्राम वर्ग में नुपुर विश्व में दूसरे स्थान पर काबिज हैं। 51 किलोग्राम में निखत जरीन और 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहेन ने भी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में अपनी जगह बनाए रखी है। पुरुषों की टीम में भी ऐसी ही निरंतरता है। सचिन और नरेंद्र लगातार अंतर्राष्ट्रीय सफलता के बाद टॉप 5 में शामिल हो गए हैं। 70 किलोग्राम वर्ग में हितेश गुलिया छठे और 65 किलोग्राम वर्ग में अविनाश जम्वाल 8वें स्थान पर हैं। 75 किलोग्राम वर्ग में आकाश और 85 किलोग्राम वर्ग में लोकेश भी टॉप 10 में शामिल हैं। पुरुष वर्ग के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश 11वें और 70 किलोग्राम वर्ग में दीपक 12वें स्थान पर हैं। विश्व रैंकिंग में भारत की ये जबरदस्त बढ़त विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल्स और विश्व चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन के कारण ही संभव हुई है। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
0: बॉक्सिंग रिंग से अब चलते हैं रैकेट गेम की तरफ। इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए थोड़ी सफलता और ज्यादा निराशा वाला रहा। एक तरफ जहां पुरुष डबल्स में भारतीय जोड़ी ने परचम लहराया, वहीं पुरुष सिंगल्स महिला सिंगल्स के साथ साथ मिक्स डबल्स में निराशा हाथ लगी। प्रशांत, बताइए आज भारत के लिए क्या कुछ प्रदर्शन रहा?
2: जकार्ता में रफ्तार और चतुराई के खेल बैडमिंटन में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने अपने लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। इस भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी एरन ताई और कैंग खाईजिंग को 3 गेम तक चले कड़े मुकाबले में 16-21, 21-15 और 21-19 से शिकस्त देकर पहली बार किसी 1000 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का किया। पहले गेम में भारतीय जोड़ी कड़ी टक्कर देने के बावजूद पिछड़ गई। हालांकि दूसरे गेम में एक बार लय हासिल करते ही अर्जुन और अमसा करुणन का सफर जीत पर जाकर ही रुका। तीसरा गेम न सिर्फ मैच के लिहाज से बल्कि मानसिक रूप से भी काफी अहम था। एक समय दोनों जोड़ियां लगभग बराबरी की हालत में थी, लेकिन बेहतर नर्व कंट्रोल के चलते आखिरकार बाजी भारतीय जोड़ी ने अपने नाम कर ली। अब कल अर्जुन और अमसा करुणन मलेशिया के गोह जे फेई और नूर इजुजुद्दीन का सामना करेंगे। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी कड़े संघर्ष के बावजूद पराजित हो गए। उन्होंने हांगकांग के ली चियोगी के खिलाफ पहला गेम आसानी से 21-16 से अपने नाम कर लिया, लेकिन आगे इस लय को बरकरार नहीं रख सके। दूसरे गेम में आयुष को आसानी से 13-21 से शिकस्त मिली। इसके बाद उन्होंने जैसे हथियार डाल दिए, क्योंकि तीसरे गेम में भी वे 14-21 से हार बैठे। महिला सिंगल्स में अनुभवी पीवी सिंधु से बेहद उम्मीदें थी, लेकिन दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी दक्षिण कोरिया की एन से यंग के खिलाफ एक बार फिर उनकी चुनौती टिक नहीं सकी। सिंधु ने पहले गेम में काफी संघर्ष किया, लेकिन उन्हें तमाम कोशिशों के बाद भी 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। दूसरे गेम में भी लगभग यही स्थिति रही। ये गेम सिंधु 15-21 से हारी और इसके साथ ही वे प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई। एन की सिंधु के खिलाफ ये 10वीं जीत है। सिंधु उनके खिलाफ आज तक कोई भी मैच नहीं जीत सकी हैं। शाम ढलते ढलते मिक्स डबल्स में भी निराशाजनक खबर आई, जब रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की जोड़ी चौथी वरीयता प्राप्त फ्रांस के थॉम मार्क गिक्वेल और डेल्फिन आरो डेलरू की चुनौती को पार नहीं कर सकी। भारतीय जोड़ी को आसानी से 21-12, 21-13 से हार झेलनी पड़ी। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: और रैकेट गेम की बात चली है तो टेनिस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन दिनों चल रहा है और वहां से ताजा खबर यह है कि महिला सिंगल्स में मीरा एंड्रीवा फाइनल में पहुंच गई हैं। दूसरा सेमीफाइनल डायना श्नाइडर और माजा चोनेलिस्का के बीच खेला जा रहा है, और तो कमाल का प्रदर्शन पुरुष सिंगल्स में देखने को मिला, जहां पर उलटफेर हुआ है और 104वीं रैंकिंग वाले अर्नाल्डी ने अंतिम 4 में जगह बना ली है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: इटली के मैटेओ अर्नाल्डी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। हिप इंजरी के कारण मैटेओ बेरेटिनी को क्वार्टर फाइनल मुकाबला बीच में ही छोड़ना पड़ा, जिसके चलते अर्नाल्डी को विजेता घोषित किया गया। मैच के समय अर्नाल्डी

0: 7-5, 5-2 से आगे चल रहे थे। दूसरे सेट में बेरेटिनी की चोट गंभीर हो गई और उन्हें मुकाबले से हटना पड़ा। मुकाबले की शुरुआत बेरेटिनी ने शानदार अंदाज में की थी। उन्होंने शुरुआती 3 गेम में 2 बार सर्विस ब्रेक करते हुए 3-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। ऐसा लग रहा था कि अनुभवी बेरेटिनी मैच पर पूरी तरह पकड़ बनाए हुए हैं। हालांकि अर्नाल्डी ने धैर्य नहीं खोया और धीरे धीरे मुकाबले में वापसी की। पहले सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच लंबी और कड़ी टक्कर देखने को मिली। 76 मिनट तक चले सेट में कई रोमांचक रैलियां हुई। बेरेटिनी ने 1 गेम में 5 ब्रेक पॉइंट बचाए, लेकिन सेट के अंतिम गेम में वो अपनी सर्विस नहीं बचा सके और अर्नाल्डी ने 7-5 से सेट अपने नाम कर लिया। दूसरे सेट में 2-1 से पीछे होने पर बेरेटिनी ने मेडिकल टाइम आउट लिया। कोर्ट पर लौटकर उन्होंने आगे खेलने की कोशिश की, लेकिन दर्द लगातार बढ़ता गया। आखिरकार उन्होंने मुकाबला छोड़ने का फैसला किया। मैच के बाद बेरेटिनी ने बताया कि उन्हें पहले सेट के दौरान ही हिप में परेशानी महसूस होने लगी थी। उन्होंने दर्द को नजरअंदाज कर खेल जारी रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा और उन्हें ज्यादा सर्विस तथा फोरहैंड शॉट लगाने पड़े, दर्द बढ़ता गया। दूसरी ओर 25 वर्षीय अर्नाल्डी का शानदार सफर टूर्नामेंट में जारी है। विश्व रैंकिंग में 104वें स्थान पर मौजूद अर्नाल्डी इस साल फ्रेंच ओपन के सबसे बड़े सरप्राइज खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरे हैं। वो 1997 के बाद फ्रेंच ओपन में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले सबसे कम रैंक वाले खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा 1990 के बाद अर्नाल्डी सिर्फ 3रे ऐसे खिलाड़ी हैं जो टॉप 100 रैंकिंग से बाहर रहते हुए भी सेमीफाइनल का टिकट कटाने में कामयाब रहे हैं। अब सेमीफाइनल में अर्नाल्डी का सामना अपने ही देश के खिलाड़ी फ्लेवियो कोपोली से होगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: टेनिस के कोर्ट से चलते हैं हॉकी के मैदान की तरफ, क्योंकि जापान का काका मेगाहारा कल जूनियर हॉकी में कड़े मुकाबलों का गवाह बनेगा। एशिया अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में एक तरफ भारतीय टीम चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ 2-2 हार करेगी, तो दूसरी तरफ महिला टीम की टक्कर चीन से होगी। जबरदस्त मुकाबला होगा, कैसे जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
2: टूर्नामेंट में अब तक मिले जुले प्रदर्शन के साथ भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम पूल ए में 3 जीत और 1 हार के साथ दूसरे स्थान पर रही। टूर्नामेंट के अपने अब तक के अभियान में भारत ने 32 गोल किए, जबकि उसके खिलाफ सिर्फ 6 गोल हुए। पुरुष टीम ने अपने अभियान का आगाज कजाकिस्तान के खिलाफ 13-0 की शानदार जीत के साथ किया, लेकिन अगले ही मैच में उसे मेजबान जापान के हाथों 2-4 की पराजय झेलनी पड़ी। इस हार के बाद टीम ने जैसे हौसलों को फिर से समेटा और मजबूत कोरिया पर 4-1 की जीत के साथ जोरदार वापसी की। टीम का चौथा मैच बिल्कुल ही आसान रहा, जिसमें उसने चीनी ताइपे को 13-1 से आसानी से पराजित कर अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की कर ली। कप्तान केतन कुशवाहा 7 गोल के साथ भारत के लिए सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। आशीष टानी पूर्ति ने 6 गोल किए हैं। गाजी खान और शाहरुख अली के नाम 3-3 गोल हैं। उधर पाकिस्तान ने अपने 3 मैच में 2 जीत और 1 हार के साथ पूल बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। पाकिस्तान के खिलाफ ये मुकाबला न सिर्फ मनोवैज्ञानिक रूप से काफी कठिन होगा, बल्कि भारत के जूनियर खिलाड़ियों को पेनाल्टी कॉर्नर अटैक और डिफेंस में अपनी गलतियों को सुधार कर मुकाबले में उतरना होगा। उधर महिला वर्ग में टीम का प्रदर्शन अब तक जबरदस्त रहा। भारतीय टीम ने पूल ए में अपने 3 मैच जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। इस सफर में टीम ने गोलों की झड़ी लगा दी। भारत की जांबाज लड़कियों ने जहां विरोधियों पर 30 गोल किए, वहीं अपने खिलाफ सिर्फ 2 गोल करने का मौका दिया। भारत ने अपने पहले मैच में मजबूत मलेशिया को 2-1 से पराजित किया, फिर दक्षिण कोरिया पर 3-1 से जीत दर्ज की। इसके बाद उन्होंने अपने अंतिम पूल मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिंगापुर को 25-0 से धूल चटाकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान पक्का किया। टूर्नामेंट में अब तक 10 गोल के साथ नौशीन नाज भारत की सबसे अधिक गोल करने वाली खिलाड़ी रही हैं। चीन 2 जीत और 1 ड्रॉ के साथ पूल बी में दूसरे स्थान पर रहा। जाहिर है भारत के लिए अब तक का सफर काफी शानदार रहा है, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हो रही है, जहां जीत का मतलब खिताब के 1 कदम और नजदीक पहुंचना होगा। टीम अगर पहले की तरह अपनी लय बनाने में सफल रहती है, तो उसे जीतने से रोकना विरोधी के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो सकता है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। भारत की टीम सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है, जहां उसका मुकाबला शनिवार को बांग्लादेश से होगा। हिसोर में कल फीफा अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच में भारत और मेजबान ताजिकिस्तान की टीम आमने सामने होगी। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में 1 दिन के विश्राम के बाद 9वें दौर की बाजी आज खेली जाएगी। इस दौर की सबसे खास बात यह है कि पुरुष वर्ग में 2 भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद और डी गुकेश एक बार फिर आमने सामने होंगे। चीन के आरुडोस में 9 से 12 जुलाई तक होने वाली पहली एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारत की 54 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। और अब घड़ी

की सुइयां कह रही हैं कि श्रोताओं अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर होगी मुलाकात, खेल के मैदान की हर खबर के साथ। लेकिन आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और अपना सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर जरूर भेजिए। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
2: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़

0: हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
1: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
3: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में MR अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला

श्रोताओ, अभी आपने गुलाम अली की आवाज़ में ये गज़ल सुनी। अब सुने एक बार फिर से गुलाम अली की आवाज़ में ये गज़ल।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज आपने इस कार्यक्रम में सुने गजलें। कलाकार थे आशा भोसले, जगजीत सिंह, गुलाम अली। और इसी के साथ आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, FM 100.1 MHz पर, DRM 409 किलोहर्ट्स पर, मोबाइल अपने जोन AIR पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़।

0: रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब आप सुने कार्यक्रम कंट्री वाइड इनसाइट।
1: कंट्री वाइड ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 सशक्तिकरण और प्रगति के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे और अमरीश सक्सेना।
2: आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 आदिवासी सशक्तिकरण और समावेश का एक दशक, और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अनंत प्रकाश पांडे जी, जो कि संयुक्त सचिव हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार में। पांडे जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: जैसा कि पांडे जी, अभी भारत सरकार की तरफ से जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 मनाया जा रहा है। ये एक महीने तक चलने वाला उत्सव है और जिसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय कर रहा है। ये कार्यक्रम 10 मई से शुरू हुआ और 9 जून तक चलेगा। तो 12 सालों में जनजातीय विकास के क्षेत्र में जितनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां देश ने हासिल की हैं, जो आदिवासी और जनजाति हैं उनको गरिमा प्रदान करने के लिए, उनको सशक्तिकरण करने के लिए, और जो भी समाज में उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए इस समारोह के माध्यम से जो भी काम किए गए हैं, इसकी जानकारी देने की कृपा करें।
3: जनजातीय गरिमा उत्सव 2026, जैसा कि बताया हमारे वक्ता ने कि 10 मई से 9 जून तक ये लगभग एक महीने का कार्यक्रम रहा है, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग एक एक हर हफ्ते के लिए प्रोग्राम डिजाइन किया था, जो जनजातीय समाज के लिए पिछले 12 वर्षों से सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, तो उनके समग्र विकास की नई गाथा लिखी है पिछले 12 वर्ष में। उन्हें न केवल रोजगार का अवसर, जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे स्वास्थ्य है, एक्सेस एजुकेशन के लिए है और हेल्थ एक्सेस है, इस तरह की तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे पीने के पानी की सुविधा हो, तो तमाम सुविधाओं को सरकार ने अपने पूरे जोर से पिछले 12 सालों में लगे रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि अगर हम लोग केवल बजट का तुलना करें कि बजट पिछले 12 सालों में कितना बढ़ गया है, तो अगर ट्राइबल जनजातीय विकास के लिए अगर ट्राइबल पे बजट जो पहले लगभग 2012-13 में 4,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आज वो 15,000 करोड़ के आसपास हो गया है, जो कि लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है, एक बहुत बड़ी वृद्धि है बजट में। और इसी प्रकार से अगर देखेंगे आपकी, जैसा मैंने बताया कि अलग अलग जो बुनियादी सुविधाएं, जिसमें सबसे बड़ी शिक्षा के ऊपर जो सरकार की पूरी जोर रही है कि ट्राइबल बच्चों को कैसे अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिल पाए, उसके तहत एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल या आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। लगभग 500 स्कूल आज की डेट में नए बने हैं और जिनसे लगभग 1,40,000 स्टूडेंट्स हमारे जो शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। पूरी तरह आवासीय सुविधा है और मुझे बताते हुए बहुत गर्व और खुशी हो रही है कि इसमें काफी सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अलग अलग जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे नीट है, जैसे हमारा IIT है एम्स में जाने के लिए, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, इस तरह के कई सारे जो प्रतियोगी परीक्षाओं को भी उत्तीर्ण कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि कितनी हाई क्वालिटी की एजुकेशन इस पूरे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के माध्यम से सरकार जो है प्रतिबद्ध है अच्छी एजुकेशन पहुंचाने के लिए। इसी तरह अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने नेशनल सिकल सेल एनीमिया में इरेडिकेशन मिशन का भी 2023 में उसकी शुरुआत की है, और जिससे लगभग 60 करोड़ जो है जनजाति उनका अच्छी तरह से स्क्रीनिंग हो सका है। और अगर हम सड़क, बिजली, पानी, इस तरह की जो अलग बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसमें भी इस सरकार के तहत PM जनमन योजना हो, चाहे धरती आबा उत्कर्ष उत्थान योजना है, इस तरह की तमाम जो योजनाएं हैं उनके थ्रू भी बहुत सारे कन्वर्जेंस के थ्रू अलग अलग जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बुनियादी सुविधाओं पे बहुत जोर दिया गया है। और धरती आबा में आपके 17 मंत्रालय हैं और 25 इंटरवेंशन के तहत अलग अलग इंटरवेंशन किए जा रहे हैं ताकि जनजाति समुदाय का विकास हो सके और उन्हें जो सभी महत्वपूर्ण सुविधाएं मिल सकती हैं वो सुविधाएं मिले। और पूरे 12 साल के जो

0: समग्र विकास के लिए कार्य किए गए हैं उन सबको सेलिब्रेट करने के लिए और उसको कैसे हम लोग एक उत्सव के रूप में मना सकें कि जो सरकार ने और सरकार के ऐतिहासिक कदमों ने इस पूरे जनजातीय विकास की नई जो गाथा लिखी है उसको कैसे एक उत्सव को मनाया जा सके, उसके लिए मंत्रालय ने जनजातीय गौरव गरिमा उत्सव 2026 एक मंथ का हम लोग चला रहे हैं, जिसमें पहले हफ्ते में हमारे सभी श्रोता जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आज की डेट में तकनीकी जो जितना एडवांसमेंट हो रहा है वो बहुत बड़ा योगदान आजकल कर रहा है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और जो सुविधाएं देना चाहते हैं ट्राइबल जनजातीय भाई बहनों को उसको किस तरह से टेक्नोलॉजी के थ्रू आसानी से पहुंचाया जा सके, और उसके तहत हमारा 10th मई से 17th मई तक ये टेक्नोलॉजी एज अ डेवलपमेंट ड्राइवर मतलब विकास में कैसे ड्राइव कर सकता है टेक्नोलॉजी, इस पे एक पूरा वीक हम लोगों ने आयोजन किए तमाम प्रोग्राम।
1: पांडे जी एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, तो जितनी आपने योजनाएं बताई और निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने बनाई हैं, लेकिन एक मोटे तौर पे हम देखते हैं कि ज्यादातर जो जनजातीय इलाके हैं वहां पर सुविधाओं को पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, उस तरह का ढांचा होता नहीं, तो ऐसे में प्रशासन क्या ऐसे अतिरिक्त कदम उठाता है जो सुविधाएं हैं उनको जनजातीय लोगों तक जहां वो है वहीं तक पहुंचा जा सके।
0: पहला जो हम लोगों ने वीक मनाया वो तो टेक्नोलॉजी कैसे ड्राइव कर रहा है, और टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा इनेबलर होता है अगर आप अपनी बात कहीं गांव तक पहुंचाना चाहते हैं लास्ट माइल तक। आजकल बहुत जगह बहुत ट्राइबल क्षेत्रों में भी इंटरनेट का भी पहुंच हो गई है, और इसलिए तमाम ऐप के माध्यम से और इस तरह की जो वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से भी बहुत सारी हम लोग योजनाएं अवेयरनेस के तौर पे पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअल योजना, जैसे आपने कहा बहुत सही बात आपने बताई कि ट्राइबल हमारे जो भाई बहन साथी हैं वो बहुत सुदूर और डिफिकल्ट एरियाज में रहते हैं और उन तक पहुंचना एक अपने आप में चुनौती रहती है, और इस चुनौती को ओवरकम करने के लिए सरकार ने आप देखिए तो पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों में लगातार जन भागीदारी अभियान चलाते रहे हैं, और इसी तहत एक बहुत बड़ा जन भागीदारी अभियान हमने जो हमारा इस पूरे जनजाति गरिमा उत्सव का जो दूसरा हफ्ता था जिसमें 18 से 25 मई इस दौरान हमने सबसे दूर सबसे पहले नाम की एक पहल शुरू की जिसमें जन भागीदारी के थ्रू जितने सर्विसेज थी वो उनके डोर स्टेप जिनके पास तक कैसे सारी पहुंच सके, इसके लिए लगभग 76,000 जो हमारे गांव थे 600 डिस्ट्रिक्ट में वहां पे 57,000 कैंप्स किए गए और लगभग 90,00,000 ट्राइबल जो हमारे भाई बहन शामिल उसमें हुए, और कुछ आंकड़े आप सभी श्रोताओं के लिए बताना चाहूंगा कि उसमें लगभग 13,000 लोगों की जन सुनवाई हुई जिसमें उन्होंने अपनी समस्याएं अपनी मांग ट्राइबल समुदाय के लोगों ने रखी, और 19,000 आदि सेवा केंद्र जो कि एक तरह से एक वन स्टॉप सोल्यूशन के तौर पे हम लोग मंत्रालय उसको प्रस्तुत कर रहा है कि एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था गांव के लेवल पे रहे जहां पे कुछ बिल्डिंग को चिन्हित करके उसे आदि सेवा केंद्र के तौर पे चिन्हित किया गया, और वहां पे जो ट्राइबल से रिलेटेड और जो ग्राम विकास से रिलेटेड मंत्रालय हैं अलग अलग सोशल डेवलपमेंट के मंत्रालय हैं उनके डिपार्टमेंट्स के लोग वहां जाएंगे और लोगों के बीच में उनकी समस्याएं सुनेंगे स्पेशली ट्राइबल लोगों की। तो ये आदि सेवा के माध्यम से इसी तरह अगर आप देखोगे इन सारे कैंप्स में बहुत सारे जो स्कीम्स का सैचुरेशन का भी माध्यम किया गया, तो अगर आप आधार कार्ड एनरोलमेंट की बात करेंगे तो लगभग 3,00,000 लोगों को आधार कार्ड में एनरोल किया गया केवल इस एक हफ्ते के दौरान की मैं प्रगति बता रहा हूँ। आयुष्मान भारत कार्ड लगभग 2,50,000 लोगों को दिया गया, और इसी तरह हेल्थ स्क्रीनिंग जो है टीबी और सिकल सेल की हेल्थ स्क्रीनिंग लगभग 1.35 लाख लोगों की गई। तो इस तरह के अभियान जो आपका प्रश्न था कि डिफिकल्ट एरिया में कैसे मंत्रालय एक्सेस कर पाता है, तो मंत्रालय स्टेट गवर्नमेंट्स के जो राज्य सरकारों के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बीडीओ लेवल पे जो गांव के लेवल के स्तर पे अधिकारी और कर्मचारी हैं जिन सबके साथ कंधे से कंधा मिला के इस तरह के अभियान लगातार समय समय पे चला के वो हमारे पास ट्राइबल ना आए, ट्राइबल को ज्यादा दूर ना जाना पड़े, सरकार उनके द्वारा एक तरह से जाती है और वहां पे जाके योजनाओं के बारे में बताती है और कुछ योजनाओं को जो लाभ मिल सकता है उसको कैंप के माध्यम से वहाँ भी लगातार देने का
1: जी। यहाँ पे एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा पांडे जी, सरकार की तरफ से जैसा आपने बताया बहुत प्रयास कर रहे हैं, जागरूकता फैलाना सबसे एक महत्वपूर्ण काम है, इन प्रयासों की सफलता तभी है जब जिसके लिए काम किया जा रहा है उनकी भी भागीदारी हो, जिसको हम सामुदायिक भागीदारी की बात कहें, तो सामुदायिक भागीदारी को और बढ़ाने के लिए

0: सरकार की तरफ से क्या किया गया है?
1: सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट, जैसे हम लोगों ने पहले बताया कि अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष एक बहुत बड़ा अभियान आदि कर्मयोगी अभियान के रूप में उसको चलाया गया था, और माननीय प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का सपना है उस संकल्प के लिए बिना समुदाय के शामिल हुए इस पूरे संकल्प को पूर्ण कर पाना आसान नहीं। तो उसी के तहत आदि कर्मयोगी अभियान में हम लोगों ने लगभग 20 लाख ट्राइबल लोगों तक पहुंच बनाई, जिसमें अलग अलग विभाग अपने जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक ट्रेनिंग कम अवेयरनेस और सेंसिटिविटी की गई, ताकि मास्टर ट्रेनर्स बने और मास्टर ट्रेनर्स के साथ फिर मिलके ग्राम स्तर पर जो विलेज डेवलपमेंट एक्शन प्लान बनाया गया, विलेज विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया, गांव वालों के साथ बैठ के कि ट्राइबल गांव के लोग हैं उनके साथ मिलके कैसे कोई प्लानिंग की जा सकती है, उनसे चर्चा करके कैसे प्लानिंग की जा सकती है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का, किसी भी समुदाय का भागीदारी सुनिश्चित करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका वो हो सकता है कि उसके डिसीजन मेकिंग में, उसके विकास के जो उसमें वो कैसे प्लान हो उसके गांव का विकास, उसमें उसकी भागीदारी सुनिश्चित किया। तो इसके लिए लगभग 56,000 गांव तक हम लोग पिछले 6 महीने में पहुंचे, और उस 56,000 गांव में गांव वालों के साथ मिलके जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, कुछ हम लोगों ने आदि सेवा केंद्र भी जो मैंने बताया था जैसे उसमें आइडेंटिफाई हुए थे, आदि सहयोगी और आदि साथी भी चिन्हित किए गए थे, कुछ वॉलंटियर्स और कुछ जो ग्राम स्तर पे राज्य सरकारों के अधीन जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके साथ मिलके और गांव वालों के साथ मिलके प्लानिंग भी की गई, कुछ बढ़िया डॉक्यूमेंट्स भी बने हैं उस पर भी काम हो रहा है। तो इस तरह से लगातार प्रयास ये रहता है कि जब तक गांव के जो असली जो वहां रहते हैं, जब तक उनकी बात सुन के समुदाय क्या चाहता है वो चीज बिना जाने अगर हम प्लानिंग करते रहे यहाँ दिल्ली से या किसी स्टेट हेडक्वार्टर से तो वो कामयाब नहीं होता। लेकिन मंत्रालय ने पूरा इस बार सीरियसली इस मामले में प्रयास किया है कि हम ग्राम स्तर पर कैसे लोगों को जोड़।
0: जी, यहाँ पर मैं और एक बात आपसे पूछना चाहूंगा पांडे जी, कि जब हम उद्यमशीलता की बात करते हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक उद्यमशीलता को विकसित करना भी जरूरी है, तो इस क्षेत्र में खासतौर पे क्या विशेष प्रयास किए गए हैं?
1: जनजाति की अवस्था अगर देखी जाए तो सरकार का जो पहला फोकस रहा वो ये रहा कि कैसे इनको बेसिक सुविधाओं से अच्छी तरह से लैस किया जाए। अच्छी तरह से लैस करने का मतलब कि बेसिक सुविधाएं कैसे पहुंचाई जा सके, जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। तो मैंने जैसे पहले बताया कि इन सारी क्षेत्रों में धरती आबा अभियान हो, चाहे पीएम जनमन हो, चाहे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, स्कॉलरशिप है जो लगभग हम लोग 20 लाख पोस्ट मैट्रिक और 10 लाख प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देते हैं शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट को, ताकि वो स्कूल ड्रॉप आउट ना हो सके उनको पूरी तरह से। तो इस तरह की जो बेसिक सुविधाएं हमने मतलब सरकार ने अपनी तमाम योजनाओं तक पहुंचाई है, पहुंचा रही है। अब जो बहुत महत्वपूर्ण चरण है वो ये है कि अब इनको कैसे ग्रेजुएट, मतलब इनको कैसे दूसरे लेवल इनकम कैसे जनरेट की जा सके, ताकि अपने पैरों पे खड़े हो सकें और अब पूरे देश के जो विकसित भारत 2047 में अपना योगदान दे सकें। तो उसके लिए जो दो बहुत महत्वपूर्ण मतलब एजेंडा है सरकार के उस पे, एक तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कैसे डेवलप की जाए, तो उसके लिए हम लोग इंस्टीट्यूट स्किल के साथ जॉइंटली अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की ट्रेनिंग कई जगह जितने हमारे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है वहां पे कर रहे हैं। कुछ हम लोगों ने CSR के माध्यम से, क्योंकि सरकार की भी ये सोच रहती है कि प्राइवेट पार्टनरशिप भी की जाए, पब्लिक सेक्टर को भी लाया जाए, ताकि समाज के हर वर्ग को जोड़ा जा सके, तो CSR के माध्यम से भी हम लोग बूट कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की ट्रेनिंग दी जा सके।
0: जी पांडे जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जनजातीय गरिमा उत्सव के बारे में और आदिवासियों के सशक्तिकरण और समावेशन के लिए सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है और एक पूरे महीने तक जिस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 सशक्तिकरण और प्रगति के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे और अमरीश सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Countrywide.

0: स्पेक्ट्रम, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।
2: त्रि लोक एवं सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं मैथिली लोक संगीत, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा। सौम्या मिश्रा बिहार के मधुबनी जिले की निवासी हैं। वे एक प्रतिभाशाली लोक गायिका हैं, जिन्हें मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए विशेष पहचान प्राप्त है। आपके संगीत में मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है, साथ ही उसमें आधुनिक श्रोताओं को आकर्षित करने वाली नवीनता भी विद्यमान है। सौम्या मिश्रा देश भर के अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोहों और मंचीय कार्यक्रमों में अपनी मधुर एवं भावपूर्ण गायकी से श्रोताओं का मन मोहती रहती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा की स्वरबद्ध प्रस्तुति में मनमोहक मैथिली लोकगीत। आज के कार्यक्रम में संगत करता है तबले पर हरिभूषण झा, ऑक्टोपैड पर ललित, ढोलक पर अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर शशिभूषण झा। सौम्या मिश्रा अपने कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे से।
3: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। वी प्रेजेंट मैथिली फोक सॉन्ग बाय सौम्या मिश्रा, एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। Soumya Mishra hails from Madhubani, Bihar. She is a gifted folk vocalist, acclaimed for her soulful renditions in Maithili, Hindi and Bhojpuri. Her music reflects a deep connection to the cultural traditions of Mithila, while carrying a freshness that appeals to contemporary audiences. Soumya Mishra has performed at numerous prestigious cultural festivals and stage programs across the country, enchanting listeners with her melodious voice and heartfelt expression. In today's program, the accompanists are Haribhushan Jha on tabla, Lalit Kumar on octopad, Aman Krishan on dholak, and Shashibhushan Jha on keyboard. She begins her rendition with a composition titled Chanan Bhel.

0: अभी आप सुन रहे थे सौम्या मिश्रा से महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे। आइए अब सुनते हैं एक लगनी गीत जिसके बोल हैं एकता हम बारी कुमारी।
1: We just heard a composition titled Chanan Bhel. Continuing this program, she now presents a composition titled Ekta Hum Bari Kumari.

0: आप सुन रहे हैं सौम्या मिश्रा द्वारा प्रस्तुत मैथिली लोकगीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक चैती जिसके बोल है कोहके बारी कोयलिया हो रामा।
1: That was a Maithili composition performed by Soumya Mishra. We will now listen a composition titled Kuhke Bari Koyaliya Horama.

0: अभी आप सुन रहे थे चैती गीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक पूर्वी, जिसके बोल हैं, बाट हेरी दिन काटी नोर बहैया।
1: That was a मैथिली composition performed by सौम्या मिश्रा। She concludes her rendition with a composition titled बाटे हेरी दिन काटी नोर बहैया।

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में मैथिली लोकगीत की ये प्रस्तुति अब यहीं संपन्न होती है। इस कार्यक्रम में तबले पर संगत की हरिभूषण झा ने, ऑक्टोपैड पर थे ललित कुमार, ढोलक पर थे अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर साथ दिया था शशिभूषण झा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर ओडिशा की प्रस्तुति।
1: With that, she concludes her rendition of Maithili folk compositions. This part of the program was recorded in the studio of Akashwani Delhi. Continuing the broadcast from Akashwani Delhi, now we will listen to the presentation of Akashwani Jaipur, Odisha.

क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। मैं अमीना हुसैन, नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं ओडिशा प्रदेश के कुछ मधुर और मन मोह लेने वाले आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा। इन गानों को सुरों में सजाकर आप तक पहुंचाया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा के

सुप्रसिद्ध टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर श्री विजय कुमार सामंतराय। श्री विजय कुमार सामंतराय माता श्रीमती स्नेहलता सामंतराय और पिता श्री चंद्रशेखर सामंतराय के सुपुत्र हैं। आपने गुरु श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी के तत्वावधान में बचपन से ही बेहला यानी कि वायोलिन की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। सन 1994 में आपने आकाशवाणी जयपुर केंद्र में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर योगदान दिया। उसके बाद से आपने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सीढ़ियों को पार करते हुए सन 2023 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर का मान्यता हासिल किया। आपने सन 2015 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में बेहला वादक के तौर पर संगत भी किया है। आपने आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रम में संगीत देकर 20 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल एनुअल अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो लीजिए, आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजय कुमार सामंतराय के बनाए हुए सुरों से सजे कुछ आधुनिक ओडिया गीत। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे हैं तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर हैं राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपैड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर हैं उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय। स्पेशियल इफेक्ट दिया है गुप्तेश्वर पाणिग्राही। तो प्रस्तुत है पहला गाना जिसका बोल है, मन हृदय जेते सबु कथा तम आगे प्रिय कही दिली। मतलब है, अपने दिल की हर बात लो आज कह दिया हमने आपके सामने। ये बोल लिखा है गीतकार रंजन कुमार बेहरा और मधुर आवाज है प्रीति पंडा की।

चलिए अभी सुनते हैं जिंदगी की कुछ भूल भुलैया अनजान राहों की बात। ये बोल लिखा है गीतकार बसंत कुमार दास, आवाज है सनातन पुरोहित दास की। पांथ शाड़ार रातिटीए पाई घड़िए पड़ुछी उणा, हेले मधुशाला अजणा कोणरे सरुनाही बिका किणा, जीवन हेउ केते बाट बणा, हेउ केते बाट बणा।

अभी सुनते हैं गीतकार किशोर चंद्र नंद के लिखे हुए गीत आवेगरे के ही कही थीबा कथा मनो तुली ने किया अंके। इस गाने को आवाज दिया है प्रीति पंडा। किसी ने जो दिल से कह दिया कुछ बातें, आज ये मन उन्हें ही क्यों ढूंढे।

कार्यक्रम के अगले गाने को अपने मन मोह लेने वाले आवाज से प्रस्तुत कर रहे हैं सनातन पुरोहित दास। गीतकार हैं गौर पटनायक। बोल है नाटकरों में छो अभिनय छोड़ा आओ किछी जाने नहीं, मतलब है जीवन के रंगमंच में मैं हूँ एक अभिनेता, झूठा अभिनय के सिवाय और कुछ भी तो नहीं आता।

में प्रस्तुत है एक युगल गीत, गीतकार रंजन कुमार बेहरा, आवाज है सनातन पुरोहित दास और प्रीति पंडा की। बोल है, प्रथम देखारे तुम्हें मनकल चोरी, अल्प कथारे आहा लागिगला टोरी, पहले ही मुलाकात में मन चुरा लिया, थोड़े ही बातों में हाय दिल लगा लिया।

0: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ ओडिया आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया था आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा में और प्रसारण किया गया आकाशवाणी दिल्ली से। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे थे तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर थे राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपेड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय, स्पेशियल इफेक्ट दिया था गुप्तेश्वर पाणिग्राही। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में सहायता किया था रंजन कुमार बेहरा, यांत्रिक सहायता किए थे शरद कुमार पाढ़ी और एन योगेंद्र। इसी के साथ क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विदा चाहती हूँ मैं अमीना हुसैन, नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात के 11 बजने वाले हैं। अब आप थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा महत्वपूर्ण

0: खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चंफाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals,